वंदे मातरम, सुप्रभात। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आप सभी का रेडियो दोस्त सैकत चैटर्जी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें। इसी मंगल कामना के साथ आपका स्वागत है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में। आज है दिन गुरुवार, अंग्रेजी सन ईस्वी 2026 की जून माह की 4 तारीख, तदनुसार शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 14वीं तिथि। अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को है। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन

दोस्तों अब यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय

ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान

0: दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दोस्तों आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। आप समाचार सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आप बात करते हैं खेत खलिहानों की, किसान भाइयों की। कार्यक्रम सुनते हैं खेती की बातें। विषय है पोली हाउस में बेमौसमी सब्जी उत्पादन। वाचन स्वर है रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा का।
3: किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें की आज की इस कड़ी में बातें पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जियों की खेती के बारे में। सब्जी उत्पादन और आधुनिक बागवानी में पॉली हाउस का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि किसान कुछ विशेष सावधानियों को ध्यान में रखें तो इसमें बेमौसमी सब्जियों की खेती एक वरदान के रूप में सिद्ध हो सकती है। पॉली हाउस में आमतौर पर सभी सब्जियों को उगाया जा सकता है, पर सब्जियों का चयन पौधों की ऊंचाई, मौसम, सब्जी तैयार होने का समय, उत्पादन लागत और बाजार भाव को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसके लिए ज्यादातर उन सब्जियों को चुनें जो कम जगह घेरती हों और उनका बाजार भाव ज्यादा मिलता हो। पॉली हाउस में उगाने के लिए बहुत सी सब्जियां उपयुक्त रहती हैं, जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, खरबूजा, लौकी, गोभी, बैंगन, फ्रेंच बीन, करेला, तरबूज वगैरह। पॉली हाउस तकनीक के उपयोग हम आपको बता दें, विपरीत मौसम यानी बेमौसमी सब्जियों की नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं और कम समय में नर्सरी तैयार होती है। ये संरचनाएं सब्जियों को ठंड, पाला, गर्मी और हवा से बचाती है। सब्जियों की अगेती पौध तैयार करने में सहायक है, जिससे अगेती फसल लेकर ज्यादा भाव में बाजार में बेचा जा सकता है। अधिक मूल्य वाली सब्जियों का उत्पादन करना पॉली हाउस तकनीक से संभव हो पाया है। बेमौसमी सब्जी उत्पादन खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर का वर्ष भर उत्पादन किया जा सकता है। सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी भी संभव है। सब्जियों की गुणवत्ता बढ़ती है। कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम आसानी से की जा सकती है। सब्जियों की मोनोक्रॉपिंग को बढ़ाना यानी साल में कई बार फसल उगा सकते हैं, जिससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ती है। ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में सब्जियों की नर्सरी का विकास तेजी से होता है। इसमें सब्जियों की विपरीत मौसम में नर्सरी तैयार करके किसान अधिक लाभ ले सकते हैं। इससे कम लागत वाले पॉली हाउस में सब्जियों की नर्सरी जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन और बेल वाली

0: सब्जियां जैसे खीरा, लौकी, करेला, तोरई, कद्दू और ककड़ी वगैरह की बेमौसमी अर्थात सर्दी में नर्सरी पौध तैयार करके 1-2 महीने अगेती फसल ली जा सकती है, जिसके बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। इसके लिए बांस की खपच्ची, पॉलिथीन शीट, सुतली से एक झोपड़ी नुमा ग्रीन हाउस बनाया जा सकता है और इसमें सब्जियों की पौध दिसंबर से जनवरी में तैयार की जा सकती है। किसान भाइयों, पॉली हाउस में अगेती नर्सरी यानी पौध से कई फायदे हैं, जैसे अधिक पैदावार, बेमौसमी उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, कम पानी की आवश्यकता, कम खरपतवार और आसान नियंत्रण, स्वस्थ व समय पर पौधे उत्पादन, विपरीत परिस्थितियों से बचाव, कीट और रोग नियंत्रण आसान। किसान भाइयों, पॉली हाउस में आप जब भी खेती करें तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अवश्य रखें। केवल उन्नत और संकर किस्में ही उगाएं। सही सब्जी की फसल और सही किस्म का चयन करें। सब्जी की बिजाई से पहले पॉली हाउस से गोबर की खाद डालकर अच्छी तरह मिला दें और जमीन को 5% फॉर्मेलिन से उपचारित करें। शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा आदि ज्यादा लाभदायक फसलें होती हैं। पॉली हाउस में पौधों को प्रोपेगेशन ट्रे में तैयार करें। सब्जियों की पौध के लिए प्रोपेगेशन ट्रे, जिसे प्रो ट्रे भी कहते हैं, का इस्तेमाल करें, जो आमतौर पर 98 छिद्रों वाली होती है। इसमें कोकोपीट, परलेट और वर्मिकुलेट का 4:1:1 के अनुपात में मिश्रण लेकर ट्रे तैयार कर लें और बीज की बिजाई कर दें। पॉली हाउस में खेती के अनेक फायदे हैं किसान बंधु, जैसे प्रत्येक बीज का बिना क्षति के अनुकरण, जड़ों का पूरा विकास और निकालने एवं रोपाई में सुविधाजनक, पौधों का विकास एक समान और स्वस्थ पौधों का तैयार होना, कम समय में पौध का तैयार होना, पौध की बीमारियां कम होती हैं, कीट नियंत्रण सरलता से किया जा सकता है, रोपाई उपरांत कम मृत्यु दर और पौधों का विकास जल्दी होना। पॉली हाउस को बागवानी के व्यवसायीकरण ने किसानों की एक खास जरूरत बना दिया है, जिसमें बेमौसमी सब्जियां उगाकर आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। परंपरागत कृषि विधियों की अपेक्षा पॉली हाउस में सब्जियों को उगाने से खुले वातावरण की तुलना में 2 से 4 गुना तक अधिक पैदावार ली जा सकती है।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे खेती की बातें। आइए अब जुड़ते हैं रामचरित मानस गान से और सुनते हैं कड़ी संख्या 168।
2: वन सिक्स एट।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा निषादराज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नर नारी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्री राम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषादराज के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा से आकर श्री राम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचानकर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्री राम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

0: ये दोस्तों आप जुड़ते हैं कार्यक्रम चिंतन से और सुनते हैं सत्य संगति का प्रभाव। वाचन सर रेडियो साथी अनुपमा तिवारी का है।
1: संगति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत और संगति, अर्थात सच्चे या अच्छे मनुष्यों की संगति। इसमें यह तो सत्य है कि मनुष्य समाज में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की संगति प्राप्त करता है। यदि वह अच्छी संगति में रहता है तो उसे लाभ होता है, उसका कल्याण होता है, अन्यथा बुरी संगति के कारण वह जीवन में असफल होकर दर दर की ठोकरें खाता है। अच्छी संगति वाला दुर्जन भी वैसा ही अच्छा जीवन जीते हैं जैसे पारस पत्थर को छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। शठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। सत्संगति के द्वारा मनुष्य न केवल अपना भला करता है अपितु वह अपनी जाति, समाज और राष्ट्र को भी पूरी तरह से लाभान्वित करता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी इसकी महिमा गाई है, सुनी आचरज करे जने कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संगति साधुओं की संगति होती है जो सब प्रकार से वंदनीय और प्रार्थनीय होती है। साधुओं की संगति तो सभी गुणों की खान है जो अवगुणों को भी सद्गुणों में बदल डालती है। सत्संगति दो प्रकार की होती है, प्रथम साधु और सज्जन पुरुषों के साथ रहने से और दूसरी हमें पुस्तकों से प्राप्त होती है। ये दोनों ही प्रकार की संगति हमें विवेक और सद्ज्ञान प्रदान करके जीवन मुक्ति के साधनों का पथ प्रदर्शन करती हुई संसार की अज्ञानता में डूबे हुए व्यक्ति को उपकार के मार्ग पर चलाती है। इसीलिए सत्संगति के लिए कहा गया है कि वह अज्ञानी से अज्ञानी और जड़ से जड़ पदार्थों को भी ज्ञानवान और चेतनशील बनाती है। संगति से मनुष्य को केवल लाभ ही लाभ है। हमारे नीति के श्लोक से भी यह बात समझ में आती है, जाइये धियो हरिति सिंचति वाचि सत्यम, मनोनति दिशति पापम पाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संगति अज्ञानता का हरण करके मनुष्य की वाणी में सत्यता को प्रविष्ट कराती है, मन की उन्नति करके चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति पताका फहराती है, चेतना को बढ़ाती है। कहने का तात्पर्य है कि सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। जो अच्छी संगति में रहता है उसके ऊपर फिर कोई भी किसी भी तरह की कोई बुराई असर नहीं करती। जैसे रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्त

उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ बातचीत करने से एवं उन्हें सुनने मात्र से सहज ही दुर्बुद्धि का नाश होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। अच्छी संगति से व्यक्ति में कदाचार, कर्तव्य पालन, धर्मनिष्ठा, व्यवहार कुशलता तथा मन, वचन और कर्म की पवित्रता आदि सद्गुणों का विकास होता है। सज्जनों की संगति से मूर्ख भी चतुर बन जाते हैं। अच्छी संगति के प्रभाव से मनुष्य दयावान, विनम्र, परोपकारी और ज्ञानी बनकर समाज में सम्मान प्राप्त करता है। जैसे वाल्मीकि लुटेरे और डाकू थे, लेकिन नारद मुनि के सत्संग के प्रभाव से उच्च कोटि के संत, भक्त और आत्मज्ञानी हुए। अंगुलीमाल भी एक डाकू था, लेकिन भगवान बुद्ध के सत्संग के प्रभाव से उसके सारे दुर्गुण नष्ट हो गए, दूर हो गए। इसीलिए दुष्टों से दूर रहकर सत्संगति में रहना हमारा ध्येय होना चाहिए।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आइए अब जुड़ते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना से। आज के हमारे कलाकार हैं अनुराधा पोड़वाल।

0: ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूँ आपका रेडियो साथी सैकत चटर्जी। आइए दोस्तों, आराधना के बाद अब हम जुड़ेंगे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम से, जहां हम सुनेंगे सिलिकोसिस कारण एवं निदान के बारे में डॉक्टर टी पीयूष क्या बता रहे हैं।
1: कार्यक्रम कल्याणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपको एक ऐसी बीमारी की जानकारी दिलवाएंगे जो कभी कभी आप देखते हैं कि अचानक हमारे बीच उसका नाम आता है और पता चलता है कि तब तक कई लोग उस बीमारी से हताहत हो गए, परेशान हो गए। श्रोताओं, थोड़ी जागरूकता अगर उसके प्रति आप रखें, थोड़ी जानकारी रखें और डॉक्टर्स के मुताबिक आप अपना बिहेव करें, अपना आचरण करें, रहन सहन खान पान को उसी हिसाब से करें, तो निश्चित रूप से किसी भी बीमारी से अपने आप को आप बचा सकते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं उस बीमारी की जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। वो बीमारी है सिलिकोसिस, शायद ये नया नाम है जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा, लेकिन आज इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं गढ़वा जिला अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर टी पीयूष। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।
2: सभी श्रोताओं को भी नमस्कार।
1: आज हम चाहते हैं कि आप सिलिकोसिस के बारे में जानकारी दें, क्या है
2: सिलिकोसिस? एक लंग की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, जो उन लोगों में होती है, ये व्यावसायिक बीमारी कह सकते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं अंग्रेजी में। इसका मतलब कि उन लोगों को होता है जो उस तरह के व्यवसाय से जुड़े हैं जिसमें पत्थर के छोटे कण, बालू के छोटे कण या मिट्टी के छोटे कण उड़ते हों और नाक के थ्रू चेस्ट में जाते हों, छाती में जाते हों।
1: डॉक्टर साहब, ये कैसे आदमी पहचान सकता है, उसके लक्षण क्या होते हैं अगर सिलिकोसिस की शुरुआत हो रही है शरीर में? तो
2: देखिए, सिलिकोसिस के प्रथम लक्षण में खांसी का होना, थकान होना, खांसी काफ़ी दिनों से होता है, थकान हो रहा होता है पेशेंट को, साथ में बलगम या कफ निकल रहा होता है, वजन कम होता है, छाती में दर्द हो रहा होता है, अचानक से इसमें बुखार भी आ जा सकता है, कभी कभी खांसी के साथ ब्लड का आना भी इसके लक्षण हैं।
1: क्या इस तरह के मरीज आपके पास आ रहे हैं अस्पताल में इलाज के लिए?
2: जी, इधर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ लगातार इस तरह के मरीज आ रहे हैं और इन मरीजों में मैं जो देख रहा हूँ ये एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास लगातार भटक रहे हैं। बहुत बहुत बार इनको टीबी की बीमारी सोचकर इनकी टीबी की दवा चला दी जाती है, लेकिन उस दवा का भी इन पर कोई असर नहीं होता है।
1: डॉक्टर साहब, ट्यूबरकुलोसिस भी लगभग इसी तरह की बीमारी है जो लक्षण आपने बताया है सिलिकोसिस के बारे में, तो ये ट्यूबरकुलोसिस से कितना अंतर दिखता है, क्या फ़र्क है दोनों?
2: बहुत मुश्किल है दोनों में कुछ फ़र्क पता कर पाना, क्योंकि दोनों

0: के जो कॉमन लक्षण है, जो दोनों में समान लक्षण है, उसमें है खांसी का लंबे समय से होना, कफ का निकलना, थकान का होना, कभी-कभी बुखार का आ जाना, वजन का कम होना। तो इसके लिए फिर हमारे पास जो उपाय है वह है छाती का सीटी स्कैन करके इसको पता करना कि आखिर क्या बीमारी है।
1: क्या ये गहन जांच का विषय है कि इस तरह की बीमारियां हो रही हैं और समाज में लोग परेशान भी हो रहे हैं और इसका नुकसान भी हो रहा है लोगों को?
0: बिल्कुल, जांच का विषय है और जागरण का विषय भी है। जागरण इस बारे में, हमारे पास जो पेशेंट आए वो ग्रामीण दूरस्थ इलाकों से हैं, जो दिल्ली और बाकी जगहों पर ऐसे जगह पर चल गए थे जहां क्रशर मशीन या क्रशर मशीन चल रही होती है, कि में मशीनों में पत्थर को तोड़ने का काम होता है। वहां उन्होंने बहुत दिन काम किया, उसके बाद घर आए। कभी-कभी यह बहुत जल्दी इसके लक्षण आ जाते हैं, कभी-कभी समय लगता है लक्षण के आने में, 2-3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद लक्षण आ रहे हैं। बाद में पूछते पूछते हमारे चिकित्सक बंधु भी कहीं कहीं इस बात का हिस्ट्री लेना, उनका ये इतिहास लेना भूल जाते हैं या मिस करते हैं कि उन्होंने पहले कहाँ काम किया है। बाद में हमें पता चलता है कि उन्होंने वो पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे, या कोला खदान में काम कर रहे थे, ऐसे जगहों पर काम कर रहे थे, या फिर रोड बना रहे थे, ये सब काम कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक तो मेरे यहाँ एक इंजीनियर साहब आए जो रोड का काम करवाने वाले इंजीनियर थे, तो उनको भी इसके प्रारंभिक लक्षण आ गए थे। इसमें इसकी जानकारी और इसके बचाव की जानकारी होना आवश्यक है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा, ये व्यावसायिक बीमारी है और जैसे कल कारखाने में किसी तरह के खदान में इस तरह काम करने से लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसमें किन चीज़ों से मुख्य रूप से बचाव की आवश्यकता है? कौन ऐसी चीज़ है जो इसको प्रभावित करते हैं और बीमारी को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं?
0: धूल के कण हैं जिनको सिलिका कहते हैं, मतलब बहुत स्पष्ट रूप से हम लोग कहें तो, स्पेसिफिक रूप से तो बालू के जो कण होते हैं या पत्थर के कण होते हैं, वो जाकर छाती के अंदर बैठते हैं और फिर उनके चारों तरफ रिएक्शन होता है और बाद में फेफड़े को धीरे धीरे वो खराब करना शुरू करते हैं। फेफड़े का जो स्ट्रक्चर है जहाँ हमारे ये गैसों का आदान प्रदान होता है, उस जगहों को खराब करते हैं। जो हम लोगों को ये प्रारंभिक लक्षण पर हम लोगों ने बात की,
1: ये जो आपने बताया कि ये दो चीज़ें, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहते हैं और ये सिलिकोसिस, तो दोनों में फ़र्क किस तरह से किया जा सकता है? उसके लक्षण भी वैसे ही, इसके भी वैसे ही हैं, दोनों लंग्स की ही बीमारी है, दोनों खतरनाक भी हैं, तो आखिर किस जांच की वजह से, जैसे टीबी का जांच और सिलिकोसिस का जांच जो है, क्या एक जैसे जांच से पता कर पाना संभव है?
0: देखिए, प्रारंभिक जांच, चूंकि दोनों के लक्षण मिलते जुलते हैं, तो पहले टीबी के जांच ही हम लोग करवाते हैं। हमारे देश में टीबी बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। तो अगर टीबी नहीं निकल रहा है, टीबी की बीमारी नहीं पकड़ में आती है, फिर भी सभी लक्षण मिलते जुलते हैं, तो एक बार हमें सिलिकोसिस के बारे में सोचना चाहिए, खासकर तब जब आप ऐसे व्यवसाय में रहे हों जहां बालू या धूल या तो पत्थर के कण उड़ते हों।
1: क्या इस तरह के जीवाणु उसके बिल्कुल अलग हैं ट्यूबरकुलोसिस के, जो सिलिकोसिस में नहीं पाए जाते हैं, या सिलिकोसिस के जो लक्षण और उसके जो जीवाणु हैं उससे भिन्न हैं, अलग हैं?
0: देखिए, एक तो है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है जीवाणु जनित बीमारी है और सिलिकोसिस जीवाणु जनित बीमारी नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस में आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम की का जो बैक्टीरिया है वो पाया जाएगा, इसमें वो बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा। और इसमें चूंकि जब हम एक्सरे कराते हैं तो देखने में एक जैसा लगता है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस की तरह, लेकिन एक में बैक्टीरिया है, एक में बैक्टीरिया नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे लोग।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जो इतनी चिंता जो आपने जताया अपने हमारे श्रोताओं के बीच, क्या ये अगर इस पर सही इस वक्त पे इलाज नहीं किया जाए तो क्या ये जानलेवा भी हो सकता है?
0: बिल्कुल, हम एक दो रोगियों को ये खो चुके हैं और एक आजीवन होने वाली बीमारी, आजीवन रह जाने वाली बीमारी है। इसका अभी तक कोई उपचार नहीं है, सावधानी ही अभी बचाव है। सावधानी में यह है कि अगर पहले तो उस तरह के पेशों से दूरी बना सकते हैं अगर वो संभव हो, अगर नहीं संभव हो तो हम उस जगह पर जागरूक होकर मास्क या उस तरह की चीज़ उपयोग में ला सकते हैं, जिससे हमारे नाक ये श्वास नली तक कण जो है सिलिका के कम पहुंचे।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा मुश्किल है कह पाना कि किसी को उसके व्यवसाय से अलग कर दें या उसको काम करने से मना करें, क्योंकि कल कारखाने अगर चल रहे हैं तो वहाँ मजदूर काम करेंगे और मजदूर अगर काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों से बचाव की भी जानकारी उनको होनी चाहिए और उनको उपाय भी उनको करना पड़ेगा। तो आप मुख्य रूप से जो अभी तक जो सिलिकोसिस के बारे में आपने समझा जाना, तो कैसे हम मजदूर को वहाँ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके स्टाफ को कैसे बचाएं, कैसे रोकें कि सिलिकोसिस से पूरी तरह खुद का बचाव कर सकें?
0: देखिए, बचाव का अभी तक जो तरीका है उसमें यही है कि आप जो है N95 टाइप के मास्क लगाने पड़ेंगे, नाक मुंह को ढक कर रखना पड़ेगा ताकि छोटे छोटे कण भी अंदर तक न जाएं। इसमें जागरूकता की ज़रूरत है, जो कर्मचारी वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा, जो फैक्ट्री के मालिक हैं या जो उस तरह के व्यवसाय को चलाते हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा, और सरकार को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है।
1: हम थोड़ा सा ट्रैक से हट के एक छोटा सवाल आपसे करना चाहते हैं। आमतौर पर लोग जो चर्चा करते हैं समाज में कि इस तरह के लोग जहां थोड़े से धुआं, धूल कण और इस तरह का जो इनहेल करते हैं नाक के माध्यम से जो उनके गले में जाता है, लंग्स में जाता है, तो ऐसे लोग चर्चा करते हैं कि गुड़ खा करके और उसको वो कचड़े को अपने शरीर से बाहर किया जा सकता है, क्या इसमें थोड़ी सच्चाई है या बेवजह फालतू की बातें?
0: देखिए, गुड़ कभी कभी कभी जो है म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है जिसको कहते हैं कफ, तो कफ निकलता है, लेकिन इस अब एक बार सिलिकोसिस जैसी चीज़ हो जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा। एक और चीज़ मैं बोल देना चाहूँ कि सिलिकोसिस वाले व्यक्ति को टीबी नहीं हो सकता है, ऐसी भ्रांति में नहीं रहना है। सिलिकोसिस होने के बाद निमोनिया, टीबी और छाती की अलग बीमारियों को भी यह न्योता देता है, उसमें हो सकता है।
1: तो इसका मतलब कि अगर सिलिकोसिस पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया, नियंत्रण नहीं किया जा सका, तो बाद में चल के ही सिलिकोसिस ट्यूबरकुलोसिस का रूप धारण कर सकता है और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है।
0: सिलिकोसिस खुद टीबी का रूप धारण नहीं करेगा, लेकिन वो टीबी को निमंत्रण जरूर देगा, क्योंकि आपके लंग्स पहले से कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए टीबी होना सिलिकोसिस के पेशेंट्स में सामान्य है। इसके लिए अभी तक मैंने कहा कोई उपचार नहीं है, लेकिन बाद में अगर उपचार के रूप में सर्जरी कर सकते हैं, पूरे फेफड़े को हटाकर नया फेफड़ा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, प्रत्यारोपित कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है कि नहीं, यह भी एक चर्चा का विषय है।
1: पीयूष जी, इसकी शुरुआत में जैसा आपने कहा कि खांसी, बुखार और शरीर के मतलब वजन कम होना, ये सब जो परेशानियाँ हैं, तो अगर इस पर लोग नहीं जागरूक हो सके, समय पर इलाज नहीं करा सके, तो शरीर का क्या क्या अंग प्रभावित कर सकता है और किस हद तक नुकसान इसके बढ़ सकते हैं और खतरनाक होता जा सकता है आगे?
0: देखिए, मुख्यतः तो मैंने जैसे कहा ये फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़े के प्रभावित होने के कारण आपके श्वसन में सांस के जो गैसेज हैं उसका आदान प्रदान रुक जाएगा, वो बहुत बढ़िया से नहीं हो पाएगा, और बाद में आपको लंग से, चूँकि हमारा हार्ट कनेक्टेड है, तो आपको हृदय की भी बीमारी हो सकती है, हृदय भी आपका बाद में सक्षम नहीं हो सकता है, उसमें भी फेलियर की तरफ वो बढ़ सकता है।
1: क्या काम करने की क्षमता भी घट जाएगी, इंसान कमज़ोर हो जाएगा और उसका सुचारू रूप से शरीर का जो संचालन है वो गड़बड़ हो सकता है?
0: हाँ, एडवांस्ड स्टेज में जब हम आगे बढ़ जाती है ये बीमारी, तब लोगों को इवन ये भी हो सकता है कि वो पैखाना करने गए तो उसमें भी सांस फूलने लगा, थोड़ा हल्का सा भी चलने फिरने पर भी सांस फूलने लगता है, और तब हमको ये समझना पड़ेगा कि बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है।
1: अच्छा, ये सांस फूलने वाली जो बीमारी है, आमतौर पर विशेषज्ञ कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि सांस का हृदय से बीमारी का ये होता है, लोग कह सकते हैं कि अगर सांस फूल रही है तो यानी हृदय के रोगी आप हो सकते, तो इसका मतलब कि ये सिलिकोसिस बाद में हृदय रोग को जन्म दे सकता है या फिर सिलिकोसिस अपने आप में हृदय रोग की तरह सांस का नियंत्रण खो सकता है, खराब कर सकता है?
0: ध्यान देने की बात यह है कि हृदय का एक काम यह भी है कि वह जो है सो खून को शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ले जाना, और उसमें से फेफड़े में ले जाना भी उसका एक काम है। फेफड़े अगर ग्रसित होंगे तो फिर वह बढ़िया से फेफड़े में जो हार्ट है वो जब खून को ठेलेगा तो वो बढ़िया से वहाँ नहीं जा पाएगा, तो बाद में ये दिक्कत होगी हार्ट के बीमारियों। अब जो सांस का फूलना केवल एक बीमारी के का लक्षण नहीं है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। फेफड़े की बीमारी होगी, सांस फूलेगा, आपको हार्ट की बीमारी होगी, चूँकि हार्ट ही बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा है, वो ब्लड नहीं फेंक पा रहा है, इसलिए आपको सांस फूलेगा। अगर आपको खून की बहुत कमी हो जाती है तब भी सांस फूलेगा, अगर आपको किसी तरह का कैंसर होता है तो उसमें भी आपको सांस फूलेगा, इवन अगर आपको किसी तरह की शारीरिक बीमारी नहीं है लेकिन मानसिक बीमारी है तो उसमें भी सांस फूल सकता है, और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
1: ट्यूबरकुलोसिस में आमतौर पर देखा जाता है कि लोग बाद में चल के और कफ से खून आना शुरू होता है, क्या सिलिकोसिस में भी इस तरह की बातें हो सकती हैं, संभावना है?
0: हाँ बिल्कुल, खून का आना ट्यूबरकुलोसिस में भी हो सकता है और सिलिकोसिस में भी हो सकता है, और ज़्यादा अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं तो हम कहें कि स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस जैसे कुछ जीवाणुओं के इन्फेक्शन में जो खुरचते हैं, दीवालों को अगर खुरचेंगे, वहाँ एक कैविटी या गुफा बनाएंगे, छोटा गुफा मतलब छोटा जगह बनाएंगे, और वहाँ के जो रक्त की वाहनियाँ हैं वो वहाँ पर अगर टूटती हैं, उनकी नलियाँ टूटती हैं, गिरती हैं, तो बाद में ये हम जब खखार करेंगे तो ये ब्लड के रूप में बाहर आएगा। तो ये सिलिकोसिस में भी संभव है, ट्यूबरकुलोसिस में भी संभव है, कई और जीवाणुओं के इन्फेक्शन में जो कैविटी बनाते हैं उसमें भी संभव है।
1: अब हम चाहेंगे कि आखिरी में हमारे तमाम श्रोताओं को आप ये बताएं कि एहतियात बरतने के साथ साथ उनको ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि सिलिकोसिस से अपने आप को बचाए रखने के लिए।
0: देखिए, बचाने के उपायों में मैंने कहा कि पहला तो है कि आप अपने नाक और ये सबको ढक कर रखें। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि अगर 100 मजदूर क्रशर मशीन में काम करते हैं तो सभी 100 मजदूरों को सिलिकोसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बीमारियां आपका शरीर उस बीमारी के प्रति कैसे रिएक्ट करता है इस पर होता है। जैसे आप दोनों खाने गए थे, खाना ख़राब था, 2 से 3 लोगों ने खाया, किसी एक का पेट ख़राब हो जाता है, बाकी का नहीं होता है। तो हमारा शरीर किसी भी चीज़ को लेकर अलग अलग रिएक्ट करता है। ये देखें कि अगर आपको खांसी हो रहा है या किसी भी तरह की सांस की प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी से जल्दी हम उसको एक बार चेक करवा लें। मशीन और मिल के मालिक जो हैं उनको भी चाहिए कि समय समय पर अपने मजदूरों की कर्मचारियों की जांच कराते रहें।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। आपने सुना सिलिकोसिस के कारण एवं निदान। आपसे बात कर रहे थे डॉक्टर टी पीयूष। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं अपने दिल्ली केंद्र से और बारी बारी से सुनते हैं संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा. अथ वार्ताः. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः. पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इन्धनमूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इन्धनस्य अर्थात् ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आयव्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्. सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति. सहायता योजनेयं 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते. मंत्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्. द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लक्षं ट्रक यानानि 16,000 बस यानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्. मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता. एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजनापि अनुमोदिता. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति. अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति. सहैव ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा परिवहनं नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणां अन्वेषणं च भविष्यति. रोड्रिगेज़ वर्यः भारतदेशस्य 5-दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत यत् कृत्स्ने ही विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते. एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन संदेशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति. केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायाम् अगरतला नगरं प्रति इष्यति. यात्रावधौ श्री शाह पुष्पवंत पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति. लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति. सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति. गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता. राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्. दक्षिणदिल्ल्यारक्षिविभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमनविभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः. आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिकसेवानां संयुक्तप्रयत्नैः 40 जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्. राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः. सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्तपरिवारान् प्रति गहनसंवेदना व्यक्तीकृता. इति वार्ताः.
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय

0: 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत हिंदी व अंग्रेजी समाचार। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आप सभी का रेडियो साथी सैकत चैटर्जी। आइए दोस्तों आप जान लेते हैं आज हमारे प्रातकालीन सभा में आगे प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। दोस्तों बस अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:15 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। आज राग रंग के तहत आप सुनेंगे परवीन सुल्ताना को। दोस्तों ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र और हम खास ख्याल रखते हैं अपने सभी दोस्तों का। शास्त्रीय संगीत का आनंद लेने के बाद आप सुन सकते हैं सुगम संगीत जो कि 7:45 से प्रसारित किया जाएगा और इस स्वर सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंदन दास को। इसके बाद दोस्तों इंटरटेनमेंट के बाद हम जानेंगे जानकारियों को और 8:08 जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से जहां से सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 से रांची केंद्र से जुड़कर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। दोस्तों जैसे ही जानकारियों का ये दौर खत्म होगा वैसे ही हम जुड़ेंगे फिर से एक बार मनोरंजन की तरफ और 8:45 पर सुनेंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रस्तुत पुरानी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। दोस्तों गीत गुंजन के बाद आकाशवाणी डाल्टनगंज का प्रसारण जारी रहेगा और 9:00 हम सुनेंगे जोहार पलामू। दोस्तों आज का जोहार पलामू है बेहद खास क्योंकि आज सदाबहार अभिनेत्री नूतन का जन्मदिन है तो नूतन के जन्मदिन के अवसर पर आज जोहार पलामू कार्यक्रम में हम सुनेंगे नूतन से जुड़ी यादें, नूतन की अनकही दास्तान, अनसुनी कहानी और सुनेंगे कुछ सदाबहार फिल्म गीतों को जो उन पर फिल्माया गया था। दोस्तों 9:30 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग से जुड़ने का जहां हम सुनेंगे उमंग का भाग 1299।

दोस्तों, प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के बाद फिर हम रुख करेंगे दिल्ली की तरफ और सुनेंगे 10 बजे अंग्रेजी समाचार, 10 बजकर 5 मिनट में हिंदी समाचार और फिर 10 बजकर 10 मिनट पे हम जुड़ जाएंगे मुंबई केंद्र से, जहां से सुनेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के मेहमान। दोस्तों, विविध भारती का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा और दोपहर 12 बजे सुनेंगे यादों की महफिल। इसके बाद दोस्तों, लगातार हमारा जुड़ाव मुंबई, दिल्ली और रांची केंद्रों से बना रहेगा, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और विविध भारती की प्रस्तुति सुरीला सफर, सदाबहार नगमे, सखी सहेली, हल्लो फरमाइश और छाया गीत जैसे कार्यक्रमों को। और इसके बाद दोस्तों, संध्या 5:30 पर हम वापस एक बार जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम सुनेंगे अपने रेडियो साथी से सायंकालीन सभा का कार्यक्रम विवरणी।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी सैकत चैटर्जी। आइए दोस्तों, आप सुनते हैं शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग। आज राग रंग के तहत हम सुनेंगे अहीर भैरव पर गायन, जो कि प्रस्तुत कर रही हैं परवीन सुल्ताना।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंग। हमारा ये कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत पर आधारित था, जिसे आपने सुना एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। आज की हमारी कलाकार थी परवीन सुल्ताना। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरिता से। स्वर सरिता के आज के हमारे कलाकार हैं चंदन दास।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर सरिता। स्वर सरिता के आज के हमारे कलाकार थे चंदन दास। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं रांची और दिल्ली केंद्रों से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
2: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्व

0: आदित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
4: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
3: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
5: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
3: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
6: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित

0: 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिविजनों के साथ साथ आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
1: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले

0: Authorities, states the Times of India. The Economic Times comes up with a story on domestic travel demand remains strong despite rising fuel costs and airfares and fewer flights under the headline Summer Travel Plans Take No Break. And finally, the Tribune writes about a memorable moment when the Tibetan spiritual leader, the 14th Dalai Lama, was presented with a Grammy Award won by his audiobook Meditations, The Reflections of His Holiness. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with acting President of Venezuela Delcy Rodriguez in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah to chair 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong. U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahi today. First World Yogasana Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन तेज करने का दिया निर्देश। पारंपरिक शिल्पकारों के प्रशिक्षण को बढ़ाने पर जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, रक्षा उत्पादन में एमएसएमई की बढ़ेगी भागीदारी। झारखंड के उद्यमियों को मिलेगा रक्षा क्षेत्र में नया अवसर। जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने पर मंत्रियों की कमेटी में नहीं बनी सहमति, अंतिम फैसला लेंगे मुख्यमंत्री। राज्य के कई हिस्सों में 8 जून तक तेज हवा, वज्रपात और गर्जन की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और गोवा में खेले गए सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को हराकर फाइनल में बनाई जगह। खिताब के लिए बांग्लादेश से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योग विभाग की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने झारक्राफ्ट के उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा पर्यटन स्थलों पर बिक्री को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में डिफेंस कॉन्क्लेव की स्मारिका का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। श्री सेठ ने झारखंड के उद्यमियों को रक्षा क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
5: देखो, देश के अंदर हर चीज इंडिजिनस की ओर बढ़ी है। मतलब प्रधानमंत्री जी का जो से है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, उसी स्वदेशी के भाव को लेकर हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में रक्षा विभाग भी बहुत तेजी से बढ़ा है। 25-26 का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 38,424 करोड़ रुपीज गया।
4: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बोकारो में धनबाद और बोकारो से संबंधित 20 शिकायतों की सुनवाई की। उन्होंने बीसीसीएल भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में शीघ्र भुगतान का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की शिकायतों का त्वरित समाधान आयोग की प्राथमिकता है।
6: बोकारो और धनबाद मिलाकर के 20 मामले थे, अलग अलग मामले थे, कुछ सर्विस मैटर भी थे, एट्रोसिटी से संबंधित मामले हैं और विकास से संबंधित मामले थे। कई लोग उनका जमीन अधिग्रहण कर लिया गया था और माइनिंग भी हो गया, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिले। आयोग के संज्ञान में आया और आयोग ने दोबारा तिबारा हियरिंग करने के बाद में आज वो केस सक्सेस हो गए, उनका जमीन क्लियरेंस हो गया।
4: रांची के गोपाल प्रसाद बर्मन पहले एक छोटी चाय की गुमटी चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन सीमित पूंजी के कारण व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। गोपाल का कहना है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिले क्रमिक ऋण का उपयोग कर उन्होंने पहले चाय नाश्ते का कारोबार बढ़ाया और बाद में अटल स्मृति वेंडर मार्केट में कपड़ों की दुकान शुरू की।
7: पहला तो कि ये लोन रेडी पटरी वालों के लिए था, वो मैं छोटा सा चाय का दुकान चलाता था तो सोचा अगर कुछ पैसा मिल जाता तो इससे हमारा व्यवसाय में प्रगति होता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है हम जैसे लोगों के लिए मील का पत्थर है और इनकी सहायता लेते हुए अपने व्यवसाय को आगे से आगे ले जाने का कोशिश करें तो वो सफलता जरूर हासिल।
4: रांची नगर निगम ने हरमू नदी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए मापी अभियान शुरू किया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर वार्ड 23 के हिंदपीढ़ी स्थित हरमू नदी तट का भौतिक सत्यापन कर अतिक्रमण की श्रेणी में आने वाली संरचनाओं को चिन्हित किया गया। निगम ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य आगे भी जारी रहेगा और रिपोर्ट तैयार करने के बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने के मुद्दे पर गठित मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सहमति नहीं बन सकी। समिति के अधिकांश सदस्यों ने इन भाषाओं को शामिल करने का विरोध किया, जबकि कुछ मंत्री इसके पक्ष में रहे। अब समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेगी। इस मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ में संस्कृत भारती की ओर से 7 दिवसीय संस्कृत भाषा संवर्धन आवासीय शिविर की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉ. सरोज शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर में पूरे राज्य से लगभग 150 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर कोडरमा थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव में कोडरमा विधायक नीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या कर दी गई। घटना में मृतक की बेटी, माता और पिता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। विधायक डॉ. नीरा यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पुलिस पर पूर्व शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।
8: इसमें पूरी साजिश उस थाना प्रभारी की है, जिनको बार बार आगाह किया जाने के बाद में भी वो फोर्स नहीं भेजे, ना खुद गए और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिलाए। अगर उनकी मां को जब मिट्टी के अंदर दफनाया जा रहा था उस समय कार्रवाई करके वो पकड़ के लाए रहते, जो जान रहे कि कौन उसको कर रहा है, तो इतनी बड़ी आज घटना नहीं घटती।
4: हजारीबाग के कटकमदाग में 2 नाबालिग भाई बहन के अपहरण और हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी संजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि आरोपी ने बच्चों को मोबाइल दिलाने के बहाने स्कूटी पर बिठाया और सुनसान जगह पर ले जाकर हत्या कर दी।
9: इस घटना के उद्भेदन के लिए एसआईटी लगातार काम कर रही थी और इसमें संजीत पासवान करके अभियुक्त का नाम क्लियर हुआ और उसको पकड़ने के लिए कई टीम्स लगातार रेड कर रही थी, जिसकी अरेस्टिंग वर्तमान में शहर थाना क्षेत्र से ही की गई है। और इसके अरेस्टिंग के बाद जिस वाहन का प्रयोग किया गया था और जिस बोरे वगैरह और जिस कपड़े वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, उन सब चीज़ों की रिकवरी भी FSL टीम ने आकर किया है।
4: जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में फायरिंग, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मेड़ा के अनुसार विशेष जांच टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
10: कार्रवाई हुई है, इसमें एक देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली, एक खोखा, पिलेट और एक स्कूटी और चार एंड्रॉइड मोबाइल भी इनके द्वारा इनके माध्यम से प्राप्त हुए हैं, इनके पास से प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार से इसमें मतलब काफी 3 दिन के अंदर अंदर में ये इस प्रकार की कार्रवाई की गई है और बहुत एक कुछ गैंग से इनका संबंध भी सामने आने की संभावना है।
4: मौसम केंद्र ने 3 से 8 जून के बीच राज्य के विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, वज्रपात और गर्जन की संभावना जताई गई है। फुटबॉल। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम 6 साल बाद टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। मैच का एकमात्र गोल 58वें मिनट में सनफिदा नौग्राम ने किया। पहली बार की चैंपियन भारतीय टीम का फाइनल में 6 जून को बांग्लादेश की टीम से मुकाबला होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड की खबर को प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर ने लिखा है 6 कमरों की अनुमति, चल रहा था 6 मंजिला होटल, आग से 11 विदेशी सहित 21 जिंदा जले। दैनिक जागरण ने लिखा अवैध होटल में आग, 21 की मौत। हिंदुस्तान की सुर्खी है रातू में छेड़छाड़ के आरोपी को भीड़ ने मार डाला। दैनिक भास्कर की लीड है ममता को झटका, 58 विधायकों का असली तृणमूल होने का दावा। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन तेज करने का दिया निर्देश। पारंपरिक शिल्पकारों के प्रशिक्षण को बढ़ाने पर जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा रक्षा उत्पादन में MSME की बढ़ेगी भागीदारी। झारखंड के उद्यमियों को मिलेगा रक्षा क्षेत्र में नया अवसर। जेटेट में भोजपुरी, मघी और अंगिका को शामिल करने पर मंत्रियों की कमेटी में नहीं बनी सहमति, अंतिम फैसला लेंगे मुख्यमंत्री। राज्य के कई हिस्सों में 8 जून तक तेज हवा, वज्रपात और गर्जन की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और गोवा में खेले गए सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को हराकर फाइनल में बनाई जगह। खिताब के लिए बांग्लादेश से होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का आज के इस कार्यक्रम में। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी सैकत चैटर्जी। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करते हुए हम बात करेंगे एसपी बालासुब्रमण्यम का।

जी हाँ, क्योंकि आज है 4 जून और 4 जून 1946 को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का जन्मदिन है। उन्हें प्यार से लोग एसपीबी या बालू के नाम से भी पुकारते थे और वो सिर्फ हिंदी सिनेमा के ही पार्श्व गायक नहीं थे बल्कि उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी काम किया और कुल 16 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाए। आइए दोस्तों, आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म से उस गीत को जिसे एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ आवाज दिया है लता मंगेशकर ने। गीत को लिखा है देव कोहली जबकि म्यूजिक दिया है राम।

दोस्तों, एसपी बालासुब्रमण्यम का जन्म ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रांत के नेल्लोर में हुआ था। एक मजबूत संगीत पृष्ठभूमि वाले तेलुगु परिवार में उनका जन्म हुआ था। शुरुआत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बावजूद संगीत के प्रति उनके जुनून ने उन्हें पार्श्व गायन में एक सफल करियर की ओर प्रेरित किया। इसकी शुरुआत 1966 में तेलुगु फिल्म से हुई और उसके बाद उन्होंने अपने करियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में अपने प्रदर्शन के लिए कई बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के पुरस्कार जीते। आइए दोस्तों, आप सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म से एक और गीत को, जिसे फिर से एक बार गाया है लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम ने। संगीत है राम लक्ष्मण का और गीत को लिखा है देव कोहली।

दोस्तों, भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री, 2011 में पद्म भूषण और 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दोस्तों, कोविड-19 से संबंधित जटिलताओं के कारण 25 सितंबर 2020 को चेन्नई में उनका निधन हो गया था। आइए दोस्तों, सुनते हैं उनकी एक और हिट फिल्म एक दूजे के लिए से एक गीत, जिसे फिर से एक बार एसपी बालप सुब्रमण्यम के साथ आवाज मिलाया है लता मंगेशकर ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दोस्तों, एसपी बालासुब्रमण्यम से जुड़ी एक और बात बताते चले कि एसपी बालासुब्रमण्यम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना के आईटी मंत्री डॉक्टर डी श्रीधर बाबू ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ 15 दिसंबर 2025 को हैदराबाद के रविंद्र भारती में किया था। आइए दोस्तों, अब इस कार्यक्रम में फिर से एक बार सुनते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर के गाए वंश फिल्म के उस गीत को, जिसे लिखा था समीर और म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद।

के 103 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों आज आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए कुछ गीत, क्योंकि आज है 4 जून और जैसे कि मैंने बताया था आज एसपी बाला सुब्रमण्यम का जन्मदिन है। दोस्तों इसी के साथ ही आपको बताते चले कि आज हिंद

0: कुछ शानदार फिल्म गीतों को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली नूतन, अक्सर अपरंपरागत मानी जाने वाली संघर्षरत महिलाओं की भूमिकाओं में अपने स्वाभाविक अभिनय के लिए जानी जाती थी। चार दशकों के अपने करियर में उन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जो शहरी प्रेम कहानियों से लेकर सामाजिक यथार्थवादी नाटकों तक विभिन्न शैलियों की थी। दोस्तों, नूतन को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उस समय का रिकॉर्ड 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। 1974 में नूतन को भारत के 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: सुनो, कहां चले?
2: जीवन पथ पे अकेला जा रहा था, किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी।
0: तो कदम साथ। आइए दोस्तों, सुनते हैं नूतन पर फिल्म आए गए 1970 में आई फिल्म यादगार की उस गीत को, जिसे नूतन के साथ सह कलाकार थे मनोज कुमार, प्राण, प्रेम चोपड़ा। जिस गीत को हम सुनाने जा रहे हैं, उसे आवाज से सजाया है लता मंगेशकर, गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर और धुन बनाए हैं कल्याण जी, आनंद जी।
3: जिस पथ पे चला उस

0: दोस्तों, फिल्म निर्माता कुमार सेन समर्थ और फिल्म अभिनेत्री शोभना समर्थ की बेटी नूतन का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में 1950 में अपनी मां के द्वारा निर्देशित फिल्म हमारी बेटी से अपनी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने नगीना और हम दोनों, जो 1951 में आई थी, इस फिल्मों में अभिनय किया। 1955 में आई फिल्म सीमा में उनकी भूमिका के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।
1: नहीं नहीं बीबी जी, मुझे माफ कर दीजिए, पुलिस के हवाले न कीजिए, मैं पैसे दे दूंगी।
2: पैसे? तकिया की छोकरी और तू इसके पैसे देगी? जानती है इसकी कीमत क्या है?
1: जो आप कहे, मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए।
2: तेरी तनख्वाह क्या 100 सैकड़े है? इसके दाम पूरे करने के लिए तुझे महीनों काम करना पड़ेगा।
1: हाँ हाँ मैं करूंगी, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले न कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बीबी जी।
0: उन्होंने 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के अंत तक मुख्य भूमिकाएं निभाना जारी रखा और सुजाता, बंदिनी, मिलन, मैं तुलसी तेरे आंगन की में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इस अवधि की उनकी कुछ अन्य फिल्मों में अनाड़ी, छलिया, तेरे घर के सामने, खानदान, सरस्वती चंद्र, अनुराग और सौदागर जैसी फिल्में भी शामिल है। आइए दोस्तों, फिर से एक बार सुनते हैं नूतन पर फिल्माए गए दिल ने फिर याद किया है फिल्म से उस गीत को, जिसमें नूतन के साथ पर्दे पर दिखे थे धर्मेंद्र। गीत को आवाज दिया है रफी, लिखा है J.S. रावल और म्यूजिक है सोनिक ओमी का।

0: दोस्तों 1980 के दशक में नूतन ने चरित्र भूमिकाएं निभाना शुरू किया और अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले तक काम करती रही। उन्होंने 1981 में साजन की सहेली, 1985 में मेरी जंग और 1986 में नाम जैसी फिल्मों में अधिकतर माँ की भूमिकाएं निभाई। मेरी जंग में उनके अभिनय के लिए उन्हें उस समय सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का छठा और अपने जीवन का अंतिम फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।
1: आप ही मिलने आए हैं मुझसे?
2: जी हाँ।
1: गुप्ता जी ने भेजा है आपको?
2: जी, उन्होंने ही भेजा मुझको। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे पूछ लूं कि आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है, ये लोग आपका ख्याल रखते हैं?
1: हाँ हाँ, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बच्चे घर में अकेले होंगे यही परेशानी रहती है। कई बार सोचा कि घर चली जाऊँ, लेकिन हमारे वो बड़े डॉक्टर साहब हैं ना, बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। वो कहते हैं कुछ दिन इधर ही रुक जाओ, कभी भी केस की तारीख पड़ सकती है। केस इसी शहर में आ गया है ना, तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन यहीं रुक जाती हूँ।
0: तो आइए दोस्तों सुनते हैं 1985 में आई फिल्म मेरी जंग के उस गीत को जिसे लता मंगेशकर के साथ आवाज दिया है नितिन मुकेश, गीत को लिखा है आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दोस्तों, नूतन का जन्म तो बताए आपको कि 4 जून 1936 में हुई थी, जबकि उनकी मृत्यु स्तन कैंसर से 21 फरवरी 1991 में हो गया था। दोस्तों, उनकी शादी नौसेना के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर रहे रजनीश बहल से 1959 में हुई थी और उनका एकमात्र पुत्र मोहनीश बहल भी एक अभिनेता है। आइए दोस्तों, सुनते हैं नूतन के जिंदगी की एक सदाबहार फिल्म अनाड़ी, जिसमें वो राज कपूर के साथ दिखे थे, उस फिल्म के एक गीत को, जिसमें लता मंगेशकर के साथ आवाज़ दिया है मुकेश चंद्र माथुर, गीत लिखा है हसरत जयपुरी और म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन।

दोस्तों, हम सुन रहे हैं नूतन के बारे में कुछ अनजानी, अनकही, अनसुनी बातों को, क्योंकि आज है नूतन का जन्मदिन। दोस्तों, नूतन की पहली बड़ी सफलता फिल्म सीमा से आई थी, जो 1955 में आई थी। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इस सफलता के बाद उन्होंने एक रोमांटिक कॉमेडी की थी, पेइंग गेस्ट, उसमें देवानंद साहब साथ थे। उसके बाद 1950 के दशक के अंत तक वो एक स्थापित स्टार बन चुकी थी। 1959 में उन्होंने दो हिट फिल्मों अनाड़ी और बिमल राय की सुजाता, जिसमें वो सुनील दत्त के साथ दिखे थे, में अभिनय किया था। इसके लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 1960 और 1970 के दशक में उनकी कई और सफल फिल्में आई, जिनमें छलिया, सरस्वती चंद्र, देवी और मै

तुलसी तेरी आंगन की शामिल है। 1960 में उन्होंने मनमोहन देसाई की फिल्म छलिया में एक बार फिर राज कपूर के साथ अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर के लिए नामांकन मिला। आइए दोस्तों, अब नूतन की एक फिल्म जो राज कपूर के साथ 1959 में आई थी, अनाड़ी, उस फिल्म के एक गीत को सुनते हैं। गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर, गीत को लिखा है शैलेंद्र, और जबकि म्यूजिक बनाया है शंकर जयकिशन।

दोस्तों ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी सैकत चटर्जी। दोस्तों इस विशेष कार्यक्रम में आपने सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम के कुछ गाए गीत और सदाबहार अभिनेत्री नूतन पर फिल्माए गए कुछ फिल्म गीत, क्योंकि आज का दिन यानी कि 4 जून का दिन सदाबहार अभिनेत्री नूतन और सदाबहार पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का जन्मदिन है। इन दोनों कलाकारों को आकाशवाणी डाल्टनगंज की ओर से हैप्पी बर्थडे। आइए दोस्तों अब सुनते हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप आज सुनेंगे उमंग की कड़ी संख्या 1299।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला

0: संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम,
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
0: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
0: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
0: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोता आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
0: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
0: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी,
0: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आए।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
0: जी,
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
0: जी,
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
0: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
0: जी,
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
0: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ जरूर कीजिए।
0: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी,
0: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
0: बिल्कुल याद है।
1: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ?
0: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन

0: अपने आप सरक रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
1: श्रोताओं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओं, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
1: जी,
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
1: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
1: जी,
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
4: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. Goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
3: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
5: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
6: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
7: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आजा, आजा, अंदर आजा, आजा शाबाश।
6: क्या अभी आपके पास समय होगा?
7: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
6: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
7: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का।
6: जी वही, जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
7: अच्छा।
6: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
7: और
6: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
7: हाँ, बोलो बोलो।
6: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
7: बिल्कुल,
5: लेकिन सर दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
7: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
6: 5000 वर्ष पहले?
7: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
5: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
7: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
6: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
7: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
6: अच्छा।
7: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
6: जैसे?
7: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
6: वैदिक समूह?
7: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
6: भरत?
5: भरत नाम तो हमने सुना है।
7: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
6: ओह भरत, अच्छा तो ये बात है।
7: हाँ।
6: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
7: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
6: अच्छा।
7: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
5: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
7: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
6: वो क्या सर?
7: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
5: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
6: भला ऐसा क्यों?
7: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
6: अच्छा।
7: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
6: है ही नहीं?
7: हाँ।
6: ऐसा कैसे?
7: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
6: ओ।
7: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
6: हिंदू,
7: हिंदू। शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
6: तो फिर?
7: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
6: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
7: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
5: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
7: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
6: सर, ऋग्वेद,
5: महाभारत,
6: विष्णु पुराण।
7: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
6: अच्छा।
7: हाँ।
5: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
7: बिल्कुल।
5: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
7: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
6: अच्छा।
7: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
6: अच्छा।
7: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
6: वो क्या?
7: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
6: जम्बूद्वीप?
7: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
6: जम्बूद्वीप? हाँ? ये नाम भला क्यों?
7: देखो, जम्बू का अर्थ होता है

0: जामुन, इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी। हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य

0: रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ? आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
1: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
2: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
3: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
2: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
3: हाँ पूछो बेटा।
2: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
3: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
1: लेकिन माँ,
3: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
2: जी
3: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
2: अच्छा माँ, ये लो माँ।
3: ला।
1: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
2: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
3: क्या मिल गया
2: मुझे? माँ माँ माँ,
3: क्या मिल गया? क्या मिल गया
2: मुझे? मिल गया।
1: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
3: जोसेफ क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
2: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
1: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
2: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ सर, इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो। इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
3: कुछ भी तो नहीं।
1: कुछ भी तो नहीं है।
2: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
1: वो तो है मगर
2: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
2: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
1: हाँ
2: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ चलो देखते हैं।
2: ठीक है आओ मेरे साथ।
3: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन। जोसेफ सुनो तो।
0: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे अरे
5: गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
6: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
7: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
6: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
7: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
6: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
8: अरे क्या करेंगे, अरे
7: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ गई
9: अच्छा मजा आ गया, लगता है कुछ हो गया है उड़ाएंगे।
7: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
9: भाई साहब हट जाइए, आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
2: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
9: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। हाँ? वो देखो टोकरे में, हाँ
2: अरे अरे, अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
9: हाँ? क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
2: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, हाँ? स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
9: हाँ? और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
2: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे वाह,
7: क्या बात है, क्या
9: बात है, कमाल कर दिया, मान गया, कमाल कर दिया बच्चों ने।
2: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
9: हाँ? अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
2: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
9: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
7: अरे शाबाश, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
9: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है, देखो पेड़ों की तरफ।
7: अरे
9: देखो,
7: अरे हाँ हाँ, अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया,
0: साथियों। ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
10: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आपने सुना उमंग की कड़ी संख्या 1299। आइए दोस्तों, अब रुख करते हैं दिल्ली की ओर, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार। इसके बाद रांची केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और मुंबई केंद्र से जुड़कर सुनेंगे विविध भारती द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल प्रति

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ।
1: और 2019, 2023, 2024 तथा 25 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा हुई। रूबियो ने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। कोड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। कोड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग से 3 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हुए। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें उपचार के लिए अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है। शॉर्ट सर्किट से कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा, ओके, इट्स नॉर्मल। बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं, बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ओके, आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न, ओके। दूसरी चीज ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है, उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इस ही घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं, क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
0: रिश्तेदारों को
1: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है, तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है, ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्त्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मैनी who are having hearing loss और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम hearing loss के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी hearing impairment है उनको है, एंड गैलोडेट यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं। सो इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली

0: और एप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो ये थिंग्स आर पॉसिबल।
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं? ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
0: देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके? सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, अप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स, इश्यूज नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके? ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके? एजुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ। टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल
1: क्या
0: फाइंड।
1: बात है।
0: तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस, थिंग्स आर पॉसिबल। प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है। टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस, थिंग्स आर पॉसिबल।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है? प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूं तो आप जोर से आवाज बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है। आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके? जहां से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं तो बच्चा वहां पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके? अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है तो दीज आर सर्टन साइंस जहां पे बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देर इज अ डोर बेल। तो इन्वायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो यस, द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड, मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट वेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं। तो ये सब एक बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बिहेवियरल रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉकलियर इम्प्लांट लगें या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है।
0: एग्जैक्टली
1: अगर छोटी मोटी तकलीफें हैं, छोटी मोटी समस्या है, तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास,
1: तुम रहती हो।
0: हाँ जी, किशोर कुमार जी।
1: जी सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा, वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा, भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा, वाचा और संप्रेषण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं,
0: जी
1: पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग। एंड दोनों की टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं।
0: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
1: राइट राइट राइट हाँ,
0: तो उनके लिए भी आपके
1: उनके
0: कुछ
1: लिए भी थेरेपीज होती हैं। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है, तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। टू एड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है, ओके। तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है, ओके। तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी
0: आसान होता है।
1: आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा।
0: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
1: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी। तो उनके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बैठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के वो समझता होगा, तो उसमें काफी मदद हो जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें, क्लासरूम नॉइज को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके। दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं तो कहूंगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उनको लगे कि यस, इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊं, तो सपोर्ट लेना और स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं। चौथी चीज इज, जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और
0: बिल्कुल।
1: कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या
0: तो
1: कॉकलियर
0: बहुत कॉमन
1: इम्प्लांट
0: हो गई
1: बहुत
0: तो।
1: कॉमन हो गई है। तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दी है मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए। अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ईएनटी के पास भेजें और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट।
0: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
1: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंडसेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफ़ी रीइन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा इश्यूज और कंसर्न्स नहीं आते हैं। पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्न्स आएंगे ही आएंगे। इट कैन बी उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम। पर ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है। तो ये कंसर्न्स जहां पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं। एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहां पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहां से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में। अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का तरीका जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है, ओके, बाकी वो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो। फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं, इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो।
0: बिल्कुल,
1: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स है ना हम सबके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स, ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विद योर स्पीच, ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है। तो बिहेवियर्स plays an important role because जो hearing impaired होते हैं वो mostly visual learners होते हैं, they are more of visuals, okay? तो आपका बर्ताव, आपका attitude, आपका body language, ये सब बहुत important role play करता है। यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो that means that will affect the child.
0: बिल्कुल सही बात है। इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: okay. अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली। एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं। दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो ज़रूरत है या लर्निंग नीड्स है बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की ज़रूरत है, ठीक है। अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फ़र्क है। मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा। हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि ये आवाज़ कौन सी है, इस आवाज़ का मतलब क्या है, आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, एंड अ टीडियस प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है। तो ये एक लर्निंग नीड है जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा। हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा, एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूअसली पहनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज़्यादा आप लैंग्वेज

0: आउटपुट होगा.
1: क्या बात
0: जितना
1: है।
0: लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज अफेक्टेड. सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है. मैं जितना ज़्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी. नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की. अपार्ट फ्रॉम दिस अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 + 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा. ओके पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा. बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, ओके एक टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में. नेक्स्ट व्हाट आई फील इज हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ओके वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है. अब एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी सारी अलग अलग चीजें खोलते हैं. ओके क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो, तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है. ओके बुक इस तरीके से खुलती है. ओके अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट. ओके दैट प्रोसेस इज डिफरेंट. तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. तो हेंस द कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है. नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं. कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है. और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चले ही जाएंगे. प्लस आई एम अ टीचर तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज्यादा आप अच्छा प्रोग्रेस होगा. तो
1: अभ्यास
0: हाँ
1: होगा।
0: जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है आप बोलोगे क्या मैं कराऊं रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊं, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं तो वो जो
1: बिल्कुल।
0: विजुअल थिंग्स है ओके दैट गोज इन हिज हेड. ओके बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग. आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है. जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक. तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो
1: बिल्कुल
0: दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड.
1: जी। तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह, जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में कुछ भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में, कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से, और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं। अमूमन होता होगा तुम्हें
0: राइट
1: कि
0: राइट राइट राइट
1: पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है। तो उनकी जो समझ, थिंकिंग प्रोसेस है, क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: सी आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है राइट. एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं. तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं. प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा. ओके कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग. एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज. ओके पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस. सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट मैं
1: बिल्कुल।
0: ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इंपेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इशूज होते हैं. नहीं, दे आर नो कॉग्निटिव इशूज, नो अंडरलाइंग इशूज एज सच. बट येस लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो. तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं. बट अगेन सेम थिंग बॉइल्स डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस

0: तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे करूंगी वो मुझे कैसे पता। जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज का संदर्भ भी नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं। वैसे
1: बिल्कुल। जहां हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ऐ दिल है मुश्किल।
1: ऐ दिल है मुश्किल जीना, यहाँ ये जी सुनते हैं ये गाना। ऐ दिल

0: डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल है तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूं तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊं? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है? ओके, और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट? हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता
0: है। बिल्कुल। डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं?
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो। हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफी डिफिकल्ट है, मैं एजुकेशन कहाँ से लूं और कैसे लूं। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है और उसको BEd का कोर्स करना है, MEd का कोर्स करना है या डिसलिटी ISL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन। ओके, दैट इज एज पर द स्कीम बच्चे के लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है तो इट इज टोटली फ्री। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू डेवलप अवेयरनेस और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में, कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है तो मुझे कहाँ जाना है. ओके, ये कहाँ जाना है ये अभी तक एक कंसर्न है. अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे, यू नो दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो. सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देर इज नो इंटरप्रेटर. ओके, तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज़्यादा इनरोल होना जरूरी है. थर्ड इज द एक्सेसिबिलिटी. इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ा दें तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज, पॉलिसीज जो है, इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छे से होगा. हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, बट फिर भी अगर ये दो तीन चीज पे और लाइनअप हम करें तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे.
0: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे, कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं?
1: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय पर्सनल,
0: आप तो हेड हैं, डिपार्टमेंट की हेड हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं.
1: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं. एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड. ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे. एंड आई यूज टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है. ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई

0: थॉट कि लेट मी गेट इन टू दिस फील्ड, बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं. एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स. कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं. दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है. बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफी ज्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफी अच्छा हो गया है. एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं. जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू. ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मींस फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज को देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज द थिंग वॉट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर.
1: बिल्कुल, भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ, तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी. अगर हर चीज़ उनके पहुँच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव. एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
1: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं, तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिनको सुनने में तकलीफ होती है, तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फ़ायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक. हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है. वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से ना, आई हैव अ वर्टिगो इश्यूज एंड ऑल. ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग विच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट. फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट. जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहां पे चलती है. फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके. और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एजुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहाँ पे भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल. सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से के पीएचडी तक. एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन. तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड काफी सारी कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच द अनरीच. तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो ओके वो हम देते हैं.
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHT NIC वेबसाइट है. आप वहां जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे. यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ.
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी जिनके घर में जिन बच्चों को जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहाँ इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टैक्ट

0: कर सकते हैं।
1: श्योर श्योर।
0: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
1: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट, तो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके विथ मी।
0: तुमको देखा तो ये ख्याल
1: हाँ
0: है,
1: ऑल गुड।
0: तो सुनते हैं ये।
1: ठीक है।

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी। और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहाँ कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत।
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग विथ एवरीथिंग, सो थैंक्स टू देम। थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वर्जन संस्था को। थैंक यू सो
0: थैंक
1: मच।
0: यू। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: आज के

0: विविध भारती पर हमारा अगला कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: श्रोताओ नमस्कार। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

रंग तरंग कार्यक्रम में अभी आपने भक्ति सुधा एल्बम से छाया गांगुली के स्वर में मीराबाई की यह पारंपरिक रचना सुनी, जिसे संगीत से संवारा था संगीतकार जयदेव ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: है।
1: तुम न मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। काबिल अजमेरी का ये कलाम आप सुन रहे थे पंकज उधास की आवाज में, अ गिफ्ट ऑफ सॉन्ग एल गजल एल्बम से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर रंग तरंग कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं देव कोहली के रचना और आनंद राज आनंद के संगीत की ओर।

0: देव कोहली के बोल थे आनंद राज आनंद का संगीत, शुभा मुद्गल और समुद्र की आवाजों में आप सुन रहे थे ये मोहब्बत है एल्बम का ये गाना। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

रोशन के संगीत से सजी ये कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। दिल ही तो है फिल्म का नाम था और साहिर लुधियानवी का कलाम। चलिए अब एक नाजुक से गीत की ओर बढ़ते हैं।

ये है प्रेम एल्बम से, ये बड़ा ही नाजुक सा सॉफ्ट सा गाना आपने सुना। श्याम अनुरागी ने इसे लिखा था, आवाज और संगीत का जादू मिलिंद इंगले का था। चलिए अब अगले एल्बम में आवाज का जादू है मोहित चौहान और कायम त्रिवेदी के साथ अतुल मित्तल का।

0: रियाजुर रहमान सागर का ये कलाम आप सुन रहे थे आशा भोसले और अदनान सामी की आवाजों में। एल्बम था कभी तो नजर मिलाओ। बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

बज़्मे ख्याल एल्बम से दिलराज कौर की आवाज़ में आपने अहमद वसी का ये कलाम सुना और यही थी आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात

0: की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं लेकर यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज सबसे पहला जो गाना शामिल किया वो 100 डेज फिल्म से था। एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ लता मंगेशकर की आवाज़, दिलीप ताहिर ने इसे लिखा था, राम लक्ष्मण का मचलता संगीत। और मेरे ख्याल से आपने ये गाना सुना और आप जान ही गए होंगे कि आज यादों की महफिल में वो गाने शामिल हो रहे हैं जिनमें गायक आवाज है एसपी बालासुब्रमण्यम की। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है तो हम उनको उनके गीतों के जरिए याद करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले गाने की ओर।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3।
1: वो क्या है ना कि

0: आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में साजन और मैंने प्यार किया, इन दो फिल्मों के बाद अब बारी आ रही है वंश फिल्म के इस गाने की।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सागर फिल्म का ये गाना आपने सुना। साथियों, एसपी बालासुब्रमण्यम की गायकी का एक अलग ही अंदाज रहा है। हर भाव के गीतों को कितनी सहजता से समेट लेते थे। अब ये गीत ही सुनिए ना। गीत संगीत बोल आवाज सब कुछ कमाल।

दिल को छू लेने वाले सच्चे बोल जावेद अख्तर के, सुरीला संगीत राहुल देव बर्मन का, गर्दिश फिल्म में इस गाने में आवाज एसपी बालसुब्रमण्यम की। चलिए यादों की महफिल कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ते हैं।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ अलका याग्निक की आवाज में आपने मझधार फिल्म का गाना सुना। यादों की महफिल कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए कुछ बेमिसाल गाने। और अब बारी है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों वाले उस गाने की जिसकी फिल्म का नाम है पत्थर के फूल।

तुमने हमको खूब मिलाया।

0: लिंकन रोड कभी वार्डन रोड टंकन रोड लैमिंगटन रोड कैजल रोड कभी पेडर रोड चर्नी रोड कभी अर्थर रोड टर्नर रोड कभी कार्टर रोड
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला
0: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
2: हाँ तो भाई, पत्थर के फूल फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ों में, और यही गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Sir Conrad K. Sangma, Union Minister of State Vadona, Sukanto Mojumdar, Union Home Secretary Govind Mohan, and Secretary of the Ministry of Dona Sanjay Jaju are present in the meeting. Governors and chief ministers of other northeastern states are also present in the meeting, along with several other dignitaries. The Northeastern Council, established under the Northeastern Council Act 1971, serves as the apex regional planning body for the northeastern region. It plays a pivotal role in fostering coordinated development and strengthening cooperative federalism in the region. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today visited Max Hospital in Saket to meet those injured in the Malviya Nagar fire incident yesterday. She interacted with the injured and their family members and also reviewed the ongoing treatment with the attending doctors and directed officials to extend all necessary assistance. An ex-gratia of 10 lakh rupees has been announced to the next of kin of each deceased. The seriously injured will receive 5 lakh rupees. A total of 21 people lost their lives after a fire broke out at a guest house in the Malviya Nagar area of New Delhi yesterday. The Uttar Pradesh government has decided to provide free bus ride to aspirants of state police constable exams to their examination centres. Chief Minister Yogi Adityanath gave instructions to the concerned officials regarding this in a review meeting. The recruitment examination for civil police constable and equivalent posts would be conducted on June 8th, 9th and 10th in two shifts each day. Mera Yuva Bharat, My Bharat has been officially recognized by Guinness World Records for achieving the title of most users to take an online quiz in 1 week, with over 390,000 participants who completed the entire length of the quiz. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia received the certificate in a ceremony held in New Delhi today. The record was achieved through the Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 quiz from the 25th to the 31st of October last year. The inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship is set to kick off this evening at Transtadia in Ahmedabad, Gujarat, marking a historic milestone on the global sporting roadmap. Prime Minister Modi will virtually join the mega event in the evening to share his best wishes as yoga enthusiasts and athletes from across the globe gather for the competition. Benchmark domestic equity indices were trading marginally down in afternoon trade today. The Sensex lost 35 points to 74,311 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: Akashwani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया वैश्विक उपलब्धि। देशवासियों से किया नियमित योग अपनाने का आह्वान। रांची सदर अस्पताल को मिला नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन। झारखंड का पहला मुस्कान प्रमाणित सरकारी अस्पताल बना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अभ्यर्थी अब 20 जून तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय रेल का नया कीर्तिमान। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवच 4.0 का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार। और झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग में कोल्हान डायनामोज और संथाल चैलेंजर्स की जीत। सभी चार टीमों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। गिरिडीह में महिला नियमित योग के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही हैं। योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति ने बताया कि योग से न केवल शरीर बल्कि मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है।
2: तो यहाँ पर हम लोग मेन रूप से योग महिलाओं को निशुल्क सिखाते हैं ताकि हमारा कम्युनिटी

0: हमारा समुदाय जो है निरोग रहे और हमारा एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।
1: उन्होंने कहा कि स्वयं स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने के बाद अब वे अन्य लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रही हैं। वहीं सविता कुमारी ने भी योग से स्वास्थ्य में सुधार होने का अनुभव साझा किया और लोगों से नियमित योग अपनाने की अपील की।
2: मेरा नाम सविता कुमारी है, मेरा सीओडी नियापुर है। योग बहुत अच्छा चीज है, योग करना चाहिए। योग से क्या है कि शरीर हल्का लगता है, मेडिसिन छूट जाती है और शुगर है, थायराइड है, ये बीपी है, सब कंट्रोल रखती है।
1: केंद्र सरकार के मुस्कान कार्यक्रम के तहत रांची का सदर अस्पताल अब नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन में अस्पताल ने 96.1% अंक हासिल किए। अस्पताल की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, पेडियाट्रिक वार्ड और पेडियाट्रिक ओपीडी को भी उत्कृष्ट अंक मिले। अस्पताल प्रशासन ने इसे डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और प्रशासनिक टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया है। जेटेट में भाषाओं के चयन को लेकर गठित समिति की बैठक में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि जेटेट केवल प्रतियोगी परीक्षा नहीं बल्कि शिक्षकों की स्थायी भाषाई और सांस्कृतिक समझ का आकलन करने वाली पात्रता परीक्षा है। वहीं मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भोजपुरी और मगही भाषा को शामिल करने की वकालत की।
3: वैसे जिले जहां जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई नहीं होती है वहां कम से कम आप हिंदी भाषा को जो तो अवश्य जोड़ी। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि संख्या बल पर किसी नीति का निर्धारण होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो धरातल की वास्तविक स्थिति है उसके आधार पर वो कोई सापेक्ष निर्णय लेंगे।
1: जैक ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के आवेदन लेने की तिथि बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जेटेट के कुछ अभ्यर्थियों से उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनुपलब्ध होने पर प्रपत्र ऑनलाइन भरने में कठिनाई होने की सूचना पर ऐसा निर्णय लिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। उत्तर रेलवे ने अत्याधुनिक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच वर्जन 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू किया है। इसके साथ उत्तर मध्य रेलवे में कवच नेटवर्क 445 रूट किलोमीटर तक पहुंच गया है, जो भारतीय रेल में किसी एक खंड पर स्थापित सबसे बड़ा कवच सिस्टम है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रणाली दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता को और मजबूत करेगी। कोडरमा विधायक नीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने कोडरमा थाना के सामने रांची पटना मुख्य मार्ग को करीब 4 घंटे तक जाम रखा। एसडीओ निर्मल सोरेन ने बताया कि मामले में अब तक 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी उच्च अधिकारियों को भेजा गया है।
4: घटना हुई है, यह कोडरमा जिला के लिए बहुत ही खतरनाक है और घटना की गंभीरता को देखते हुए यह आश्वासन दिया गया है कि जो भी नामजद अभियुक्त है मतलब उनकी जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो सके उतनी जल्दी गिरफ्तारी की जाए।
1: जमशेदपुर के टाउन हॉल सभागार में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बूथ लेवल एजेंट बीएलए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
5: और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सांगठनिक ढांचा है, जो स्वरूप है, अब बीएलए 2 से प्रारंभ होगा। बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी और केंद्रीय कमेटी, और हमारा जो सबसे मजबूत जो कमेटी होगा वो कमेटी हमारा बूथ कमेटी होगा, जिसके माध्यम से हम राज्य के विकास को और बेहतर ढंग से लोगों तक

0: पहुंचा पाएंगे?
1: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार लगभग 0.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 128 अंक बढ़कर 74,474 पर और निफ्टी 43 अंक बढ़कर 23,449 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,68,000 रुपये प्रति किलो है। रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में शुरू हुई झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के पहले दिन कोल्हान डायनामोज और संताल चैलेंजर्स ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए। उद्घाटन मैच में कोल्हान डायनामोज ने छोटा नागपुर ब्लास्टर्स को 8 विकेट से हराया, जबकि दूसरे मैच में संथाल चैलेंजर्स ने पलामू वॉरियर्स को 6 विकेट से पराजित कर दिया। जेएससीए पदाधिकारियों ने कहा है कि महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस लीग में भाग लेने वाली सभी 4 टीमों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जापान के काकामिगाहारा में खेले जा रहे पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में भारतीय जूनियर टीम का सेमीफाइनल मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। भारत ने पूल ए में दूसरा स्थान हासिल कर अंतिम 4 में जगह बनाई, जबकि पाकिस्तान की टीम पूल बी में शीर्ष स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत की नजर पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाने और खिताब जीतने की अपनी दावेदारी मजबूत करने पर होगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया वैश्विक उपलब्धि। देशवासियों से किया नियमित योग अपनाने का आह्वान। रांची सदर अस्पताल को मिला नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन। झारखंड का पहला मुस्कान प्रमाणित सरकारी अस्पताल बना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अभ्यर्थी अब 20 जून तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय रेल का नया कीर्तिमान। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवच 4.0 का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार। और झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग में कोल्हान डायनामोज और संथाल चैलेंजर्स की जीत। सभी 4 टीमों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

तो ये वही फिल्म थी, वही गाना था जिसका आपको इंतजार था। छबीली फिल्म का गाना था और आवाज अभिनेत्री नूतन की थी। जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि आपको अभिनेत्री नूतन की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, आपके दिल के करीब है, तो हमारी एक साथी लिख रही हैं कि उनकी किसी एक फिल्म को चुनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिल्म सौदागर में उनका अभिनय मेरे दिल को छू गया। तो वहीं दूसरी सखी ने भी लिखा है कि नूतन की सौदागर मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बेबस बेवा की शक्ति रूप का शानदार प्रदर्शन है। सच में साथियों, उनकी हर फिल्म में उनका क्लास अभिनय हम सभी के दिलों में आज भी बसा है। एक साथी ने लिखा है कि नूतन जी मेरे जन्म से पहले की अदाकारा हैं, परंतु उनकी कई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में मैंने दूरदर्शन पर, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर देखी हैं और उनकी नई फिल्में सिनेमा हॉल में भी देखी हैं। वे सदाबहार अदाकारा हैं। एक साथी ने लिखा है कि बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर है, और आगे लिखा है कि इस फिल्म में नूतन द्वारा निभाया गया कल्याणी का किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में अभिनेत्रियों द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ और सबसे सशक्त अभिनय में से एक माना जाता है। कल्याणी का चरित्र एक ऐसी शांत महिला का है जिसके भीतर जुनून और वेदना का ज्वालामुखी उबल रहा है। उन्होंने बिना किसी लाउड ड्रामे का अभिनय बहुत ही कोमलता और गरिमा के साथ इस भूमिका को जिया। उनकी संवाद के बजाय अपनी आंखों से उन्होंने सूक्ष्म के भावों से अपनी पीड़ा और असमंजस को पर्दे पर उतारा। वो प्यार, त्याग और अपराध बोध के द्वंद्व को केवल एक नजर से बयां कर देती थीं। फिल्म के क्लाइमेक्स में जिस तरह अपने प्यार, अपनी जिंदगी त्याग कर अपने

अपने प्यार की तरफ लौटती हैं, क्या कोई सिने प्रेमी उनके इस किरदार और को अदाकारी को भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता साथियों, कोई भी नहीं। और इतने भावों को अपनी आंखों से बयां करना कोई आसान काम नहीं है। तो एक साथी ने लिखा है कि नूतन की फिल्मों के गानों, विशेष रूप से लता मंगेशकर जी द्वारा गाए में, उनका जो लिप सिंक होता है इतना सटीक और स्वाभाविक होता था कि वे गीत सीधे उनके किरदार का हिस्सा लगते थे। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि उनकी सारी फिल्में, नूतन जी की सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं। सुनील दत्त के साथ उनकी फिल्म खानदान बचपन में दो आना टिकट दर पर देखी थी, पारिवारिक फिल्म सपरिवार देखी थी। नूतन जी की फिल्मों से जुड़ी आपकी कोई याद हो तो जरूर साझा कीजिए साथियों। और हाँ, अपनी लिस्ट के गाने टिक करना मत भूलिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपके कौन कौन से गाने मेल खा रहे हैं। एक कमेंट आया है कि नूतन महज एक अभिनेत्री नहीं थी बल्कि भारतीय सिनेमा के कैनवास पर उकेरी गई एक ऐसी जीवंत कविता थी जो बिना किसी शोर के सीधे दिलों को छू लेती हैं। चेहरे पर सादगी, अभिनय में सहजता और कैमरे के सामने हमेशा ईमानदारी रहने वाली नूतन की अभिनय शैली, संवाद अदायगी और उनकी भावभंगिमाओं में दर्शक बन जाते हैं। नूतन अपने किरदार में इतनी गहराई से उतर जाती थी कि सिनेमा घर से बाहर निकलने के बहुत बाद भी उनकी हर हरकत, हाव भाव, नजर और संवाद मन में बसे रहते हैं। उनकी आंखें शब्दों से अधिक कह जाती हैं। नूतन आज भी उस पहली बारिश की महक की तरह हमारे दिलों में महकती हैं, जिनकी यादें वक्त के साथ कभी धुंधली नहीं होती। बहुत अच्छी बातें आपने बहुत अच्छे शब्दों को पिरोकर लिखी हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मैंने भी आज की इबारत से एक पैराग्राफ बनाया है और पुराने रेडियो गीतों की मधुर धुनें जब श्वेत श्याम यादों को फिर से जीवंत कर देती हैं तब मन अनायास ही उन सुनहरे पलों में खो जाता है। कभी सुजाता की मासूमियत दिल को छूती है तो कभी बंदनी की भावनाएं मन को बांध लेती हैं। अनाड़ी, छलिया, सौदागर और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों के किरदार आज भी यादों में वैसे ही बसे हैं जैसे सावन में कन्हैया की बांसुरी की मीठी तान। वाह, क्या बात है। आगे लिखा है, चुनरिया के रंग, राधा का प्रेम, छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी और एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने जैसे गीत पुराने दौर की मोहब्बत और अपनापन फिर से महसूस करा देते हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने भेजा है कि आज की इबारत में एक नूतन प्रयोग किया गया है जिसमें अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों को जोड़कर इबारत बनाई गई है। आज छैल छबीली अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों और उनके शानदार अभिनय और बढ़िया गीतों से सुरीले सफर को सजाया गया है। अपनी आंखों से अभिनय को जीवंत करने में माहिर नूतन जी ने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। श्वेत श्याम फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और ढलती उम्र में भी मां की भूमिका में भी अपने बेहतरीन अभिनय से वो स्थान बरकरार रखा जो वो शुरुआती दौर में था। ऐसी महान अभिनेत्री नूतन जी को विनम्र नमन। एक कमेंट आया है कि नूतन जी हिंदी सिनेमा की सबसे संजीदा और सहज अभिनेत्रियों में जानी जाती हैं। उनकी आंखें ही संवाद बोलती थीं। फिल्म बंदनी में कल्याणी की खामोशी हो या सुजाता में अछूत लड़की की पीड़ा या फिर तुलसी तेरे आंगन की वे सौतन की जटिल भावनाएं उनकी आंखें ही बोल देती थीं। सत्यजीत रे जी ने कहा था कि नूतन की आंखों में ही स्क्रिप्ट लिखी होती है। नूतन जी ने अपने हर किरदार को जिया है। उन्होंने आदर्श नायिका की परिभाषा बदली और उनके किरदार कमजोर नहीं बल्कि हालातों से लड़ने वाले ज्यादा रहे। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें सादर नमन। और जैसे कि बात बंदनी की चल ही रही है तो जब बात चले बंदनी फिल्म के जिक्र आए तो उस फिल्म का ये गाना ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता।

हाँ तो सत्य, ये गाना ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब बंदनी फिल्म का जिक्र हो, और आज भी ये गाना सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखें हमारे साथी लोग क्या कहते हैं। वैसे जब बहुत सारे साथियों ने उनकी मुस्कान और आंखों के बारे में लिखा है, तो सच में साथियों, नूतन जी की मुस्कान में मासूमियत थी, उनकी अदाकारी में गहराई थी, सादगी उनका आभूषण थे और प्रतिभा उनकी असली पहचान थी। और वो सिर्फ पर्दे का सितारा नहीं थी, बल्कि वो हैं भारतीय सिनेमा की अमर विरासत। चलिए देखते हैं हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि बंदनी सौदागर, मेरी जंग, कर्मा, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सुजाता, मिलन और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारी पसंद की हैं। आगे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की बंदनी, अनाड़ी और सौदागर तीनों फिल्मों में उनका काम बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन काम लाजवाब है, उनकी मुस्कुराहट दिल को मोह लेती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं फिल्म सीमा, बंदनी, सुजाता, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की यादगार फिल्म है। वैसे बचपन में दिल्ली का ठग देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी उसके एक गाने के लिए। वो गाना कौन सा है जरा ये तो बता दीजिएगा। और दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं नूतन जी के सब फिल्में तो मैंने देखी नहीं है, मुझे नूतन जी अभिनीत बंदिनी और सौदागर फिल्म में उनका अभिनय बहुत अच्छा लगा। तो वहीं वैसे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की 1973 की सौदागर फिल्म बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, जो नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी रस पर आधारित है। ये फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई। रविंद्र जैन का जादुई संगीत बेहद शानदार, गीत है तेरा मेरा साथ रहे में भी शामिल हो। इंतजार कीजिए ना। एक कमेंट में लिखते हैं कि नूतन जी उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने ये साबित किया कि एक महान कलाकार को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चिल्लाने या तेज संवादों की आवश्यकता नहीं होती। सीमा, सुजाता और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में उन्होंने जो रेंज दिखाई वो आश्चर्यजनक थी। बिल्कुल करेक्ट आपने लिखा है ये बात। और दूसरे साथी लिखते हैं कि नूतन जी बहुत सुंदर अभिनय करती थी, उनकी कुछ फिल्में जो हमें पसंद हैं, सरस्वती चंद्र, बंदिनी, सुजाता, सीमा वगैरह वगैरह। एक कमेंट में सुजाता फिल्म के लिए लिखा है कि ये फिल्म समाज में फैली छुआछूत और जातिवाद जैसी गंभीर रूढ़ियों पर चोट करती है। नूतन ने इसमें एक अछूत लड़की सुजाता की मुख्य भूमिका निभाई थी। विशेषतः नूतन के अभिनय की सादगी और उनके द्वारा झेले गए सामाजिक दर्द को दर्शकों ने बेहद करीब से महसूस किया। समीक्षकों के अनुसार इस फिल्म ने नूतन को एक गंभीर और संजीदा अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर संजीदा अभिनेत्री नूतन जी के जन्मदिन पर उन्हीं को समर्पित है। ये जानकर अच्छा लगा, शोभना समर्थ की बेटी ने अपने अभिनय से मां का नाम ही नहीं ऊंचा किया, उन्होंने जिन भी फिल्मों में अभिनय किया एक आदर्श पत्नी, बहन, प्रेमिका, मां के रूप में जो स्थान पाया वो किसी अभिनेत्री को आज तक नहीं मिला। बंदनी फिल्म के लिए लिखा है कि 1963 की बंदनी बिमल रॉय के निर्देशन में बनी इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के मील का पत्थर माना जाता है। इसमें उनके सशक्त अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट हमें लिख भेजा है, नमस्कार करते हुए, गुड आफ्टरनून करते हुए कि सुरीला सफर के लिए कि टुडेज द टेक्स्ट इज नाइस एंड इंडिकेट्स मेनी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स दैट विल बी द कंपेनियन ऑफ लिसनर्स इन सुरीला सफर फ्रॉम बंदिनी छलिया सुजाता सौदागर अनाड़ी सरस्वती चंद्र खानदान पेइंग गेस्ट टू तेरे घर के सामने ओनली नूतन जी एंड नूतन जी एक्सीलेंट स्पॉन्टेनियस ब्यूटिफुल एक्ट्रेस ऑल द बेस्ट।

0: एक कमेंट में लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर की हम सफर बन रही हैं अपने जमा जमाने के दिग्गज अभिनेत्री और गायिका नूतन, जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के सारे गीत उन्हीं की फिल्मों से होंगे और उनके नाम की इबारत में बड़ी खूबसूरती के साथ शामिल किए गए। नूतन हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज और बहुमुखी कलाकार थी, जिन्होंने अपनी सादगी, सशक्त अभिनय और अनूठी शैली से दर्शकों का दिल जीता। और लिखा है आगे दूसरे साथी ने कि आज सुरीले सफर में होंगी वो बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत नूतन जी, जितनी हमारे बीच की सामान्य सी लड़की वहीं बेहद स्मार्ट नायिका छलिया अनाड़ी में, एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिलेंगे, बहुत ही खास होगा आप सभी के साथ नूतन जी की बातें। और खानदान का वो खूबसूरत गीत तुम्हें मेरी मंजिल, फूल तुम्हें भेजा है, ढेर सारे गाने इन्होंने लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब जो बातें चल रही हैं और इसमें जिक्र आ चुका है फिल्म सुजाता का, जो कि सभी साथियों ने लिखा है, तो फिल्म सुजाता का वो गीत जिसका आप सबको है इंतजार, और मुझे लगता है कि ये गाना निश्चित रूप से आप सभी की लिस्ट में जरूर होगा। बताइएगा जरा कि इस गाने में इनके साथ कौन है।
1: Mm-hmm.

सुजाता फिल्म का ये गाना जलते हैं जिसके लिए। इस गाने को जितनी बार चाहो रेडियो पर सुनो या पर्दे पर देखो बहुत कम लगता है। कितना सहज है ये गाना और अभिनेता अभिनेत्री कितनी सहज अभिनय इसमें इन दोनों कर बैठे हैं। जैसा कि हमने पूछा था आपसे कि इस गाने में अभिनेता कौन है, तो हमारे सभी साथियों ने इसका बिल्कुल सटीक आंसर दिया। साथियों ने लिखा है कि सुनील दत्त टेलीफोन पर यह गाना उन पर फिल्माया गया है और इस गाने में नूतन भी टेलीफोन पर ही हैं जो सुनील दत्त के दिल की बातें सुन रही हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म खानदान का तुम्ही मेरी मंदिर तुम्ही मेरी पूजा ये गाना जो है बहुत से संगीत कार्यक्रमों में गाया है मैंने और एक प्रतियोगिता में इस गाने के लिए पुरस्कार भी जीता है। वाह भाई क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो आगे एक हमारी सखी लिखती हैं कि बंदिनी सुजाता और सीमा। आगे लिखा है कि नूतन जी की किसी एक फिल्म को चुनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने मेरी सबसे ज़्यादातर तीन फिल्मों का अलग अलग फिल्मों के बारे में जो इन्होंने लिखा है ये फिल्में इन्हें बहुत पसंद है। एक कमेंट है जिन्होंने लिखा है कि मैंने रेडियो थोड़ा देर से चालू किया और जैसे ही चालू किया मोरा गोरा रंग गाना आया, मन खुशी से झूम उठा। मुझे लगा शायद ये गाना बच चुका है। मैं जब छोटी थी दूरदर्शन पर सुजाता पिक्चर देखी, हर पिक्चर देखकर मन रो देता था। हमेशा अपने ऊपर होने वाले अन्याय के लिए चुपचाप सहती रहती नूतन जी। वैसे तो हमारी मम्मी के जमाने की हीरोइन थी लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो सीधी और शांत सहेलियां रहती थी उनको हम सब कहते थे ये नूतन है और बाकी सब तनुजा। तो बताइएगा जरा कि नूतन जी और तनुजा जी में रिश्ता क्या है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म सुजाता का गाना हमने सुना, सुनील दत्त साहब टेलीफोन पर नूतन जी को अपने दिल की बात कह रहे हैं, आवाज तलत महमूद साहब की है। और एक ने लिखा है कि फिल्म सुजाता में सुनील दत्त जी हैं और बहुत अच्छा फिल्मांकन है ये। दूसरे साथी लिखते हैं कि श्वेत श्याम फिल्मों का दौर भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय था जहां अभिनेत्री नूतन ने अपने स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान बनाया। इन्हीं स्मृतियों में सुजाता का भोला चेहरा, गहरी आंखें और मासूम अदाएं जीवंत हो उठती हैं। कहीं वो बंदिनी है, कहीं अनाड़ी की नायिका, तो कहीं प्रेम और विरह के गीतों में डूबी एक संवेदनशील स्त्री। उनकी फिल्मों में के अनेक गीतों को के साथ प्रेम, प्रतीक्षा तथा सपनों से भरे इस अमर श्वेत श्याम गीत को आज भी जब रेडियो पर सुनते हैं, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तब श्वेत श्याम दौर की फिल्में और गाने सुनहरी यादें बनकर मन को छू जाते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत में शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस शख्सियत की फिल्मों से गीत ढूंढना है जिनका नाम नूतन है। आज उनका जन्म स्मृति दिन है, उस छबीली अभिनेत्री को विनम्र नमन करते हैं। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में नूतनता भरी होती थी क्योंकि नूतन एक अभिनेत्री ही नहीं भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति थी। हर कोई एक कार्य की सीमा होती है लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो कन्हैया अनाड़ी या छलिया राज कपूर के साथ हो, या सौदागर अमिताभ बच्चन के साथ हो, या धर्मेंद्र के साथ दुल्हन एक रात की बनकर चुनरिया रंग

लिहोया हैंडीकैप सुनील दत्त की पत्नी राधा बनकर उनकी सेवा करते हुए खानदान का नाम रोशन किया हो या पेइंग गेस्ट देवानंद को तेरे घर के सामने घर बनाने और दुनिया बसाने की हामी भरती हो, उस छोटी सी गुड़िया की कहानी का सुनने का इंतजार रहेगा। और इन्होंने अपना उनको विनम्र नमन भेजा है। तो चलिए, जब अनाड़ी फिल्म का भी जिक्र आ चुका है राज कपूर जी के साथ, तो अब हम अनाड़ी फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि ये गाना जैसे ही शुरू होता है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं।

तेरा जाना, दिल के अरमानों का लुट जाना, अनाड़ी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज और फिल्माया गया नूतन जी पर। जैसा कि हमने पूछा था कि इस गाने में जैसे ही शुरुआत होती है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं, तो हमारे सभी साथी लिखते हैं कि पियानो बजा रही हैं अभिनेत्री, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। और हमने ये भी पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी में आपस में क्या रिश्ता है, तो उसको लेकर भी बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं। उससे पहले हम नूतन जी की फिल्मों से लेकर एक याद साझा की है हमारे एक साथी ने कि एक घर बनाऊंगा जी, मैं बताना चाहूंगा कि शादी से पहले मैंने होने वाली धर्म अपनी धर्म पत्नी के घर के सामने तो घर नहीं बनाया, लेकिन एक बड़ा घर बनाया उनके घर के सामने वाली सड़क पर, और अजमेर की उसी कॉलोनी में फिर ब्याह कर अपनी धर्म पत्नी को उसी घर में स्वागत किया। एक ये प्यारी सी याद इनकी बड़ी

मीठी सी रही, बहुत अच्छी लगी। और वहीं जहां पर हमने पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी का रिश्ता, तो लिखते हैं साथी कि नूतन और तनुजा आपस में सगी बहनें हैं, लेकिन दोनों का फेस बिल्कुल नहीं मिलता। तो दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन की छोटी बहन है तनुजा, दोनों शोभना समर्थ जी की बेटियां हैं जो स्वयं अपने दौर में नायिका रही हैं। फिल्म सुजाता के लिए लिखते हैं कि ये सदाबहार गीत जलते हैं जिसके लिए तलत महमूद की मखमली आवाज में गाए गए, मजरूह सुल्तानपुरी के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों में से एक है। एसडी बर्मन के संगीत और सुनील दत्त के फोन पर अभिनय से मधुर बनाया है इसे। और एक साथी ने कुछ अपनी यादें साझा की हैं कि नूतन बुआ जी की तो सभी फिल्में देखी हैं, पर अब आप लोग कहेंगे कि इसकी बुआ कैसी, तो बताती हूँ। जब हम ठाणे में थे और बाबा पिताजी के दोस्त पर्सनल सेक्रेटरी थे नूतन बुआ जी के, तब वो मुमरा में रहा करती थी। बाबा को बालू चाचा ने एक बार नूतन बुआ जी के घर में ले गए थे, तो वो बाबा की वो अनमोल याद मिली जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तब नूतन जी ने खाना खुद बनाया और इन दोनों को खिलाया, बहुत सिंपल सा। और नूतन बुआ मराठी में बहुत सुंदर बातचीत करते हुए खुद को परोसा गेट तक छोड़ने आई और मराठी में कहा, ये तरहा भाऊ कधी कधी वेल मिलाला तर बालू दादा सोबत। बाबा नतमस्तक हो गए कि इतनी बड़ी हीरोइन खुद खाना बनाती है, परोसती है, ऊपर से गेट तक आती है, भाव कह के ऐसी हीरोइन कहीं नहीं मिलेगी। बहुत यादगार बात है। नूतन जी के लिए कुछ और हमारे पास कमेंट्स हैं। लिखते हैं कि नूतन हिंदी फिल्म जगत की एक नामचीन अदाकारा रही हैं, उनके अभिनय का लोहा हर किसी ने माना है। गूगल ने हिंदी सिनेमा की इस दिग्गज अभिनेत्री को उनके 81वें जन्मदिन पर एक विशेष गूगल डूडल के माध्यम से याद किया था। उनकी बेजोड़ अभिनय क्षमता को श्रद्धांजलि देते हुए डूडल में उनके निभाए गए सबसे प्रतिष्ठित किरदारों के भावों को दर्शाया गया। नूतन की बहुमुखी प्रतिभा को केवल एक चित्र में समेटना मुश्किल था, इसलिए डूडल में उनके चेहरे के चार अलग अलग भावों को चित्रित किया गया था। ये भाव बंदिनी की संघर्षरत कल्याणी, सुजाता की व्यथित और सीमा की एक उपद्रवी अनाथ लड़की के रूप में उनके उत्कृष्ट अभिनय को दर्शाते हैं। नूतन की एक विशिष्ट अभिनय शैली थी जिसमें वे चेहरे की न्यूनतम भाव भंगिमाओं और आवाज के मॉड्यूलेशन से गहरा भाव प्रवण अभिनय किया करती थी। बिल्कुल। और इस गाने में भी जो अब आप सुनेंगे, उनका जो आंखों का और जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी कुछ कम तो नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इस गाने में उनके नायक कौन है, और हमारे मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने का भी इंतजार आप सबको है। वैसे आप सब अपनी अपनी लिस्ट के गाने नोट कर रहे हैं ना, हम तक भेजिए जरूर कि आपके अब तक कितने गाने टिक हो चुके हैं।

सौदागर फिल्म का ये गाना था और हमारे सभी साथियों ने लिखा कि इस गाने में नायक थे अमिताभ बच्चन। एक साथी लिखते हैं कि रविंद्र जैन जी का जादुई संगीत, तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा कि वह बेहतरीन मधुर और भावपूर्ण गीत। बेचारी का इस गाने के बाद अमिताभ द्वारा तलाक देना दर्शकों को झकझोर गया था। दूसरे साथी ने लिखा है कि विविध भारती के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि तेरा मेरा साथ रहे, दिन हो के रात सदा बना रहे ये साथ। तो दूसरे साथी ने लिखा कि भाई मेरा तो पांचवा गीत हीरो अमिताभ बच्चन रहे एक फिल्म नूतन जी के साथ, इनका पांचवा गीत शामिल हुआ। और दूसरे साथी ने लिखा कि फिल्म अनाड़ी नूतन पियानो बजा रही है, मेरा वाला गाना आ गया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि वो पियानो बजा रही है, वैसे गाने में बांसुरी का भी खूबसूरत प्रयोग किया गया है, अनाड़ी तेरा जाना हाई पिच पर विशेष गायकी। तो दूसरे साथी ने लिखा कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत भी शामिल हो चुका है। और एक साथी लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून, आज प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत लेट हो गई, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है और ये अभी हॉस्पिटल से आई हैं, तो जैसे ही आपकी आवाज़ सुनी प्रोग्राम नूतन जी पर है, उनके जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हैं और उनके बारे में क्या कहें, उनकी फिल्मों में से कोई एक फिल्म चुननी बहुत मुश्किल है, मुझे तो उनकी सारी फिल्में बहुत पसंद हैं, उनकी बंदिनी सीमा ये दोनों फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अब वक्त हो चला है कि आज के इस कार्यक्रम का आखिरी मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबकी नजर।

एक साथ ही लिखते हैं कि आज महान अभिनेत्री न्यूटन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप सुरीला सफर में सम्मान दिया जा रहा है। बेहद पसंद आया ये आपका जेस्चर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए हमारे एक साथी लिखते हैं कि अनेक साथियों के कमेंट शामिल हुए, उन सभी को बधाई और इन्हें प्रस्तुति अच्छी लगी। दूसरे साथी ने लिखा, शानदार लाजवाब सफर रहा आपके साथ, गति में और संगीत में कार्यक्रम का धन्यवाद, प्रश्नों ने बांधे रखा। तो अब साथियों वक्त हो चला है कि आपसे ले लें इजाजत। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती के इस कार्यक्रम सुरीला सफर को सुरीला और खूबसूरत बनाने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर बाद, फिलहाल आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजुमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजनाएं शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग

0: लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
1: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसकी में आगने की बात है। सब सर्किट कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी उसकी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
2: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मित एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
3: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून।

0: आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद।
1: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया लाड साहब फिल्म का ये गाना था आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार

0: जी एल रावल के बोल थे सोनी कोमी का संगीत। रोशन के संगीत से सजा होगा अगला गाना, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चलिए साथियों, अब सुना जाए रोशन के संगीत से सजा और साहिद लुधियानवी का लिखा गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। क्या कहता है ये गाना, दिल ही तो है।

मिलन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद की तर्ज पर शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम शबाब।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये रातें, ये मौसम।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर दिल्ली का ठग फिल्म के इस गाने में आप सुन रहे थे। SH बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रवि ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। साथियों, इन सदाबहार नगमों की सुंदरता, इनका सौंदर्य, इनका हुस्न कल भी तरोताजा था, खूबसूरत था, आज भी है और हमेशा रहेगा। चलिए अब
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन पर प्रशासन की मौजूदगी में बाउंड्री का काम शुरू हो गया है। निर्माण कार्य की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया। मौके पर पहुंचे कांके अंचल अधिकारी अमित भगत और पुलिस बल ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि यह उनकी उपजाऊ खेती योग्य जमीन है जिससे उनकी आजीविका जुड़ी है। केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर जामताड़ा में विशेष उत्साह है। भाजपा जिला महामंत्री अभय कुमार सिंह ने इसे विकास का स्वर्णिम युग बताया है।
2: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 12 साल लगातार सेवा पूर्ण हुई, जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया, जिससे समय का भी बचत हुआ। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बैंक से लोन लेकर समूह के माध्यम से व्यवसाय शुरू किया तथा सशक्तिकरण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान मिला।
1: वहीं ग्रामीण महिला सुलेखा मोहली ने कहा कि उज्ज्वला योजना और बैंक ऋण से महिलाएं सशक्त हुई हैं। अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने से देश की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड की हिंदेगढ़ा पंचायत में महिला किसानों के लिए जलवायु स्मार्ट और जैविक कृषि पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कम लागत में टिकाऊ खेती के जरिए उत्पादन और आय बढ़ाना है। केंद्रीय वर्षा आधारित ऊपरी भूमि धान अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर शिव मंगल प्रसाद और डॉक्टर सोमेश्वर भगत ने महिलाओं को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की विस्तृत जानकारी दी। चतरा के इको पार्क में आज विश्व पर्यावरण दिवस के सप्ताह व्यापी कार्यक्रम के तहत भव्य पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। 3 श्रेणियों में हुई इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषयों पर अपनी रचनात्मकता के माध्यम से प्रकृति बचाने का संदेश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू में पुलिस विभाग की आपातकालीन प्रणाली मजबूत करने के लिए डायल 112 के तहत 36 आधुनिक बाइक शामिल की गई है। DIG किशोर कौशल और SP कपिल चौधरी ने इन GPS और सायरन से लैस गश्ती वाहनों को हरी झंडी दिखाई। अधिकारियों के अनुसार इससे पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी और त्वरित रिस्पॉन्स सुनिश्चित होगा।
3: ये झारखंड सरकार के द्वारा सभी जिलों को 4-पहिया वाहन और 2-पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए, जिससे कि सघन रूप से गश्ती सुनिश्चित की जा सके। उसी चरण में पहले 4-पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए, 2-पहिया वाहन भी उपलब्ध कराए गए, जिससे पलामू पुलिस के द्वारा और उसके गाड़ी जैसे GPS उसमें लगाया गया।
1: पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2026 के आयोजन की घोषणा की गई। यह 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव आगामी 26 से 28 जून तक रांची स्थित सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति के सचिव पुलन मित्रा और नवीन सहाय ने बताया कि इस फेस्टिवल की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें केवल झारखंड के फिल्मकारों द्वारा निर्मित फिल्मों का ही प्रदर्शन किया जाएगा। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने रांची सहित राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। अहमदाबाद में आयोजित 15वीं मॉडर्न पेंटाथलॉन नेशनल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी यानी JSSPS के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बाइथल इवेंट में आरती कच्छप ने, रजत और आतासी कुमार ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। दोनों खिलाड़ी होटवार के JSSPS स्विमिंग सेंटर की हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। और ममता जी क्या बात है, आप थोड़ी बुझी बुझी सी, थोड़ी सी खामोश सी, थोड़ी सी नाराज सी नजर आ रही
1: अब कहाँ नाराज तो बिल्कुल थी नहीं पहले भी, लेकिन जो बुझा बुझा चेहरा आपको लगा और आपके हाथों का स्पर्श मिला तो उदासी तो मेरी चली गई वैसे ही। और जिंदगी में क्या होता है कि थोड़ा गम थोड़ी खुशी सबको मिलती है, कई बार हम यूं ही बेवजह चुपचाप बैठ जाते हैं तो लोग उसको उदासी समझते हैं, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ। तो आपने जब स्पर्श किया और हाथ मिलाया मुझसे और कहा कि क्या बात है, क्यों थोड़ी सी उदास लग रही, बस मैं मुस्कुरा उठी
2: और वो छू मंतर हो गया सारा। हाँ। सारा दर्द, क्योंकि देखिए ना हर किसी के जीवन में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी होती है, और हम ऐसे है ना कि अगर हमारे मन से थोड़ा भी अलग हुआ ना तो हम भी परेशान हो उठते हैं।
1: बोले
2: ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानियां होती है पर हम उसे बहुत ज्यादा मान भी लेते हैं कि अरे ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ में।
1: बिल्कुल,
2: तो हर किसी के साथ ऐसा होता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तो होता ही है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई तो परेशान हो जाते हैं,
1: किसी ने कुछ कह दिया
2: नहीं किया तो नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो घर की दादी माँ, नानी माँ या फिर पिताजी माँ, जिनसे हमारा स्पर्श कम होते जाता, उनका हाथ में हाथ थाम लिया और बस उनको एक झप्पी दे दी, प्यार भाई अगर लगा लिया तो वे खुश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो जो उदास बैठा है उसके पास जाकर जादू की झप्पी दे दे और प्यार से उसके कंधे पर उसके सिर पर हाथ रखे कि चलो सब ठीक हो जाएगा। भले ही आपको कारण पता हो ना हो, लेकिन इतने से कोई बहुत बड़ा दुख या अवसाद होता है तो दूर हो जाता है। और कई बार ये घटनाएं भी इससे घटित होती है कि लोग अपनी जिंदगी से अपने हालात से बहुत परेशान हाल होते हैं और वो कोई बड़ा कदम आत्महत्या जैसे कर रहे हो तो भी वो वक्त टल जाता है। और ये कहा जाता है कि आत्महत्या का बस कुछ लम्हा होता है, वो लम्हा अगर कुछ सेकंड टल गया तो वो टल गया, फिर उसके बाद मन ठीक हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई उदास चेहरा दिखाई पड़े तो बस उसके सिर पर हाथ रखें, एक स्पर्श से किसी की उदासी, किसी की नाराजगी, किसी का दुख दूर हो जाता है।
2: और साथ में आज हम कहानी पद्मश्री की इस सेगमेंट के अंतर्गत दुलारी देवी, जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग इस क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है तो इसमें गर्मी की छुट्टियों में आम खाने का आनंद,
1: बिल्कुल
2: यानी बचपन याद आ गया, नॉस्टैल्जिया हो गया ना,
1: मतलब आम के बाग में जाकर वो ढेला जो होता था पत्थर कंकड़ उससे फेंका और आम जो टूटता था और उस आम को लेने की पकड़ने की होड़ होती थी, कई लोग झुंड होता था बच्चों का तो वो झुंड दौड़ता था कि हम लेंगे हम लेंगे, और उसमें जो आनंद था वो तो जो इकट्ठा आम मिल जाए और अब जो आम मैंगो शेक बना के पीने का आनंद है या फिर पेटी में जो आम आता है जिसे आप खोलते हैं वो आनंद कहाँ है।
2: वो जो आनंद था उसकी तुलना ही नहीं हो सकती, भले उसमें पंछी ने भी अगर उसमें थोड़ा सा
1: खासतौर से खा लिया
2: तो भी हम उसे धोखे खा लेते थे।
1: तो कहा जाता है कि तोते ने अगर जूठा किया है तो वो मीठा
2: और मीठा होगा
1: और वो देसी आम तरह तरह के आम। तो हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि वो आम खाने का क्या सुख था वो बचपन वाला, और साथ में किस तरह के आम आपने खाए हैं, कौन कौन सी प्रजाति होती है आम की,
2: आपके क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां होती है,
1: लिख भेजें।
2: हाँ, और साथ ही उपयोगी टिप्स, यानी आम खा लिया, बहुत सारा आम खा लिया और व्यायाम नहीं किया तो वजन तो बढ़ ही जाएगा, तो वजन कैसे घटाए इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना शुरू भी कर दिया है, तो आप कितना आम खाते हैं और वजन घटाने के लिए क्या करते हैं इस बारे में हमें लिखकर बताइए।
1: विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी करें और कोई अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं आम खाने से जुड़ा हुआ। और ये जो हमने विषय दिया है बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, कि आज मोबाइल का जमाना है तो वो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, पता ही नहीं चलता कि कमरे में बैठा हुआ कोई रो रहा है, लोग अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर में अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत देर बाद पता चलता है। तो ये जो ऐसा कोई अनुभव है वाक्या है तो आप जरूर साझा करें, और हम अब साझा करते हैं ये गीत।

0: तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे, और अब आप मोबाइल के स्क्रीन से बाहर लौट आइए, क्योंकि अभी भी तो हम बात कर रहे थे ना मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आना, लेकिन अगर आप बाहर आ गई तो
1: हम श्रोताओं के कमेंट्स कैसे
0: पढ़ेंगे, ये बात तो है। तो ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को साथ में रखिए, लेकिन अभी हम पद्मश्री दुलारी देवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: जी, मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी ने कभी स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी। 25 साल पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पूरा देश उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानता है। और ममता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है,

आज पूरा देश उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानता है। और ममता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी देवी कहती है कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है, और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है।

0: लेकर बहुत कम जागरूकता थी और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वो कभी स्कूल नहीं गई इस वजह से। उनका परिवार मजदूरी करके जीवन बिताता था। दुलारी देवी बचपन से ही माँ के साथ काम पर जाती और घर में भाई बहनों की देखभाल करती थी, और उनके पिता मछुआरे थे।
1: देखिए.
0: तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें, इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी।
1: और मायके वापस आने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया.
0: जी, कितनी अजीब बात है ना कि कितने
1: जी
0: छोटे काम करती थी और
1: जी
0: उसके बाद और कहाँ तक पहुंची।
1: और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा. दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया. दोनों मिथिला आर्ट्स आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई. और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग कागज और कपड़े खरीद पाती. इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियां उन्हें सिखाई. और 1983 में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई. और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहां पर सीखने का मौका भी मिला.
0: और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए, 5 रुपए आज के जमाने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूंकि बिहार का मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई के बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्टकार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी।
1: और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं. और स्थानीय लोगों से जब चीजें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे. और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया. वहीं अपने सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपए में बेची थी,
0: क्या
1: जिसे
0: बात है,
1: बिहार सरकार ने खरीदा था. आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है.
0: क्या बात है।
1: और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया. कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते. और दुलारी देवी के पेंटिंग को इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था. कितनी कितनी गौरव की बात है.
0: बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और कहती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें।
1: और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है. इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है. और
0: और
1: पद्मश्री से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था, तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था. आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती. तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुन के.
0: बिल्कुल, और प्रेरणा की स्रोत है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें करते हैं।

0: तो सोनाली जी, ये गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया, और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की, कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था, वो एक वटवृक्ष की तरह था, कि
1: सचमुच
0: जैसे हम तपती धूप से निकल कर कहीं पेड़ की छाव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी नानी के आंचल तले, है ना। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, वो जैसे समय ही खत्म हो गया, वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया है। लेकिन इसी में, इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालें, एक साथ परिवार के साथ बैठें, थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल करें।

0: और हम लोग है ना, हम लोग भारतीय, खासकर हम लोग ना बस हाथ जोड़ते, चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसा झुक गए और जमीन में बस ऐसे घुटने तक ही कर
1: अब
0: दिया।
1: तो घुटने तक,
0: हाँ
1: हाँ
0: बस
1: बिल्कुल,
0: इतना करते हैं, पर जब हम किसी को छूते हैं ना तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है, और हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उस स्पर्श मिलता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। इसे स्नेह का सबसे सुंदर जो है ना, स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़ कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत में मिलता है, कभी दादा दादी के आशीर्वाद में, तो कभी मित्रों के आत्मीय आलिंगन में। ये स्पर्श शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है ममता जी, और इसमें प्रेम की भाषा होती है,
1: बिल्कुल।
0: विश्वास का संदेश होता है और सुरक्षा का आश्वासन होता है।
1: और इन स्पर्श में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देती है। बच्चा या बड़े शायद उन शब्दों को भूल जाएं जो उन्हें सुनाए गए थे, लेकिन प्रेम से भरा वो स्पर्श जीवन भर उनकी स्मृतियों में अंकित होता है। वो स्पर्श दो दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, कि आप जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी, और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, गले लगते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं, और वो जो अंतिम मुलाकात होती है
0: जी
1: एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है, या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं, जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे, तो ये बातें याद रह जाती है, और इसमें बहुत शक्ति होती है।
0: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीजें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठकर सभी भोजन किया करते थे, अलग अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती है, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थकान थक के लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई से भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो
0: छूमंतर हो
1: जाती
0: जाती
1: है।
0: थी, है ना।
1: लेकिन अब वो समय कहाँ है, और अब समय एक गाना
0: गीत
1: सुनवाने का।
0: सुनते हैं गीत।

0: सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच उसे,
0: स्पर्श के माध्यम
1: हाँ
0: से?
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है ममता जी। एक हमारे
0: इंदीवर ने लिखा था ये
1: जी
0: गाना, और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माएं, तीनों देवरानी जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दें। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी हैं। वो हमारा प्यार, स्नेह, समय और स्पर्श ही चाहती है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं।

0: दोस्तों विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहां आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेह स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
1: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, हाँ मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं है।
0: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी हैं क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपने छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़े होने के बाद याद रहती है, तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है, जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रभावित होती है, ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना या छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहां पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहां पे टकराव ज्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़ गए और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाएं, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे,
1: हम नहीं बोलेंगे, तो वो पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें।
0: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
1: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेहिल स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेह स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरी धर्म पत्नी इस मामले में 2 कदम आगे हैं।
0: क्या बात है भाई, बहुत
1: महिलाएं हर क्षेत्र में आगे
0: जी तो वैसे भी ये कहा जाता है महिलाओं के हिस्से में ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता
1: हाँ
0: आपके हिस्से में है, सहनशील बनो, तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशीलता महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
1: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए, जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना उसकी मिठास ही कुछ और होती है और अपने अपने ही होते हैं, बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
0: बिल्कुल, और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तलाशा जाने लगता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है, तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है इसको मेंटेन रखे। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर

0: बुजुर्गों की सेवा और बच्चों, जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिसमें जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं, बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहां पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है, अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं तो वहां पे हालत स्थिति बिगड़ भी सकती है। इसका भी ध्यान रखे आप।
1: बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी, कि कहां जरूरी है और कहां नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: कहां हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहां
0: और
1: हमें गले।
0: खासतौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उससे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय अब गाना सुनवा दे,
1: सुनते हैं गीत।

0: बना
1: साथ मैंगो काट के, तो सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सब काट के
0: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बना थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल
1: शक्कर
0: दो,
1: डाल दी। हाँ
0: टेस्ट होता है उसमें थोड़ा दूध डाल दो, फिर उसमें इलायची डाल दो, ऐसे करते करते करते फिर
1: ज्यादा
0: उसमें
1: हो
0: थोड़ी
1: जाता।
0: बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है, और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, थोड़ा सा ले ले, फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते, सब्जी है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस दो तीन फाक खा लो,
1: बस
0: हाँ
1: मतलब एक आम जैसे
0: हाँ
1: तैसे,
0: हाँ खा
1: उससे
0: लिया,
1: ज्यादा नहीं खाना
0: और
1: है
0: फिर अगर
1: तो
0: जब
1: ये।
0: आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम आनंद ले, सेहत भी रहे।
1: तब पराठे के ना है आम का पूरी,
0: पूरी
1: तो ये तो बहुत, तो हमारे

0: होता, पिता और दादा के लगाए हुए के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए, वो चाहे आम हो, लंगड़ा, चौसा या
1: जी
0: रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है वो सीख कर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कई कुछ आम तो गुठलियों से ही
1: अपने आप उग
0: पनप
1: जाते हैं।
0: जाते हैं, उग जाते
1: हाँ
0: हैं। जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी हमने कुछ गुठलियों से आम
1: आम
0: लगाए
1: लगाए
0: हैं
1: हैं।
0: और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा, बस पूछिए मत। एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतनी वैरायटी के आम की पूछो मत। जहां गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हापुस, वाह वाह, ये तो इधर मिलता ही नहीं है। जबकि दक्षिण का तोता परी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है। मगर हापुस, जी हाँ, सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है। अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, तो इनकी बात से हमें याद आ गया कि गांव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता था
1: हाँ,
0: और लोग बाल्टी, पूरी की पूरी बाल्टी आम खा
1: और
0: लेते
1: वो
0: थे।
1: छोटे छोटे जो चूसने वाले आम थे ममता
0: हाँ
1: जी, वो
0: हाँ
1: आते
0: और
1: थे।
0: आप तो कह रही कि एक आम दो फांक, वो
1: अब
0: तो
1: ओ ममता जी, वो जमाने में तो 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था, पर
0: उसमें
1: अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना।
0: और उसमें केमिकल नहीं होता था कोई
1: हाँ,
0: भी,
1: केमिकल नहीं
0: कोई
1: होते
0: दवा
1: थे।
0: मिला के नहीं, वो सीधे देसी
1: और
0: आम
1: खेलते
0: मिलता
1: कितने
0: था।
1: थे ममता जी हम उस वक्त, कि आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए, 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था। अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा ममता जी, कि गर्मियों की चिलचिलाते धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। ये व्यंजन भी और अचार भी आते हैं।
0: श्रोता ने लिखा कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे, तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रखकर खाते थे। तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे और
1: ये
0: आम
1: होठों
0: का
1: के यहाँ पे
0: और आम का पना भी बनता था।
1: हाँ
0: और साथ में गांव में तो आम के, आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे।
1: ओहो
0: तो
1: ये।
0: ये कितने तरह के आम के, कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही निराली
1: और
0: है।
1: आम की जो रोटी भी बनाते थे, वो आम का
0: हाँ,
1: रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा
0: आम
1: घी लगा
0: पापड़।
1: के आम
0: हाँ,
1: पापड़ उसमें डाल के और उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
0: अमावट भी कहा
1: जी
0: जाता है
1: जी
0: जिसे। तो और बोलिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं, और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मजा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मजा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूंगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठ कर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गांव याद आता है। नानी के गांव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहाँ जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है,
1: आप एक गीत सुन ले।
0: सुनते हैं।

0: वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राह प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ,
1: क्या बात
0: शाम
1: है।
0: को इवनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है, और जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं, रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं, दिन में संतुलित आहार दलिया दूध हरी सब्जी पालक लौकी करेला ग्वार फली 2 रोटी पर्याप्त और 1 कटोरी आम का रस, हर 1 घंटे 1 गिलास पानी। क्या बात है।
1: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहे हैं
0: जी
1: उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा, साइकिलिंग, तैराकी और नृत्य भी अच्छे विकल्प हैं।
0: और सबसे जरूरी बात है ममता जी कि नींद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे ना भोजन छोड़ने लगते हैं कि कुछ लोग ये खाना बंद कर देते हैं वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करें, जो लोग तनाव लेते हैं तो उन्हें भी उनका भी वजन बढ़ता है, और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, वे पिज्जा बर्गर चिप्स केक और मिठाइयों में कैलोरी ज्यादा होती है, तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए, और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना चाहिए।
1: मतलब आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे बताया था।
0: हाँ, आम के रस में शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाना है,
1: बिल्कुल
0: उसे
1: मीठी चीज में शक्कर मिला के ना खाएं।
0: अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं, तो जहां तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है।
1: और साथ में पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दें, प्रोग्राम का आखिरी गाना
0: सुन।

0: छोटी बहन फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और सुवीर सेन की आवाजें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं यूनुस खान बोल रहा हूँ। स्टूडियो नंबर एक वो स्टूडियो है जहाँ हम अपने फोन इन कार्यक्रमों के लिए आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0222867 0288, यानी 2867 02

0: 88 और 02-400-24662 यानी 400-24662। सोमवार को दिन में 11 बजे से रिकॉर्डिंग होती है। देश भर के श्रोता फोन करते हैं और कई श्रोता इस बात से निराश होते हैं कि उनका फोन नहीं लगता। दरअसल फोन लाइंस की अपनी सीमाएं हैं ना। देश के कोने कोने से जब हजारों लाखों श्रोता एक साथ कॉल करते हैं तो कुछ खुशनसीब श्रोताओं का कॉल लग जाता है और उनकी हमसे बात हो जाती है। बस ये है कि आप कोशिश करते रहिए। और हाँ, जहाँ से फोन कर रहे हो वहाँ शोर नहीं होना चाहिए। नेटवर्क अच्छा हो तो आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, कैसी हैं आप?
1: बहुत ही अच्छे हैं, मजेदार गर्मी का मजा लेते हुए हम आपको कॉल कर रहे हैं सर जी।
0: गर्मी का मजा, ये बड़ा तंज है ये।
1: हर मौसम का अपना मजा है सर जी। यदि अपन बारिश में फिर ये गर्मी धूप ढूंढेंगे तो फिर प्राप्त नहीं हो पाएगा ना।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस साल की गर्मियां कहर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता?
1: नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सभी मौसम के आदी हैं और हमें हर मौसम में अपने उनका मजा लेना बहुत अच्छा लगता है।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, फिल्म का नाम है हम आपके है कौन।
0: अच्छा,
1: उस फिल्म में लता मंगेशकर एंड एसपी बाल सुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत है सर जी, उस गीत को प्ले कीजिएगा
0: जी।
1: गीत के बोल मैं थोड़ा गुनगुना के बता दूं क्या सर जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: किसे जदा होकर तुम्हें दूर जाना है, कुछ पल की जुदाई फिर लौट आना है। ये वाला गीत सर जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आपने बताया कि आपका नाम पूनम नायडू है और आप बस्तर से हैं, तो बस्तर में कब से हैं आप या यहीं पैदा हुई हैं?
1: नहीं, हम यहीं पर पैदा हुए हैं सर जी। जब एमपी था, मेरे पापा का जॉब यहाँ आंध्रा से यहाँ हो गया तो हम लोग यहीं पे बस गए, मम्मी पापा, और हमारी पैदाइश जो है यहीं पे हुई एमपी में। बाद में डिवाइड हुआ ना छत्तीसगढ़ और एमपी।
0: अच्छा, तो आपको तेलुगु आती है?
1: हाँ, तेलुगु पूरा बोलते, घर में तो हमारी मातृभाषा है ना सर जी।
0: तो बताइए तेलुगु में इस बात को कैसे बोलेंगे कि सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गाना।
1: हाँ, एनंदी मी मीरू मी नच्चुने पाटा।
0: अरे बाप रे बाप। नहीं, इसको को थोड़ा छोटा बोलिए।
1: वेनवंडी मीरू मी नचिंदी पाटा।
0: वेरवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा, सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश,
1: राकेश यादव बोल रहा हूँ, सासनी के टलीगढ़ से।
0: राकेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, ठीक है।
0: क्या काम करते हैं?
1: दुकान करते हैं मोबाइल के। टाइम बहुत सुनता हूँ मैं, काफी दिनों से सुन रहा हूँ। जब हमारे जब ऐसा वो रेडियो था
0: जी,
1: बहुत काफी समय पहले से रेडियो भारती सुन रहे हैं।
0: अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
1: आशा पिक्चर का ही गाना सुनना चाहते हैं, शीशा हो या दिलो आके टूट जाता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते सर, जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी, जगदीश जी कैसे हैं?
1: बस बढ़िया सर।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे वो सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी की आवाज में मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, रूही नजारों में।
0: साथी फिल्म का गाना, मजरू सुल्तानपुरी की
1: जी
0: बोल,
1: जी
0: नौशाद की तर्ज। सुमन जी हमारे बीच
1: जी
0: नहीं
1: सर।
0: रहीं और एक तरह से आप इस गाने के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।
1: जी सर।
0: जी चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर,
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम अपने एमपी सागर से बिक्रम सिंह और चालू राजा।
0: बिक्रम सिंह, सागर में कौन से इलाके से बोल रहे?
1: सागर इलाके में तहसील बंडा, हमारा ग्राम छोटा सा गांव पड़ता है क्वायला।
0: बंडा तो समझ में आ गया हो, पर गांव का नाम समझ में नहीं आओ।
1: क्वायला क्वायला।
0: अच्छा बताओ क्या कर रहे हैं आज?
1: अब बैठे हैं सर, छोटी सी किराने की दुकान है जी।
0: अच्छा, और गर्मी अर्मी कैसी पड़ रही?
1: गर्मी तो सर बहुत है, अभी अब तो थोड़ी राहत मिल चुकी है।
0: काय बारिश हो गई का?
1: जी बारिश हो गई 2 दिन तक में।
0: अच्छा कितनी बारिश हुई, बहुत सारी हुई है थोड़ी सी हुई?
1: थोड़ी सी भाई है सर, ज्यादा तो नहीं भाई है।
0: हाँ।
1: हाँ।
0: अभी तो 9 तपा चल रहे, ये खत्म हो गए?
1: जी सर बिल्कुल, 3 दिन बाकी हो सर, वो तनक को
0: तनक बाकी है, 3 दिन बाद तो फिर बारिश आ जाए है, फिर मौज हो जाए है। काय
1: जी सर।
0: अच्छा कौन सा गाना सुनने हैं ये बताओ।
1: हमको सुना है पगला कहीं का।
0: है पगला कहीं का? को है पगला?
1: पगला कहीं का फिल्म का नंबर है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और बोल है वो मन्ना डे की आवाज में है, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा।
0: ए दद्दारे, किसी ने किसी की भैंस को डंडा मार दो का? का होगा हमें तो बताओ।
1: सर जी आपसे बात करके
0: मजा आ गया, हमसे बात करके हमें सो ही मजा आ गया, आपसे बात करके
1: आनंद आया सर।
0: सच्ची हमें भी बहुत ही आनंद आ गया, हमें जितने भी अपने श्रोता हरण है ना, सबसे बात करके बहुत ही मजा आता है
1: जी। आपका बिल्कुल सर बुंदेलखंड जैसा बटका है बिल्कुल आपका।
0: बुंदेलखंड ही आए अपन शुद्ध वाले। हाओ तो चलो बातों का सिलसिला कर रहे खत्म, और आपको सुना रहे आपकी फरमाइश को जे गाना।
2: क्यों मारा क्यों मारा
3: क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों
4: मेरी भैंस को डन

खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है, ये मच्छर बीन बजाते हैं, वो अपना राग सुनाती है, वो ठुमक ठुमक नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं, एक तारा मेरी भैंस को डंडा।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन?
1: मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ,
0: ज्योति जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: पीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश से। जी
0: अच्छा बताइए, क्या हालचाल है पीतमपुर के?
1: बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है। जी
0: गर्मी पड़ रही है, सब जगह गर्मी पड़ रही है और बहुत जोरदार पड़ रही है कि नहीं?
1: जी बहुत
0: अब
1: ज्यादा।
0: हमें ये बताइए कि इस साल गर्मी से बचने के क्या उपाय किए आपने?
1: गर्मी के से बचने के लिए बाहर जाए तो तावील लेके जाए, छाता लेके जाए, पानी
0: हाँ,
1: अपने साथ लेके जाए,
0: बहुत सही,
1: और
0: बिल्कुल
1: ज्यादा से ज्यादा धूप में कहीं ना निकले। गाना
0: सही बात है। अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म का नाम है सूरज, तुमसे इतना प्यार है।
0: क्या बात है, चलिए।

0: हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ।
0: क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: पैसा फिल्म के गाने सुनना चाहते। पैसा
0: गाने की बोल बताइए।
1: जिन्हें नाल है इन लोग पर वो कहाँ है।
0: क्या बात है, साहिर लुधियानवी की बोल, शानदार गाना, SD बर्मन का संगीत। जी कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में?
1: बहुत बढ़िया गाना है
0: जी।
1: कितना भी सुने तो मन भरता नहीं है।
0: बिल्कुल, कितना भी सुने इस गाने को मन नहीं भरता।
1: और मोहम्मद रफी की आवाज में तो क्या दर्द था।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश के लिए। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं दुलगोविंद मिश्रा उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा। हमारा गांव का नाम सुल्हाई है।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी सर, बहुत बढ़िया है। एक साल के बाद आपसे बात हो रहा है। मैंने डेली हर सोमवार को हम फोन लगाता है, लेकिन आपका नंबर नहीं लगता है सर, बिजी बिजी बताता है।
0: देश भर के श्रोता फोन कर रहे होते हैं तो इस वजह से मुश्किल होती है फोन लगने में।
1: आप बोलते हैं कि महीना में एक बार लगाने के लिए, मैं तो हर सोमवार को लगाता हूँ, लेकिन मेरा नंबर एक साल हो गया, कभी नहीं लगा सर।
0: तो आज लगा है, ये बहुत खुशी की बात है।
1: बहुत खुशी बात है, मेरे को बहुत खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उड़ीसा का नंबर नहीं लगता है, क्या सोच रहा था मैं।
0: नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने से लोगों के फोन आते हैं और सबके नंबर बारी बारी से लगते हैं। इतने लोग लगा रहे होते हैं कि फोन लाइन की भी अपनी सीमाएं हैं।
1: जी
0: बताइए, क्या हालचाल है आपके इलाके के, उड़ीसा के?
1: जी हालचाल तो सिर्फ गर्मी के लिए तो बहुत, हर आदमी परेशान है, बहुत गर्मी हो रहा है। ये 3 दिन से थोड़ा सा मैंने बारिश हो रहा था, थोड़ा सा राहत मिला है।
0: जी जी बारिश होने से वाकई राहत मिल गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबरें हमें मिल रही हैं।
1: जी जी
0: कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं विविध भारती के आपको?
1: जी हमको तो ज्यादा हेलो फरमाइश, और जो आप जो सुनाते हैं, जो मैंने संदेश टू सोल्जर वो वाला, हाँ। फनकार जो सुनाते हैं वो वाला, और अभी जो नया एक जो शुरुआत किए है 1 बजे जो सुनता हूँ वो अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया इन कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी दोस्ती फिल्म।

0: का राही मनवा दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
1: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, सुनते हैं ये गाना।
2: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना कोई,

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश यूनिस साहब, कैसे हैं आप?
0: जी। मैं अच्छा हूँ।
1: मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि पूछे मैं नहीं। आप तो मैं कितने आपके इंटरव्यू सुने, कितने आपके शब्दों में बोले तो मजा आ गया। क्या बात है!
0: मजा आ गया। क्या बात है, कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं आशा बोल रही हूँ बेंगलुरु से, और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। आपके बड़े मतलब सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, और मैं 3 हफ्ते 5 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ आपका। जब सुनती हूँ लोग बात कर रहे, बड़ी जलन होती थी।
0: अरे
1: चलो आज
0: बाप
1: मैं
0: रे,
1: भी बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना।
1: यस। पहले बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके पुराने प्रोग्राम में सबने आपने एक राइटर से बात की थी, तब वो राइटर ने आपसे कहा था, आपसे या किसी और?

0: यूनिस खान से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने देवर से बात करूं।
1: ओहो, क्या
0: वो
1: बात
0: राइटर ने ऐसे बोला था कि मेरे मतलब जहन में है, वैसे
1: जी
0: ही मैं आप भी मेरे जहन में हो।
1: जी
0: आप लोगों से तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि पूछो मत, सारा दिन मैं सुनती रहती हूँ, सारे प्रोग्राम सुनती रहती हूँ,
1: जी
0: लोग मेरे से तंग आ गए कितना बजाओगी करके।
1: अच्छा, विविध भारती का साथ इसी तरह से बना रहा है आपके साथ, है ना?
0: हाँ, मैं बस जिंदगी भर अंत तक सुनती रहूं, जीवन का यही लक्ष्य है बस।
1: क्या बात है जी। तो बताइए, कौन कौन से कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहेंगी जो आपके दिल के करीब रहे
0: मैं
1: हैं?
0: सभी कार्यम, ज्यादातर पिटारा के सारे प्रोग्राम
1: जी
0: वो बहुत अच्छे रहते हैं,
1: जी
0: और हेलो फरमाइश, हेलो सहेली, और सब आप अभी तो एकदम से मैं एक्साइट हो गई हूँ, प्रोग्राम के नाम ही याद नहीं रहे आपसे बात करते हैं।
1: जी
0: हाँ,
1: जी जी
0: सबसे ज्यादा तो आज के फनकार मैं सुबह जरूर सुनती हूँ,
1: जी
0: सुबह 8 बजे से लेके मेरा विविध भारती शुरू हो जाता है न्यूज से लेके, और जब तक हो सके तब, और रात को भी जब भी टाइम मिले तब।
1: अच्छा, क्या
0: हाँ
1: बात है,
0: जी।
1: क्या बात है। तो आज कौन सा गाना चुन रखा है आपने?
0: मैंने राम तेरी गंगा मैली का, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, तुम्हारे पथ पर जो भी आए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए।
1: क्या बात है भाई, इतने सारे बोल भी याद हैं आपको।
0: अरे अरे, मेरे को तो कुछ कुछ गानों के पूरे पूरे बोले आते, पूरा गाना सुना सकती
1: वाह वाह वाह,
0: हूँ।
1: ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो
0: और
1: आप
0: सब
1: कहती है
0: कुछ,
1: ना कि
0: हाँ
1: मैं
0: जी,
1: हमेशा कहता हूँ, क्या बात है।
0: क्या बात है, थैंक यू।
1: जी
0: बचपन
1: शुक्रिया।
0: से आप बिलीव नहीं करो, आई एम 57 नाउ, और मैं कम से कम 5-6 साल से विविध भारती सुन रही हूँ।
1: ये लंबा सफर तय किया आपने विविध
0: हाँ,
1: भारती सुनते हुए।
0: बस सब सब आप लोग पुराने गाने सब, मतलब जो चीजें कहीं नहीं बचती वो विविध भारती पे बचती।
1: क्या बात है जी, शुक्रिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा।
0: मैं आपसे बात करके गदगद हो गई हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया मेरा आपसे बात करके, आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
1: शुक्रिया। हम ये दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फोन लगे और बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बातों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म, और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी। हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। एकदम
0: जी जी बताइए,
1: बढ़िया है भैया।
0: क्या करते हैं आप?
1: हमारा मूल काम खेती बाड़ी का है भैया।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अभी तो फिलहाल गर्मी में आराम करना ज्यादा होता है, और बरसात जैसे लगेगा धान की बुआई करेंगे।
0: और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के इलाके में गर्मियों के मौसम में वो कौन कौन सी चीजें हैं
1: हाँ,
0: जो आपको बहुत लुभाती हैं, जैसे कि आम?
1: आम और अमरूद तो इधर बहुत मिलता है भैया। मतलब आम तो बाहर से ही आते हैं,
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: लेकिन जो अमरूद वगैरह होते हैं वो प्रायः घर में अमरूद है, पपीता हो गया, बेर का पेड़ हो गया, ये मतलब बहुतायत सबके घर में मिल जाते हैं।
0: सही है सही है। अच्छा बताइए कि इस साल क्या गर्मियां बीते कई सालों की तुलना में ज्यादा पड़ी?
1: बिल्कुल ज्यादा पड़ा है भैया, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है, और कई इसके कारण होंगे भैया। सबसे ज्यादा तो यही अपन जो देखते हैं, पर्यावरण में हस्तक्षेप करना, और हम मानव समाज के लिए बेहद जरूरी है कि हम प्रकृति से निकटतम प्रेम करें और वो सामंजस्य बना के रखें।
0: बहुत प्यारी बात कही आपने। अब मुझे ये बताइए कौन से गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म है राजा और रंक के, गीत के बोल है ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये प्यारा सा गीत सुनना है।
0: बहुत ही बढ़िया, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 2867-0288, दूसरा है 400-24662। अंग्रेजी में बता दें 2867-0288 और 4002-4662। मुंबई का एसटीडी कोड 022 है। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से होती है। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल हो गए वो कृपया दो महीने तक हमें फोन न करें ताकि नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। और हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए जब आप बातें करें तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताएं, कुछ दिलचस्प बातें करें, कुछ गाने सुनाएं, तो इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से सजा सकते हैं। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। माना कि बहुत हैं आप हसीन, दिल को ठुकराया करते हैं, लेकिन हम भी दिल वाले दुश्मन को गले लगाया करते हैं। सामिन, हम में से बहुत लोग अपना जलवा बरकरार रखते हैं, और रखना भी चाहिए। इस जलवे को बरकरार रखिए बरखुरदार। फना निजामी कानपुरी फरमाते हैं, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए।

शायरी में जलवा शब्द ज्यादातर हुस्न और इश्क से जुड़ा है, हालांकि शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं और अर्थ भी जुदा होते हैं, लेकिन हुस्न के जलवे तो मशहूर हैं। अमीर मिनाई फरमाते हैं, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, मेरे जख्मों के सब टांके अचानक टूट जाते हैं।

हुस्न का जलवा तो अच्छे अच्छों को घायल कर देता है। खुदा जाने आज उसका कैसा जलवा होगा, हुस्न होगा, नजाकत होगा और जमा होगा। वहीं जलील मानिकपुरी कहते हैं, मेरी आंखों से मेरी यार का जलवा देखो, चश्म मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो। मेरी आंखों से मेरे यार का जलवा देखो, चश्म मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो।

इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। हम न समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। सामिन, इश्क करने वालों के लिए अपनी महबूबा के हुस्न का जलवा बिल्कुल दवा जैसा होता है। तभी तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, आजाद हो चुके थे तूने बंधा बना के मारा।

कभी कभी प्रेमी जितने बेकरार होते हैं अपने महबूब का जलवा देखने के लिए, उतना ही जलवा दिखाने वाला भी बेताब होता है। हाँ, तभी तो जौक साहब फरमाते हैं, इश्क का जौक के नजारा मुफ्त में बदनाम है, इश्क का जौक के नजारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए।

लेकिन एक दिलजला आशिक खुदा से यही कहता है, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, संग दिल तो मिल चुके हैं हजारों, कोई अहले दिल तो दिखाई दे, कोई अहले दिल।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

सभी सुनने वालों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं यादों की बारात फिल्म से। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आरडी बर्मन, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

श्रोताओं, भी आप विविध भारती के प्रसारण सेवा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:33 हो चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं सायंकालीन सभा में। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए कार्यक्रम विवरण द्वारा जानते हैं अभी से लेकर रात्रि 11:10 तक के कार्यक्रम को। कार्यक्रम विवरण द्वारा अभी से थोड़ी देर बाद हम लेकर हाजिर होंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम आप सुनेंगे युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवावाणी। युवाओं को चर्चा में गर्मी में आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, विश्व पर्यावरण दिवस। और साथ ही वार्ता में सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण हम सबके लिए हम सबकी जिम्मेदारी। वार्ताकार हैं वैभवी राज।

शाम 6 बजे सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची केंद्र से। 6:02 पर हम लेकर हाजिर होंगे ग्रामीण को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी चर्चा में। गर्मी के मौसम में मुर्गियों की देखभाल, साथ ही भेंटवार्ता में सुनेंगे नवजात बछड़ों की देखभाल। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी बरवाड़ी लातेहार। वार्ताकार हैं संतोष कुमार।

शाम 6:30 पर कृषकों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी चर्चा में गर्मी के मौसम पशुओं का आवास प्रबंधन भेंटवार्ता में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भेंटवार्ताकार है कुमारी विजेता। आज की नसीहत में जल संरक्षण, आज का मौसम और आज का बाजार भाव इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे। शाम 6:55 पर रांची केंद्र की प्रसारण सेवा सुनेंगे। 7:00 प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आजकल, 7:15 पर एक रंग फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्रोताओं आप सुनेंगे। 7:45 पर उजाले की ओर वार्ता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य वार्ताकार हैं प्रोफेसर सुमित मिश्रा। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे चित्रपट से फिल्म संगीत। रात्रि 8:30 पर सरहदे क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में शामिल होंगे, जहां सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 8:45 पर 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:10 में उर्दू में, 9:15 उर्दू में समाचार और 9:30 विविध भारती की प्रसारण सेवा आप सुनेंगे। रात्रि 10:00 हम अपने स्टूडियो से लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आप आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की समाचार समाचार सुनेंगे। रात्रि 11:00 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 11:10 पर सभा का समापन।

0: वाणी कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, युवा साथियों का स्वागत है, साथ ही इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम युवाणी में हम लेकर हाजिर है, चर्चा का विषय है आज का हमारा, गर्मी में आवश्यक हो तभी घर से बाहर मिले, साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस। तो सही बात है दोस्तों, अगर बहुत ज़रूरी हो तभी हम घर से बाहर निकले। बेवजह घर से बाहर निकलने का मतलब है बेवजह बीमारी लेकर घर पे आना। वैसे ही बहुत तपती गर्म है, ऐसे भी मौसम उतार चढ़ाव में है। कभी अभी देखिए कुछ ही देर पहले बारिश हुई, लेकिन उसके बावजूद बहुत गर्मी है, उमस भरा मौसम है। जाहिर सी बात है जितनी तपिश और जितनी गर्मी हुई है, जब तक ये दो तीन बारिश ना हो जाए, बरसात खूब अच्छे से ना हो जाए, तब तक ये मौसम ऐसे ही होगा। ऐसे में देखिए कीटाणु पनपते हैं। नौतपा के बाद नौतपा इसलिए सही होता है, भले ही हम परेशान होते हैं, नौतपा में कीट प्रबंधक में भी बहुत आराम होता है। पेड़ पौधों में भी, फूल पत्तियों में भी, अनाजों में भी जो कीट फफूंदी लगे हुए होते हैं, वो नौतपा में जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो बरसात का ये मौसम आता है, वो जब तक तीन चार बारिश ना हो जाए, तब तक गर्मी और उमस भरा मौसम होता है। ऐसे में कहीं बाहर का पानी पी लेना, बाहर का कुछ भी खा लेना, हमें लगता है कि ताजे तेल में अगर कोई तला हुआ चीज़ है खाते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन हम गलत फहमी में रहते हैं, वो तेल में कितनी बार बहुत तला जाता है, उसके बाद बार बार उसी तेल को यूज़ किया जाता है। तो बाहर के खाने से बचें। हाँ, कभी मन होता है तो हम बाहर निकल पड़ते हैं, मौसम का आनंद लेते हैं, कुछ चटपटा खाते हैं, लेकिन वैसा कुछ खाएं जो आपकी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा कुछ भी ना खाएं जिससे हमें परेशानी हो। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि अपना बचना है, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। कभी बहुत तेज़ धूप तो कभी तेज़ एकदम चिलचिलाती हुई धूप में घर से बाहर निकलने से पहले दो तीन चीज़ों का ख्याल रखें। चश्मा, कपड़ा वैसे पहने, हल्के कलर का पहने, और कपड़ा ज़्यादातर सूती का ही कपड़ा पहने जिससे पसीना सोख ले। टेरिकॉटन के कपड़े वगैरह से स्किन में भी प्रॉब्लम होती है, खुजली भी होती है, और पसीना आपका सूखता नहीं है। ऐसे में बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, इन्फेक्शन का भी डर होता है। और चप्पल जूते का भी ख्याल करें, पूरे बंद अगर कॉटन टाइप में कपड़े में अगर जूते आपके हैं, आपके पास जूती है, जूते हैं जो कम्फर्टेबल, अगर चप्पल है वही पहने। सिर पे दुपट्टा हो या गमछा जो भी हो वो रखना ना भूलें, हो सके तो अपने साथ छाता रखें। छाता रखने में कोई परेशानी नहीं है। अगर आप अंदर अंदर निकलते हैं कार से या ई रिक्शा से हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाइक वगैरह पे बैठने के पहले अपने सिर को ज़रूर आप ढक लें। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, घर से निकलने के पहले भरपूर पानी पिए, पेट खाली ना रखें, और घर के अंदर आएँ तो लगा आने के साथ ही कूलर में एसी में ना जाएँ। थोड़ी देर अपनी बॉडी को रिलैक्स दें, आराम दें, क्योंकि तापमान जहाँ से आप आते हैं वहाँ थोड़ा बहुत बैलेंस में हो जाए, उसके बाद ही आप अंदर कूलर या एसी में बैठें। रात के शाम के समय हम बाज़ार से आते हैं, बहुत कुछ काम ऐसे लेके, अगर हो सके तो हमारा नहाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ देर बाद तुरंत घर में घुसते नहीं, थोड़ी देर बाद अगर नहा लें तो अच्छा होता है। यही छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो गर्मी का हम आनंद भी लेते हैं, क्योंकि गर्मी बस गर्मी लेके नहीं आती, गर्मी में बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे हमारे लिए मीठे फल आम का, जो आम किसको प्रिय नहीं है, लीची। अभी जो बारिश होगी तो तीन बारिश के बाद लीची खाने का भी आनंद होगा, आम खाने का भी आनंद होगा, क्योंकि उसमें मिठास भरेगा। अभी तो बारिश नहीं हुई है तो फल खाने का भी कुछ कोई ऐसा आनंद नहीं है हम सभी को, लेकिन आम तो फलों का राजा है। अब फलों का राजा तो हमारे हमें गर्मियों में ही मिलता है, और फल का सेवन करना भी चाहिए। मौसम में जो भी फल जो मिलते हैं उसे खाना चाहिए, ख़ास करके बच्चों को आम का सेवन, बच्चों विटामिन ए से भरपूर ये होता है, आँखों की रोशनी के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों को तो भरपूर आम दे, लेकिन आम देने के पहले ख्याल रखें, घर में जब आम लेके आए उसको कम से कम पूरे पानी में रखें, पानी के बाद अगर उसको ठंडा होने दे उसके बाद ही दे, क्योंकि आम बहुत गर्म भी होता है। ऐसे में तुरंत बाज़ार से लाया फल खाना, कोई भी फल बाज़ार से लाते लाते खाना सही नहीं होता है। उसके धोने के बाद कुछ देर पानी में, टब में पानी भर के रख दें हम, उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, या नहीं भी रखेंगे कपड़े में भी लपेट के रखेंगे, या नहीं भी रखेंगे पानी में अगर हमने डुबो दिया तो वो शुद्ध के साथ साथ थोड़ा ताज़ा भी हो जाता है और जो गर्माहट होती है उसके अंदर वो कम भी हो जाती है। तो ऐसे हम अगर बातों का ख्याल रखेंगे दोस्तों तो गर्मी का आनंद भी उठाएंगे। और चलिए ये चिलचिलाती गर्मी के बाद अब बहुत दिन दूर नहीं है कि हम बरसात में कदम रखने वाले हैं, तो चलिए मौसम तो है ही, मौसम के साथ साथ हमें मौसम का लुत्फ़ भी उठाना है और अपना ख्याल भी रखना है। और आइए अब सुनते हैं वार्ता, पर्यावरण संरक्षण में हम सबकी जिम्मेदारी, वार्ताकार हैं वैभवी राज।
1: संरक्षण का उतना ही महत्व है जितना मानव जीवन का। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, इसे सहेज कर रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रकृति द्वारा पद्धत पर्यावरण के विरुद्ध कार्य करने की वजह से पर्यावरण को नुकसान हुआ है, इसलिए हमें एकजुट होकर पर्यावरण के सुधार के लिए प्रयास करने चाहिए। पर्यावरण बिना मानव के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम सब आजकल अपने आसपास देख रहे हैं, अपने बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि आपाधापी ने लोगों के पास हंसने मुस्कुराने की भी समय नहीं छोड़ा है। कारण केवल एक ही है, हमने प्रकृति का शोषण किया है, दोहन नहीं। आप पहाड़ों में घूमने जाते होंगे, पहाड़ों में आपको क्या मिलता है? बहती हुई नदियाँ, कल कल करते पक्षी, पेड़ पौधे, बर्फ से लपटी हुई पहाड़ियों की चोटियाँ, पक्षियों की चहचहाहट, सुंदर वातावरण, इसको देखकर आपका मन स्वतः ही प्रफुल्लित हो जाता है। आप में नई ऊर्जा की संचार होता है। यह तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की सहायता से वातावरण में ऑक्सीजन बनता है। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के सहारे मनुष्य और अन्य प्राणी जीवित हैं। ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहना नामुमकिन है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन गैस भी नहीं होगा। अतः पर्यावरण का संरक्षण करना अत्यंत जरूरी है। अन्य प्राणी जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण इत्यादि पशु वनस्पति खाकर ही जीवित हैं। इसलिए मनुष्य को समझना होगा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना इतना आवश्यक है। मनुष्य स्वार्थी बनकर उन्नति के चक्कर में स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उद्योगीकरण और प्रगति के नशे में वह पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए घर इत्यादि चाहिए। जमीन पाने के लिए वनों को धड़ल्ले से काटा जा रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है, मगर फिर भी वनों का कटाव अत्यधिक बढ़ गया है। वनों को साफ करके किसान कृषि कर रहा है। अगर वन नहीं होंगे तो पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? उनका घर तो वन है। कई प्रकार की कीमती लकड़ी प्राप्त करने के लिए वृक्षों और वनों की कटाई हो रही है। पर्यावरण को इतनी चोट पहुंच रही है कि लगातार मानव जाति को प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होना पड़ रहा है। सभी जलाशयों और नदियों के जल को साफ और संरक्षित रखना भी मनुष्य की जिम्मेदारी है। अगर वन नहीं होंगे तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। कल कारखानों से निकलता हुआ कचरा नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है, इससे नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वन खत्म होंगे तो भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। भूमि कटाव को रोकना और बाढ़ पर अंकुश लगाना का कार्य पर्यावरण करता है। अगर वन नहीं होंगे तो धरती पर वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगा तो सूखा अकाल पड़ेगा, जब पानी नहीं होगा तो पशु पक्षी भी जीवित नहीं रहेंगे। प्रकृति में वायुमंडल एक अहम हिस्सा है। प्रदूषण से वायुमंडल निरंतर प्रदूषित होने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रकृति पर कितना भयावह असर पड़ेगा। पर्यावरण की रक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। जैसे जैसे उद्योगों का विकास हो रहा है, प्रकृति और पर्यावरण अशुद्ध हो गया है। प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बगीचे और वनों को संग्रह करके रखने की जरूरत है। वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जिस प्रकार देश और दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, उनके रहने के लिए जमीन कम पड़ रही है। इससे वनों और पर्यावरण को नष्ट करके घरों का निर्माण किया जा रहा है। लोग उन्नति करने हेतु और सुख सुविधा साधनों को पाने के लिए फैक्ट्रियों डाल रहे हैं। इससे उत्पादन में तेजी आ रही है। हमें इतना स्वार्थी नहीं हो जाना चाहिए। हमें अपनी सुख सुविधा के लिए पर्यावरण को समाप्त नहीं करना चाहिए। लगातार प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है। इससे हमें गंभीरता और जिम्मेदारी से लेना चाहिए। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो मनुष्य को जीने के लिए शुद्ध जल, स्वास्थ्यवर्धक आहार और शुद्ध वायु की ज़रूरत है। अगर हम यह सब कुछ पाना चाहते हैं तो पर्यावरण को सहेज कर रखना होगा। सीमित मात्रा में अपने दैनिक गतिविधियों को करना होगा ताकि प्रदूषण कम हो। प्रदूषण कम होगा तो सभी जीव जंतु और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। आज समस्त दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित और परेशान है। अगर हम सभी अभी सचेत नहीं हुए तब प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण कर लेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम सभी को अपने दायित्व को समझकर प्रकृति के हित में कार्य करने होंगे। जब प्रकृति सुंदर रहेगी तब हमारे चारों ओर हरियाली होगी। अगर प्रकृति सुरक्षित है तब हम और यह पृथ्वी भी सुरक्षित है। इसलिए श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण में हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, जिसका निर्वहन हम सभी को मिलकर करना चाहिए। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे थे वार्ता और अब हम बात करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण में हमारी क्या भूमिका है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बस एक की नहीं होती है। आज विश्व पर्यावरण दिवस, दोस्तों पूरा, दोस्तों आज हम विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें, यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। आज जब बढ़ती गर्मी, कटते पेड़, प्रदूषण और पानी की कमी जैसी समस्याएं सामने हैं, तब हम सबसे की छोटी छोटी कोशिश बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। एक पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना और अपने आसपास सफाई रखना, यही सच्चा पर्यावरण प्रेम है। प्रकृति हमें बिना किसी शिकायत के शुद्ध हवा, पानी और जीवन देती है, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसे सुरक्षित रखें। याद रखिए, धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आप अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करते हैं। बहुत लोग की आदत होती है पानी को बेवजह खर्च करना। नल खोल के घंटों तक अगर बर्तन धुल रहे हैं तो नल को खोले रखे हैं, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि कुछ आपके पास जब कुछ बर्तन धुल जाए उसके बाद आप नल खोल के लगातार दो। ये छोटी छोटी बातें हैं। ब्रश करने की आदत है, ब्रश करने के बाद अपना नल खोल के छोड़ दिए, ये सब जो आदतें हैं ये दिक्कत परेशानियां करती हैं। पेड़ पौधे हैं धरती का शान, इससे भी मुस्कुराए इंसान। आओ मिलकर कसम ये खाएं, हरा भरा अपना कल बनाएं, क्योंकि हरा भरा कल हमारा तभी होगा जब आज हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। अगर एक दिन पेड़ हमसे कह दे कि अब हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, अगर नदियां कह दे कि अब हम पानी नहीं देंगे, तो क्या होगा, जरा सोचिए। इसलिए प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल नहीं, सम्मान भी देना ज़रूरी है। केवल हम उनका इस्तेमाल करते हैं, देने को तो कुछ भी नहीं देते। और अगर नहीं भी देते, अगर हम नहीं पेड़ पौधा भी लगाएं, तो जो लगे हैं उसे भी अगर हम सुरक्षित रखें, तो वो भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है कि कह दे कि, बहुत कम लोग हैं जिनको प्रकृति से प्रेम है और पेड़ पौधे लगाते हैं। कम जगह भी रहे, लेकिन अगर हमारे मन में प्रकृति के प्रति इज्जत है, सम्मान है, थोड़े बहुत जगह में भी अगर 4-5 पेड़ पौधे भी लगाते हैं, गमलों में भी लगाते हैं, तो देखिए आपके घर का वातावरण भी शुद्ध रहेगा और प्रकृति भी खिलखिलाएगी, मुस्कुराएगी। जैसे बढ़ती गर्मी एक संकेत है, आज हर कोई कह रहा है कि गर्मी पहले से ज़्यादा बढ़ रही है, कारण क्या है? ऐसे में पेड़ लगाना सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाले समय की ज़रूरत बन चुका है। पानी की कीमत समझिए। कई लोग नल खुला छोड़ देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहा देते हैं, लेकिन याद रखिए, जल है तो कल है सिर्फ एक नारा नहीं, ये सच्चाई है। छोटे कदम बड़ा बदलाव ज़रूरी है। बाजार जाएं तो कपड़े का बैग लें, पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें, बिजली की बर्बादी कम करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। और श्रोताओं, दोस्तों, युवा साथियों, धरती हमें हर दिन बहुत कुछ देती है, क्या हम उसे थोड़ा सा प्यार और जिम्मेदारी वापस नहीं दे सकते? क्योंकि हवा रहे साफ, नदियां रहे निर्मल, पेड़ हरे हरे भरे, तभी होगा भविष्य उज्जवल हम सभी का। तो पर्यावरण बचाना किसी एक दिन का और एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर दिन, जैसे हम कहते हैं कि मदर्स डे मनाते हैं, अपने फादर्स डे मनाते हैं, एक दिन ख़ास रखते हैं, एक दिन वो ख़ास रखिए कि आज हमें पेड़ पौधे लगाना है। लेकिन आप 365 दिन जो हमारे होते हैं, वो हर दिन प्रकृति के लिए रखिए कि हर दिन देखभाल करनी है। ज़रूरी नहीं कि आपके गार्डन में ही अगर पेड़ पौधे लगे हैं तो आप उसको सुरक्षित रखें, ऐसा नहीं है। आप अगल बगल आस पड़ोस के भी अगर पेड़ पौधे हैं तो उसे नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि प्रकृति से अगर प्रेम आपको वाकई है तो हम हर पेड़ की रक्षा करेंगे, चाहे वो नीम का हो, आम का हो, खाने का पेड़ हो। ऐसा नहीं कि खाने वाले जो हमारे पेड़ पौधे हैं उसी का हम ख्याल करें, क्योंकि हम उसके लिए भी ललायित रहते हैं कि फल वो हमें देगा। लेकिन ऐसे भी बहुत पेड़ पौधे हैं, देखिए कड़ी धूप में भी वो, देखिए प्रकृति की ऐसी सीख है, देन है, आशीर्वाद है, जहाँ हम 2 मिनट धूप में टिक नहीं पाते, वहाँ प्रकृति घने इतने ज़्यादा धूप में भी हरियाली हमें देती है, हमसे बिना कुछ मांगे हमें बहुत कुछ देती है। वो खामोश रहती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको उसका हम साथ दें, लेकिन वही खामोशी तोड़ती है तो प्रकृति का कहर हम सबको ले डूबता है। आप देखते होंगे, कहते हैं हम गर्मी बहुत आ रही है, पहले गर्मी तो पहले में, अब में फ़र्क भी बहुत है, कहाँ मिट्टी दिख रही है, हर जगह तो हम टाइल्स मार्बल के घर बनाए हैं। बनाना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास जगह है, क्योंकि ज़मीन जिस तरह से लोग उतना ले भी नहीं पाते हैं, उसमें वो क्या छोड़े, क्या ही मकान बनाए, फिर भी कोशिश रखे कि कुछ जो जगह है उसे मिट्टी के लिए ज़रूर छोड़े, पानी के लिए सोखता ज़रूर घर में बनवाएं। ये छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल करते हैं तो प्रकृति भी बचेगी और हमसे खुश भी रहेगी। तो आइए चलते चलते सुनते हैं युवा वाणी कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाज़त, और सुनते हैं इस गाने को। इसी के साथ कार्यक्रम युवा वाणी से हम आप सभी श्रोता बंधुओं दोस्तों से लेते हैं इजाज़त। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इस गाने के साथ हमें दीजिए इजाज़त।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में आज समाहरणालय में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति यानी दिशा की बैठक हुई। बैठक में सांसद ने जनवितरण दुकानों में लाभुकों को पूरा अनाज देने, सदर अस्पताल में डिजिटल ब्लड प्रेशर तथा एक्सरे मशीनें उपलब्ध कराने और CHC केंद्रों पर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गढ़वा पुलिस ने सगमा से अगवा LNT कंपनी के कर्मचारी मुरारी तिवारी को अपराधियों के चंगुल से सकुशल मुक्त करा लिया है। SDPO सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि 7.5 लाख की फिरौती मांगने वाले दो अपराधियों को मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरांगी में आज एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों टाटीझरिया के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। रामगढ़ पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत विभिन्न मामलों में फरार 15 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने पिछले दो दिनों के दौरान सभी थानों और OP क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर कुल 19 वारंटों का निष्पादन किया। पाकुड़ जिले में आज तेज आंधी और ओलावृष्टि के साथ हुई तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आंधी के कारण मालपहाड़ी रोड समेत कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा। उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने मलबे को हटाकर आवागमन सुचारू कराया। आपदा में कई कच्चे मकानों की छतें उड़ गई और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे मुख्य प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेती बात।

0: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और ग्रामीण भाइयों, हम आपको ये पहले बता दें कि कल हम लोग मनाएंगे आने वाले कल में विश्व पर्यावरण दिवस। जी हाँ किसान बंधु, और इससे संबंधित आज हम विस्तृत बातें जानकारी साझा करेंगे और विशेष रूप से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे आपके भाई प्रदीप कुमार सिंह जो आज आपके साथ उपस्थित हैं। आपको भी हमारा नमस्कार प्रदीप जी।
1: आपको भी मेरा नमस्कार संतोष भाई, और सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कृषि वानिकी की।
0: जी
1: जैसा कि आप जानते हैं किसान भाई कि यह जो कृषि पद्धति है इसमें एक ही भूमि पर खाद्यान्न फसलों, पशुपालन और पेड़ पौधों को साथ साथ उगाया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ मिट्टी, पानी और हवा की गुणवत्ता में भी सुधार करता है।
0: जी हाँ, और पर्यावरण संरक्षण में इससे अनेकों लाभ हैं, जैसे मृदा संरक्षण और उर्वरता में सुधार की अगर हम बात करें तो पेड़ों की गहरी जड़ें मिट्टी को कस कर रखती हैं, जिससे हवा और पानी द्वारा होने वाला मिट्टी का जो कटाव है वो रुकता है किसान बंधु। और पेड़ों की पत्तियां गिरकर खाद बनती हैं जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है। और जहां तक कार्बन अवशोषण की बात है तो खेत में खड़े पेड़ वायुमंडल से हानिकारक

0: कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ये बातें आप भी जानते हैं, और यह जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए प्राकृतिक समाधान है। किसान भाई
1: पेड़ों की उपस्थिति से वाष्पीकरण कम होता है और वर्षा का पानी जमीन के अंदर अधिक रिसता है, जिससे भू स्तर जो है बड़ा जो भूमि का जो स्तर है भूजल स्तर उसमें सुधार होता है या खेतों की जलधारण क्षमता को भी बढ़ाता है। खेतों में विविध प्रकार के पेड़ पौधे होने से स्थानीय पक्षियों मित्र कीटों और सूक्ष्म जीवों को प्राकृतिक आवास मिलता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ और लचीला बनाता है। कृषि वानिकी के तहत खेत के मेड़ों पर लगाए गए पेड़ वायु और रोधक का काम करते हैं। ये तेज गर्म हवाओं पाले और तूफानी हवाओं से मुख्य फसलों की भी रक्षा करते हैं।
0: जी हाँ किसान बंधु, और हम आपको यह भी बता दें किसान भाई बहन कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष करके कृषि वानिकी का बेहद महत्व हो जाता है, जो बातें हमने की आज आपसे। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर इमारती पौधे लगाते हैं तो कई गुना लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं।
1: तो रही बात जैसे इसका कृषि वानिकी, जैसे ही हम लोग कृषि वानिकी की बात करते हैं किसान भाई, तो इसमें समन्वित सारी चीज़ें आ जाती है।
0: जी
1: तो कहने का मतलब है कि आज जो स्थिति बदल रही है, गर्मी का मौसम तेजी से बढ़ रहा है, तो इस गर्मी से निजात के लिए भी आपको पेड़ पौधे लगाने होंगे, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ बंद करना होगा, उनको संरक्षित करने के जितने भी छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं उसको करना होगा, क्योंकि खेतों पर मेड़, मेड़ से हरियाली और हरियाली से खुशहाली,
0: क्या बात है।
1: तो इसलिए किसान भाई
0: वृक्षारोपण करना भी आप ना भूलें,
1: वृक्षारोपण करना ना भूलें, और आपके पास जो भी जमीन पड़ी हुई है खाली, जिसमें आप खेती नहीं करते हैं, जिसमें खेत करते भी हैं, तो उसके मेड़ों पर पेड़ लगा।
0: जी, और ये तो बातें हो गई ग्रामीण बंधु कृषि वानिकी की, जिससे आप पर्यावरण को हद तक संरक्षित कर सकते हैं। और अब हम ये भी बातें आपसे करते चलें कि जो गाय या भैंस नवजात बछड़ों को जन्म दिए हैं या काड़ा काड़ी भैंस के बच्चे, तो उन्हें किस प्रकार हम सर्वप्रथम देखभाल करें।
1: तो संतोष भाई, ऐसा है कि नवजात जो बछड़े हुए उनको जन्म के बाद 3 महीने तक विशेष प्रबंधन की आवश्यकता होती है। कुछ खास बातें हैं जिस पर ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। मुंह और नाक साफ रखें। जन्म के तुरंत बाद बछड़े के मुंह और नाक से जो बलगम आता है उसको साफ करें ताकि वह ठीक से सांस ले सके।
0: जी।
1: जो माँ जो होती है, जो बच्चे को जो जन्म देती है, वो गाय को अपने बच्चे को चाटने दे उसे, इससे बछड़े के शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है और वह जल्दी खड़ा होना सीखता है। और तौलिए से पोछे, यदि गाय अपने बछड़े को न चाटे तो उसे एक साफ सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ कर उसे
0: सुखा लें।
1: और जो नाभि होता है उसकी देखभाल करें, जो नाल जो होता है जो नाभि का, नाभि को बछड़े के पेट से लगभग 2 इंच की दूरी पर साफ धागे से बांध कर साफ कैंची या ब्लेड से
0: उसे काटते हैं,
1: ताजा ब्लेड हो
0: तभी उपयोग करें,
1: तभी आप उपयोग करें, और उसमें आयोडीन लगाएं।
0: जी,
1: क्योंकि आयोडीन जब आप लगाएंगे तो इसमें जो होने वाला जो संक्रमण है उससे बचाव मिलता
0: टिंचर
1: है।
0: टिंचर आयोडीन,
1: हाँ टिंचर आयोडीन के घोल में उसे आप डुबा भी सकते हैं, और इस प्रक्रिया को आप 12 घंटे के बाद फिर से दोहरा भी सकते हैं,
0: दोबारा कर सकते हैं किसान भाई।
1: और जो पहला दूध की अगर हम बात करेंगे किसान भाई, वह जीवन का अमृत है। जो खीस हम लोग जो बोलते हैं दूध जो है, जन्म के 1 से 2 घंटे के भीतर बछड़े को माँ का पहला पीला जो गाढ़ा दूध, जिसे खीस भी हम लोग कहते हैं, अवश्य पिलाएं। खीस की मात्रा बछड़े के वजन के कुल शरीर भार का लगभग 2 से 3 लीटर होना चाहिए। इस इम्यूनियम सिस्टम को जो मजबूत करता है और पेट भी साफ करता है
0: जी।
1: और दूध जो पिलाने का जो प्रबंधन है किसान भाई, जो दूध की मात्रा

0: पिला दिए,
1: पिला दिए जी।
0: और जहाँ तक आवास की बात है, मौसम की बात है किसान भाई, तो बछड़े को साफ सूखे और हवादार बाड़े में रखें, गीले फर्श पर नमोनिया का खतरा बढ़ जाता है,
1: बढ़ जाता है जी हाँ।
0: इसलिए इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको जो नवजात जो है उनके देखभाल में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और दूसरा बात है कि जन्म से जो बच्चा जब जन्म लेगा तो 10 से 14 दिन बाद पशु चिकित्सक की सलाह लेकर उसको कृमि नाशक दवा पिला दें
1: जी, बिल्कुल।
0: और फिर 6 महीने तक
1: यह दवा आप दोहराएं,
0: यह दवा आप दोहराएं, उससे क्या होगा कि जो पेट में होने वाले जो कीड़े होते हैं वह मर जाते हैं और आपका जो बछड़ा जो है वह स्वस्थ रहता है
1: जी।
0: अगर हम टीकाकरण की बात करें किसान भाई, तो 4 महीने आयु होने पर पशु चिकित्सक से संपर्क कर जो आवश्यक जो टीके जो लगने चाहिए
1: उसको
0: उसे आप जरूर लगवा दें
1: जी हाँ। किसान बंधु, इस प्रकार इन सारी बातों का अमल करके, इन पर ध्यान करके, और हम जो हमारा जो पशुधन है उसे हम स्वस्थ रख सकते हैं और बेहतर मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो बातें हो गई किसान बंधु, नवजात बछड़ों काड़ाकाड़ी की देख रेख किस प्रकार हम करें, और अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा
0: लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा के गाए लोकगीत। आइए अब सुनते हैं भेंटवार्ता, नवजात बछड़ों की देखभाल। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी बरवाडी लातेहार, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई संतोष कुमार।
1: ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे पशुधन की, और पशुधन में हम बातें करेंगे जो नवजात बछड़े होते हैं, बछियाँ होती हैं, मेमने होते हैं, सूकर के बच्चे होते हैं, इन सभी पशुओं के जो छौना छौनी हैं उनको किस तरह से हम देखभाल करें कि बाढ़ बियान अनुकूल रहे, कोई बुरा असर उस पर ना पड़े। और इन तमाम बातों पे जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
2: नमस्कार
1: सर। सबसे पहले तो हमारे ग्रामीण भाइयों को ये बताया जाए कि नवजात बछड़े बछड़ियाँ, मेमने, सूकर के बच्चे जो होते हैं उनकी देखभाल हमारे किसान भाई किस प्रकार करें।
2: पशुपालन का भविष्य जो है उनके बच्चे पर ही निर्भर करता है। बच्चे जितने स्वस्थ होंगे
1: जी
2: तो भविष्य के पशु उतने ही अच्छे होंगे और उनकी उत्पादकता बहुत अच्छी रहेगी। तो इस अगर दिमाग में बात को रख कर करके कि बछड़े कैसे हमारे स्वस्थ रहें, इसके लिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी उनके पास गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये सूकर रखे हुए हैं और वो गर्भावस्था से अगर गुजर रहे हैं तो उनको 2 माह पूर्व से ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 2 माह पूर्व तैयारी शुरू करने का मतलब ये हुआ कि उनको अलग से हम अनाज खिलाना शुरू कर दें। ये अनाज गायों में कितना खिलाएं, भैंसों को कितना दें, बकरियों को कितना दें, भेड़ों को कितना दें, सुकरी को कितना दें, ये किसान भाइयों के लिए आवश्यक हो जाता है। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि अगर उनके पास अंदाज है कि ये गाय या भैंस हमको बच्चा देने के बाद 10 किलो दूध देगी या 5 किलो दूध देगी, अगर ये अंदाज वो कर लेते हैं तो इसके हिसाब से वो स्वयं जोड़ सकते हैं कि 1 किलो दूध उत्पादन के लिए गायों को प्रति 1 किलो दूध के लिए 400 ग्राम आना चाहिए और भैंस को प्रति 1 किलो दूध के लिए 500 ग्राम आना चाहिए।
1: अच्छा।
2: और इसके अतिरिक्त 1.5 से 2 किलो उसके शरीर के लिए भी चाहिए, यानी कि लगभग 5 से 6 किलो अगर 10 किलो दूध देने वाली गाय को अगर अनाज को खिलाते हैं तो वो गाय आपको 10 किलो दूध देगी या भैंस भी आपको दूध देगी। तो उनको इतना अनाज 3 किलो सुबह 3 किलो शाम प्लस और 6 किलो भूसा अगर खिलाते हैं तो वो गाय आपको 2 महीने के बाद जब बच्चा देगी तो वो पूरी तरह स्वस्थ होगी।
1: अच्छा।
2: और स्वस्थ पशु के थन का विकास पूरा पूरा होता है।
1: अच्छा।
2: जब पूरा पूरा थन का विकास होगा तो आपको वो पूरा पूरा दूध देगी। साथ में जो खनिज लवण होते हैं, मिनरल मिक्स अंग्रेजी में कहते हैं, वो बाजार में पाउडर उपलब्ध है, कुछ जगह अस्पतालों में भी उपलब्ध है। तो आप जहाँ कहीं से भी हो, बाजार से हो या पशु अस्पताल से हो, आप ले करके 50 ग्राम मिनरल गाय एवं भैंस को प्रतिदिन दें। और अब बात आती है कि बकरियों और भेड़ों को, तो बकरियों और भेड़ों को चूंकि इनकी गर्भावस्था कम दिन की होती है, 5 महीने की होती है, तो इन्हें भी 2 महीने पहले से 150-200 ग्राम अनाज कुछ भी आप उसको दीजिए। और मिनरल मिक्सर जो है 1 चम्मच से 2 चम्मच मतलब 5 से 10 ग्राम प्रति पशु रोज देना चाहिए।
1: अच्छा।
2: सुकरियों को करीब उनको 1.5 से 2 किलो अनाज की ज़रूरत है और उन्हें भी मिनरल मिक्सर 20 से 25 ग्राम अगर देते हैं तो उनके बछड़े और सुकर दोनों ही स्वस्थ होंगे। अब इसके बाद बात आती है

0: है कि इन पशुओं जो गर्भवती पशु हमारे हैं उनको 2 माह पूर्व से ही हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो भीड़ में न रहें ताकि दूसरे पशु उनको चोट ना पहुंचाएंगे। चोट पहुंचाने पर उनका गर्भपात हो सकता है।
1: अच्छा
0: तो ऐसे में पशुपालक भाई, ये ऐसे तो गायें या पशु स्वयं ही जो गर्भावस्था से गुजर रही होती हैं, उन्हें देखा गया है कि या तो वो पशु सबसे आगे होते हैं या झुंड में सबसे पीछे होते हैं। इस तरह से वो अपना बचाव खुद करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी नासमझी से भी नुकसान होता है। तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि उन्हें भीड़ से अलग कर रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो आराम कर सकें और उनका समय पूर्व गर्भपात ना हो।
1: अच्छा
0: इसके बाद पशुपालक भाइयों को चाहिए कि बछड़े जो हमारे पैदा होने वाले हैं, या छौने छौनी पैदा होने वाले हैं, या शुक्र के बच्चे पैदा होने वाले हैं, तो उनको कैसे बचाएं कृमि से। पेट में जो कीड़े होते हैं उसको बचाने के लिए हमें गर्भवती पशु को ही 15 दिन पूर्व पशु चिकित्सा सलाह से उनको कृमि नाशक दवा दे देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो उसके पेट में बच्चे पल रहे हैं उनमें भी जो कृमि होगा वो बाहर आ जाएगा। इस तरह
1: अच्छा
0: से जन्म से पूर्व ही उनके पेट में कृमि नहीं होने पर वो बच्चे ज़्यादा स्वस्थ होंगे। इसके बाद पशुपालक भाइयों को चाहिए कि जो पशु गर्भावस्था में हैं उनको जरूर निश्चित रूप से, जब पाल दिलाए हैं आप प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से, दोनों स्थिति में उसका आपको समय नोट करके रखना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि आप देख लीजिए कि गाय अगर है तो 280 दिन पूरा हो गया है तो आप पूरी तरह से निगरानी करेंगे, क्योंकि गायों में 280 प्लस माइनस 5 में 275 से 285 दिन के बाद बीच में बच्चा देती है। इसी तरह से भैंस लगभग 310 दिन पर बच्चा देती है, बकरी और भेड़ 148 से 151 दिन पर बच्चा देती है, सुकरी 114 दिन पर बच्चे देती है। तो अगर आप ये समय जोड़ कर रखे हुए हैं तो आप इस समय से 3 से 4 दिन पूर्व आप उसका निगरानी बढ़ा दें और देखें कि अगर ये पशु बच्चा देने की स्थिति में है तो उसके क्या लक्षण आएंगे। तो सबसे पहले पशुपालक भाइयों को ये देखना चाहिए कि कोई भी गर्भवती पशु अगर पूंछ खड़ा कर दे रहा है
1: अच्छा
0: और उसके थन में लग रहा है कि अब दूध निकल जाएगा, तो आप ये मान के चलें कि अब ये पशु 24 घंटे के अंदर हमको बच्चा देगी, तो उसे हम घर में ही रखें और उसे के पास भीड़ ना लगाएं। क्योंकि जब हम पशु के पास भीड़ लगाते हैं तो गर्भवती पशु बच्चा देने में शर्माती है और नतीजा कि वो बच्चा नहीं दे पाती है। दूसरा,
1: अच्छा
0: वहाँ पर कुत्ते या दूसरे जानवरों को नहीं रखना चाहिए, उससे भी गर्भवती पशु हिंसक पशुओं के डर से भी बच्चे नहीं देती है। तो इनसे पशुपालकों को चाहिए कि भीड़ और हिंसक पशु को उसके नज़दीक न जाने दें,
1: ये
0: उन्हें
1: बहुत बड़ी
0: सुरक्षित
1: बात सामने आई।
0: सुरक्षित महसूस कराएं।
1: अच्छा
0: साथ में पशुपालक भाई ये बात का ध्यान रखें कि हमारे देहात में कहावत भी है और घाघ कवि ने बहुत हजारों साल पहले ये बात बोली है कि अगर सावन में गधी अगर बच्चा देती है और गाय अगर भादों में बच्चा देती है और भैंस माघ में बच्चा देती है तो उसके बछड़े के बचने की संभावना या गाय के बचने की संभावना कम होती है। तो ऐसे में पशुपालक भाई इस तरह से अपने गाय का प्लानिंग करें कि वो गाय भादों में बच्चा न दे और भैंस माघ महीने में बच्चा न दे, क्योंकि बच्चा बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये मौसम जो है बछड़ों के लिए प्रतिकूल होता है। तो ये काम पहले से लोगों को करना चाहिए। इसके बाद अगर आप देख लिए कि गाय या भैंस बच्चा देने लगी तो आपने अब बच्चा देगी, तो बच्चा देने पर क्या करना चाहिए। बच्चा देने पर ये आप ध्यान रखें कि गाय 2 से 8 घंटे में, या भैंस झाड़ गिराती है तो आप 2 से 8 घंटे तक उसका इंतजार करें।
1: अच्छा
0: तत्पश्चात अगर न गिराती है तो पशुपालक भाइयों को चाहिए घबराना नहीं, उन्हें चाहिए कि उसको 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम खाने वाला सोडा, 100 ग्राम सरसों तेल में पका करके और 250 ग्राम गुड़ मिला करके उसको 15 से 16 दिन दें ताकि उसके बैदानी की सफाई पूरी पूरी हो सके।
1: अच्छा
0: और पशु चिकित्सक सलाह से कोई भी एक एंटीबायोटिक 3 दिन चलवा देंगे तो नहीं भी जहर गिराने पर उनको निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गाय की तरफ हुआ। दूसरी तरफ आता है कि बछड़ा जो बाहर आया है उसे क्या करें। जब गाय या भैंस या बकरी बच्चा दे रही है तो आप ये जरूर ध्यान दें कि जो बच्चा होता है वो पानी की थैली में होता है। पानी की थैली फूटने के बाद उसका ऑक्सीजन सप्लाई जो नाभि के द्वारा बच्चे को मिलता रहता है वो खत्म हो जाता है। तो 2 घंटे के अंदर अगर गर्भवती गाय, भैंस, बकरी, शुक्र अगर बच्चा नहीं दे रहे हैं तो आप तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श
1: संपर्क
0: करें कि
1: करें।
0: क्या
1: जी
0: परेशानी है,
1: जी
0: और उस परेशानी को 2 घंटे के अंदर दूर करेंगे तो उससे 2 फायदा होगा। एक तो बछड़े के बचने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और दूसरा कि गाय या भैंस या बकरी कम थकेगी तो वो जल्दी से जल्दी भोजन पर लौट जाएगी।
1: वाह
0: तो पशुपालक भाई, जब बछड़ा बाहर आ जाता है तो अब क्या करें, बछड़ा बाहर आ गया।

0: तो आप यस बकरी के मेमने आ गए हैं बाहर में, छौने आ गए हैं शुक्री के, तो इनको अब आपको करना चाहिए क्या कि नाभि जो उनका है वो लंबा है, उसे 2 इंच शरीर से छोड़ करके उसे साफ धागे से बांध लें और साफ ब्लेड से उसको काट दें।
1: अच्छा
0: इसके बाद अगर दवा आपको बीटाडीन उपलब्ध है तो बीटाडीन लगाएं, नहीं है तो न्यूनतम कम से कम हल्दी और सरसों तेल उस पर लगा दें,
1: अच्छा
0: इससे एक एंटीसेप्टिक कवर चढ़ जाएगा तो वो पकेगा नहीं। नहीं तो आए दिन हम लोग देखते हैं अस्पताल में कि नाभि पका हुआ है, फिर उसे ऑपरेशन करना पड़ता है और उसे अनावश्यक रूप से पशुपालकों को
1: कठिनाई।
0: खर्च करना पड़ता है, उससे बच सकते हैं। दूसरी बात ये कि गाय और भैंस जब बच्चे देते हैं तो वो अपने से जीभ से चाट कर करके उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। उसमें ये जरूर पशुपालक भाई ध्यान रखें कि पशु का जीभ जो है काफ़ी खुरदरा होता है, गाय का और भैंस का, वो क्या करते हैं कि नाभि को भी नोच देते हैं या चाटने के क्रम में कवर जाता है, तो उसे
1: अच्छा
0: इन्फेक्शन होना निश्चित होता है। तो बच्चा देते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो नाभि ना चाटें जैसे, या
1: अच्छा
0: बाहर उसको ना नोचे जैसे। तीसरी बात ये कि जब बछड़ा बाहर आ गया है तो उसे अब दूध की ज़रूरत है, क्योंकि जो देहात में अंग्रेजी में हम लोग क्लस्ट्रम बोलते हैं, देहात में फेनुस कहते हैं, वो उसका जीवन का वरदान है, भगवान के द्वारा गया एक अमृत है जिसे उसको 4 घंटे के अंदर ही पिलाना है।
1: अच्छा
0: अगर 4 घंटे के अंदर नहीं पिलाते हैं तो आप अपने बछड़े बछड़ियों बकरियों के बच्चे जो हैं शुक्री के जो छौने हैं उनको आप निमोनिया से और डायरिया से नहीं बचा सकते हैं। तो इनको 4 घंटे के अंदर झार गाय गिराए या ना गिराए, आप इसको 4 घंटे के अंदर
1: पिला
0: दूध
1: दीजिए।
0: फेनुस जरूर पिलाइए। अब बात आती है कितना फेनुस पिलाएं, तो ये बछड़े का वजन आप करिए और उसको देखिए, अगर आपका बछड़ा 20 किलो का है तो उसे लगभग 2 किलो यानी 1 किलो सुबह 1 किलो शाम, इसी तरह से 30 किलो का अगर बछड़ा है तो 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम वो फेनुस पिलाएं।
1: अच्छा
0: और बकरियों में तो इतना दूध होता नहीं है, जो भी दूध होता है उसे आप पिलाएं, शुक्री के ही बच्चे में है कि जितना वो दूध पी सकता है उसको पिलाएं। इसके पिलाने से 4 घंटे के अंदर आपको ये समस्या जो हमने बताया पूर्व में कि पतला दस्त और निमोनिया, ये दोनों से वो नहीं मरेंगे। तत्पश्चात आता है कि ये जो हमारे गाय के बच्चे हैं भैंस के बच्चे हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर कृमि की दवा निश्चित रूप से
1: पिलाना चाहिए,
0: प्रथम खुराक 1 सप्ताह के अंदर दे देना
1: दे
0: चाहिए।
1: देना
0: इससे क्या
1: चाहिए।
0: होता है कि वो पूरे जो 1 हाथ 1.5 हाथ का आप देखते हैं होंगे फीता कृमि रहती है, एस्केरियोसिस हम लोग बोलते हैं, वो नहीं होगा। और दूसरी खुराक पुनः 20 दिन पर दें, तीसरी खुराक भी 20 दिन पर दें, इस तरह से आपका बछड़े 2 महीने के हो जाएंगे और 2 महीने के बाद प्रत्येक 3 महीने पर आप उसको कृमिनाशक दवा दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप शुक्र के बच्चे को रखे हुए हैं तो आप उसको 3रा दिन और 14वां दिन, चूंकि उसमें आयरन की कमी होती है तो उनको निश्चित रूप से आयरन का इंजेक्शन 3रा दिन और 14वां दिन अगर लगवा देते हैं तो शुक्र के बच्चे में मृत्यु काफ़ी कम हो जाती है।
1: बछड़े में
0: शुक्र के जो बच्चे हैं छौना
1: उसमें
0: छौनी कहते हैं
1: जी उसमें
0: उनमें पिगलेट एनीमिया लोहे की कमी से उनमें खून की कमी हो जाती है, तो इस एनीमिया को रोकने के लिए आप आयरन का इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध है फेरिटास नाम का, आप उसको
1: दे
0: 1 ml
1: सकते
0: इंजेक्शन उसको दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारे गाय के बछड़े आते हैं बाहर में, वो चूंकि अभी नस्ल सुधार का कार्यक्रम चल रहा है, आप जितने अच्छे नस्ल की सांड से पाल दिलवाते हैं या सीमेन का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे दूध देने वाली गायों की चमड़ी पतली होती है तो उनके बच्चे की भी चमड़ी पतली होती है, तो उन पर वायु परजीवी जो आपके गांव देहात में चमोकन अठैल उफरा कहते हैं, इससे उसको बचाना जरूरी है, क्योंकि ये उसे खून चूस लेंगे तो वो पूरी मजबूती से वो बड़े नहीं हो सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए मैं पशुपालकों को ये सलाह दूंगा कि अपने पशु चिकित्सक से मिल करके या तो दवा लगाने की आ रही है उसे लगाएं 10 दिन 12 दिन पर, दूसरी उपाय है कि मुंह से दवा खिलाने की भी आ रही है, वो आइवरमेक्टिन का टैबलेट आता है तो उसके वजन के हिसाब से
1: उसे खिलाएं।
0: कितनी टैबलेट की ज़रूरत है ये पशु आपको बताएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि उसका वजन कितना है तो उसके ऊपर पीठ के ऊपर भी दवाई डाल सकते हैं, वो 1 ml दवा 10 किलो वजन पर पीठ पर डाली जाती है। तीसरा है आप सुई दे सकते हैं कि वजन कितना है तो उसके हिसाब से आप 1 ml पर 50 kg के हिसाब से 50 किलो वजन पर 1 ml चमड़ी में सुई दी जाती है। तो ये आप कोई भी चीज़ें जो हैं अपने पशुओं से सलाह कर करके उसको दें ताकि वायु परजीवी का उस पर असर नहीं हो।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता नवजात बछड़ों की देखभाल। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर प्रमोद कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी।

0: अधिकारी बरवाड़ी लातेहार।
1: और किसान भाई बहन, अब चूंकि हमारा समय भी खेती बाड़ी से विदा लेने का हो चला है, इसलिए कार्यक्रम में जानकारी परक बातें आज बस यहीं तक दीजिए। अब अपने भाई संतोष कुमार
0: और प्रदीप कुमार सिंह को इजाज़त।
1: नमस्कार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे, ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों को संबोधित हमारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, हमेशा की तरह आज आपके साथ है आपके भाई प्रदीप कुमार सिंह। आपको भी हमारा नमस्कार।
2: आपको भी हमारा नमस्कार संतोष भाई, और सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार।
1: जी हाँ किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज सर्वप्रथम बातें होंगी मृदा के 16 पोषक तत्वों की, जिससे हमारी मृदा स्वस्थ रहती है। इसमें एक भी पोषक तत्व की कमी होती है तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है।
2: किसान भाई, जैसा कि पौधों के समुचित विकास और अच्छी उपज के लिए 16 आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं, इन्हें मुख्य रूप से हम लोग 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व। और इनके महत्व के बारे में भी आप जान लें किसान भाई, कि जो पोषक तत्व हैं उनकी उपयोगिता क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। किसान भाई, यह पौधे के हरे भाग, पत्तियों और शाखाओं के विकास के लिए जरूरी है। यह प्रोटीन और क्लोरोफिल का मुख्य घटक है।
1: जी हाँ किसान भाइयों,
2: उसी तरह से फास्फोरस, यह जड़ों के मजबूत विकास, फूलों, फलों और बीजों के निर्माण में मदद करता है। पोटेशियम, यह पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तनों को मजबूत करता है और फलों की गुणवत्ता में सुधार लाता है।
1: जी हाँ किसान भाइयों, ये बातें हुई एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की, जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं। और द्वितीयक पोषक तत्व जो आते हैं उनमें हैं कैल्शियम, जो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है और जड़ों एवं नई पत्तियों के विकास में ये सहायक है। फिर है मैग्नीशियम, यह क्लोरोफिल का मुख्य भाग है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। फिर है सल्फर, यानी तेल वाली फसल में तेल की मात्रा को यह बढ़ाता है, और प्रोटीन, एंजाइम तथा विटामिन बनाने में यह मदद करता है। किसान भाई बहन, इस प्रकार ये द्वितीयक हुए। और सूक्ष्म पोषक तत्व की भी
2: अगर हम बात करें तो इनकी जो है उसमें है आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, बोरान, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कई हैं पोषक तत्व। तो हम सबसे पहले आयरन की बात करें किसान भाई, यह जो है क्लोरोफिल बनाने और एंजाइमों को सक्रिय करने में सहायक होता है। अगर हम जिंक की बात करें किसान भाई, तो हार्मोन्स के निर्माण और पौधे की लंबाई बढ़ाने में यह सहायक होता है। मैंगनीज, प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन के चयापचय में मदद करता है। कॉपर, यह पौधों में श्वसन प्रक्रिया और प्रजनन में सहायक है। बोरान, यह पराग कणों के अंकुरण और कोशिका विभाजन के लिए जरूरी है।
1: जी हाँ किसान बंधु, और

0: मोलिब्डेनम की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये मोलिब्डेनम आपको मदद करने में सक्षम है। और क्लोरीन की अगर बात की जाए तो पौधों में पानी के संतुलन और उसके जो दबाव हैं उसमें नियंत्रण करता है ये। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन मूलभूत तत्व हैं जो पौधों को हवा और पानी से प्राकृतिक रूप से इन्हें प्राप्त होते हैं, और मृदा में इन तत्वों का संतुलित मात्रा में होना सर्वोत्तम उपज की कुंजी है। किसान भाई बहन, इसमें से एक का भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
1: हाँ, उससे जो है वो आपको असर उस पर दिख जाएगा, आपको पड़ेगा
0: जी,
1: भी।
0: इसीलिए तो हम लोग मृदा का
1: इसलिए
0: परीक्षण
1: चूंकि
0: करवाते हैं।
1: हाँ, पर इसीलिए हम लोग बार बार किसान भाई को सलाह भी देते हैं
0: जी
1: कि आप कौन भूमि किस फसल के लिए उपयुक्त है, आप मृदा की जांच कराएं, इसमें कौन कौन सी कमी है, इसकी कमी को दूर करें, तभी जा करके आप बेहतर उत्पादन ले सकेंगे।
0: हाँ, तो इसलिए किसान भाई बहन ये आवश्यक है कि हम बिना मृदा परीक्षण के हम जो उर्वरक जो खेतों में डालते हैं वो अच्छी बात नहीं है किसान बंधु। हमें मृदा परीक्षण के उपरांत वैज्ञानिकों के जो मशवरे हमें मिलते हैं कि आप ये उपयोग में लाइए, इसका उपयोग करिए, उसी अनुपात में उसी अनुसार आप खेतों में उर्वरक का प्रयोग करें और अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करें।
1: क्योंकि जब तक से मिट्टी जांच नहीं होगा, तब तक मृदा में कौन सी कमी है इसका पता नहीं चल
0: नहीं चल
1: पाएगा।
0: पाएगा किसान भाई बहन।
1: और जब पता चलेगा कि कौन सी कमी है और उसका अगर आप उपाय करेंगे, तभी आप बेहतर उत्पादन लेने में सफल होंगे।
0: जी हाँ किसान बंधु, ये हुई बातें मृदा के 16 पोषक तत्वों की और उसकी पूर्ति की। और कार्यक्रम में अब हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: और अंतराल के बाद पुनः हाजिर हुए।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अरे रे रे रे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: इस संदेश के बाद पुनः आपका किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है। आइए अब सुनते हैं वार्ता। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वार्ताकार हैं कुमारी विजेता।
7: योजना PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें अन्य कार्यक्रम ATBP और हर खेत को पानी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे दो महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित बृहद योजना है। यह योजना कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश के संसाधनों को बेहतर उपभोग सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई प्रणाली में

निवेश आकर्षित करना, देश की खेती योग्य भूमि को विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, जल बचत के तकनीक और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद पानी से सफल उत्पादकता को बढ़ाना है। इस योजना में जल के निर्माण और पूर्ण संक्रमण में लगे मंत्रालयों, कार्यालयों, संगठन, अनुसंसाधनों और वित्तीय संस्थानों का एक मंच पर लाने का भी आह्वान किया गया है, ताकि पूरे देश जल चक्र के बारे में एक संपूर्ण और समग्र दृष्टिकोण पर विचार किया जा सके। कृषि में जल का प्रमुख भूमिका है। भारत में पानी की खपत और लगभग 80% उपयोग कृषि के सिंचाई में के लिए लिया जाता है। भारतीय किसान अभी भी अपनी भूमि की सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर हैं, जो उन्हें फसल की विफलता और अन्य जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015 में प्रधानमंत्री कृषि योजना PMKSY लागू की। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यापक समाधान प्रदान करता है। यह योजना में खेत एक तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई की तहत खेती योग्य भूमि का विस्तार करना भी है। इसके अलावा खेत में पानी का उपयोग की दक्षता में सुधार करना और अस्थायी जल संरक्षण संसाधनों को पेश करना भी शामिल है। पानी की बचत भी इस योजना का एक प्रमुख पहलू है। इसके तहत सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, जिसमें टपक ड्रिप सिंचाई विधि एवं फव्वारा स्प्रिंकलर सिंचाई विधि को भी शामिल किया गया है। सूक्ष्म सिंचाई एक उन्नत सिंचाई प्रणाली है, जिसके द्वारा पौधों के जड़ क्षेत्र में विशेष रूप से निर्मित प्लास्टिक के पाइपों द्वारा कम समय में अंतराल पर पानी दिया जाता है। इसमें पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 60% कम पानी की खपत होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति, स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति एवं रेन गन सिंचाई पद्धति का उपयोग किया जाता है। हर खेत को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को हर खेत को पानी, सिंचाई की कवरेज का विस्तार करने और सतोत्र निर्माण वितरण प्रबंधन क्षेत्र में अनुपयोग और विस्तार गतिविधियों पर अंतिम समाधान के साथ एक केंद्रित तरीके से जल का उपयोग दक्षता, प्रति बूंद अधिक फसल में सुधार लाने के दृष्टिकोण से तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का टैगलाइन प्रति बूंद अधिक फसल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY को 3 मंत्रालयों, कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण विकास मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहला, कृषि मंत्रालय सूक्ष्म सिंचाई संरचनों का निर्माण करता है और नमी संरक्षण को बढ़ावा देता है। जल संसाधन मंत्रालय नहरों, फील्ड चैनल और जल वितरण प्रणालियों का निर्माण करता है। तीसरा, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि तालाब, चेक डैम और अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश बढ़ाना, सिंचाई की तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, हर खेत को पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेतों में पानी का उपयोग की दक्षता के में सुधार करना, सिंचाई और अन्य जल बचत तकनीकियों की सटीकता को
को अपनाना एवं बढ़ाना। प्रधानमंत्री कृषि योजना के कार्यक्रम घटक इस प्रकार हैं: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम, वाटर शेड विकास, हर खेत को पानी इसमें शामिल हैं। लघु सिंचाई के माध्यम से नए जल स्रोतों का सृजन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण, कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन और वितरण प्रणाली में सुधार। यह कई क्षेत्रों में सिंचाई कवरेज बढ़ाने में सफल रहा है। इसने कृषि में जल उपभोग दक्षता में सुधार करने में मदद की है। प्रति बूंद अधिक फसल, इसका कार्यान्वयन कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह खेतों में सटीक जल अनुपयोग उपकरणों के उपयोग से प्रोत्साहित करता है। यह ड्रिप सिंचाई और अन्य जल बचत तकनीकों के उपयोग से बढ़ावा देने में सफल रही है। इससे कृषि में जल उपभोग दक्षता में सुधार लाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन में शामिल समितियां। पहला, राष्ट्रीय संचालन समिति। यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों का केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी और देखरेख करती है। दूसरा, राष्ट्रीय कर्मकारी समिति। यह नीति उपयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित किया जाता है। यह कार्यक्रम कार्यान्वयन, संसाधन आवंटन, निगरानी और प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रशासनिक मुद्दों का समाधान आदि का देखरेख करता है। तीसरा, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति। राज्य स्तर पर यह योजना संचालन करने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परियोजना को मंजूरी देने तथा योजना की प्रगति की निगरानी करने का अधिकार होता है। चौथा, जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति। जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन और अंतर विभागीय समन्वय की देखरेख की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसान हितैषी पहल। इस योजना के तहत भारतीय किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई किसान हितैषी पहल शुरू की गई है। इनमें से कुछ पहल इस प्रकार हैं: पहला, सूक्ष्म सिंचाई, PMKSY ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के बढ़ावा देता है। यह प्रणालियाँ जल संरक्षण, फसल की पैदावार में सुधार और इन पर लागत को कम करने में मदद करती है। दूसरा, प्रति बूंद अधिक फसल कृषि में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह किसानों को न्यूनतम जल संसाधनों के साथ फसल उत्पादन को अधिकतम करने के लिए जल बचत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा, वाटर शेड विकास। वाटर शेड विकास गतिविधियों का उद्देश्य मिट्टी और जल संरक्षण में सुधार लाना है, जिससे फसल उत्पादन बेहतर होगा और मिट्टी का कटाव कम होगा। चौथा, जैविक खेती को बढ़ावा देना। यह जैविक खेती के तरीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। यह जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण का समर्थन करता है और किसानों को रसायन मुक्त खेती के तरीकों को अपनाने में मदद करता है। विस्तार सेवाएं। इस योजना में किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों एवं फसल प्रबंधन और नई कृषि तकनीकों का बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करना शामिल है। छठा, फसल बीमा। इसमें प्राकृतिक कीटों या बीमारियों के कारण फसल नुकसान में किसानों की सुरक्षा प्रदान करना है।
सातवां बाजार संपर्क। यह योजना किसानों के लिए बाजार संपर्क की सुविधा प्रदान करती है, जिससे उन्हें बाजारों से जुड़ने और अपनी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त कर

0: में मदद मिलती है। आठवां, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। यह मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्ड जारी करता है कि जो किसानों को उनकी मिट्टी का स्वास्थ्य, पोषक तत्वों का आवश्यकताओं और उचित उर्वरक के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नौवां, कृषि मशीनीकरण। यह योजना कृषि मशीनीकरण और उपकरणों के खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करके कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देती है। दसवां, किसानों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। यह किसानों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को निवेश करता है, जिससे उन्हें आधुनिक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में सक्षम बनाया जा सके। 11वां, फसलों का विविधीकरण। यह कार्यक्रम फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिससे फसल विफलता का जोखिम कम हो जाता है और किसानों को आर्थिक स्थिरता बढ़ जाती है। 12वां, फसल उपरांत नुकसान में कमी। इसके अंतर्गत की गई पहलों का उद्देश्य भंडारण और परिवहन सुविधाओं को सुधार करके फसल उपरांत नुकसान में कमी लाना है, तथा यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले। अतः अंत में यह कहा जा सकता है कि इस योजना के न्यूनतम जल पूर्ति सुनिश्चित करके कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। साथ ही इस योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए बंजर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने का सपना साकार करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता। घड़ी इशारा कर रही है, समय समाप्त होने को है। तो चलते चलते मौसम का हाल। किसान भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज केरल में आधिकारिक तौर पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल मानसून सामान्य तारीख से 4 दिन देरी से पहुंचा है, लेकिन केरल में झमाझम बारिश के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। किसान भाई, अगर हम झारखंड के परिवेश में बात करें तो दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, साहेबगंज और सरायकेला खरसावां जिलों के कुछ भागों में अगले से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ, वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवा, जिसकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। किसान भाई, मौसम की अगर हम बात करें किसान भाई, तो आज स्थानीय शहर डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 55%, जबकि शाम की आर्द्रता 84% दर्ज की गई। वर्षापात 10.8 मिलीमीटर।
2: जी हाँ किसान भाइयों, और इसी जानकारी के साथ अब अपने भाई संतोष कुमार
1: और प्रदीप कुमार सिंह को दे इजाजत।
2: नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस झामुमो और राजद ने तेज की रणनीतिक बैठकें। 6 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची दौरा प्रस्तावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की श्रम एवं नियोजन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के दिए निर्देश। पलामू के राजहरा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। अपलाइन पर परिचालन पूरी तरह ठप, कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग बदले। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून बंगाल की खाड़ी पहुंचा, 15 जून तक झारखंड में दस्तक देने की उम्मीद। पाकुड़ में आंधी बारिश से भारी तबाही। और 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। स्वर्ण समेत 5 पदक जीतकर बढ़ाया राज्य का मान। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति को लेकर इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दलों कांग्रेस, झामुमो और राजद ने अपनी सांगठनिक बैठकें तेज कर दी हैं। रांची के पुराने विधानसभा सभागार में आज संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बैठक में देरी से आने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई और अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों और गठबंधन की रणनीति को लेकर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह गंभीर है।
5: हमारा हाईकमांड बात कर रहे हैं, आरजेडी और लेफ्ट से बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हमारा हाईकमांड को बताएंगे। अभी तक प्रायोरिटी नहीं है, अभी तक वो ऐसा अश्योरेंस नहीं आया। हमारा अश्योरेंस ये है एक सीट में हम लड़ेंगे, सो हम वेट कर रहे हैं।
4: इस बीच झामुमो नेता और मंत्री सुदिव्य कुमार ने गठबंधन के भीतर किसी भी तरह के मतभेद से इनकार करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव के नामांकन में अभी काफी समय है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल पूरी तरह एकजुट हैं और सही समय पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे।
6: सारे राजनीतिक दल सारी गोटियों पर, संभावनाओं पर, सारे मूल्यांकनों को करके यह तय करते हैं कि किसको कैंडिडेट देना चाहिए, किसको लड़ाया जाना चाहिए और उसका समय उनको दिया जाना चाहिए। 8 तारीख में भी समय बाकी है, तमाम चीजें होंगी, ससमय होंगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन झारखंड की दोनों ही सीटें लेकर जाए।
4: इधर रांची स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य भर में संगठन को मजबूत करने के लिए जिलावार दौरे की रणनीति तैयार की गई है।
7: पूरे राज्य का हम लोग का दौरा चल रहा है अगले महीना से। अध्यक्ष जी के माध्यम से पार्टी का राय मशवरा हुआ, उन्होंने तीनों विधायक को भी डायरेक्शन दिया। लोग अब पूरा राज्य में भ्रमण कैसे करें, अपने लोगों को, संगठन को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाएं, उसके विषय में डायरेक्शन दिया।
4: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगामी 6 जून के रांची दौरे के आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि इस दौरे से राज्य में पार्टी के आगामी अभियानों और सांगठनिक विस्तार को नई मजबूती मिलेगी।
8: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 6 और 7 को रांची में आगमन हो रहा है और विशुद्ध रूप से वो झारखंड को बहुत बारीकी से जानते हैं। इस क्षेत्र में लगातार उनका संपर्क, चुनाव के समय में भी इनका यहाँ पर आकर के चुनावी काम में सहयोग करना रहा है और एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं, यहाँ के पार्टी के संगठन को भी बहुत वास्तविकता से जानते हैं।
4: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही रोजगार उन्मुखी योजनाओं और युवाओं के तकनीकी प्रशिक्षण के कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। श्री सोरेन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि कौशल विकास कार्यक्रमों को आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप बनाया जाए। लातेहार के मनिका में भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां फेंके जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गरीब मरीज अस्पतालों में दवाइयों के लिए भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई लाखों रुपए की दवाइयां जंगलों में फेंकी जा रही है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में आज दिशा की बैठक हुई। उन्होंने जनवितरण दुकानों में पूरा अनाज देने, सदर अस्पताल में डिजिटल बीपी व एक्सरे मशीन लगाने और सीएचसी में दवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद ने सड़कों की गुणवत्ता और प्रभावितों को शुद्ध पेयजल देने को भी कहा। धनबाद रेल मंडल के राजहरा स्टेशन के पास कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे से अपलाइन पर परिचालन ठप है। इसके कारण रांची सासाराम एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है और राजधानी सहित कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। ट्रैक साफ करने का कार्य जारी है। मालदा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अमरेंद्र कुमार मौर्य ने आज गुड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां बन रहा वॉशिंग पिट एक महीने में पूरा हो जाएगा, जिससे गुड्डा से लंबी दूरी की नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकेगा।
9: कोचिंग मेंटेनेंस के लिए काम तो काफी प्रगति पर है, कुछ काम उसमें रह गया है, तो आई होप कि एक महीने में फिट बन जाएगा। और ये डिपो के ऑफिस वगैरह भी रेडी हो जाएंगे, इसमें भी छोटे मोटे काम रह गए हैं। इलेक्ट्रिकल के दो ट्रेन जो यहाँ से चलती है मेंटेनेंस के लिए भागलपुर जाती है, वो दोनों ट्रेन का मेंटेनेंस हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे।
4: और अब मौसम का हाल। दक्षिणी पश्चिम मॉनसून बंगाल की खाड़ी पहुँच चुका है, जिसके बाद 15 जून तक झारखण्ड आने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में 8 जून तक वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में डाल्टनगंज का तापमान सर्वाधिक 41 डिग्री रहा, जबकि गुमला में सबसे अधिक 9.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर पाकुड़ जिले में आज तेज आंधी और ओलावृष्टि के साथ हुई तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आंधी के कारण माल पहाड़ी रोड समेत कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा। आपदा में कई कच्चे मकानों की छत उड़ गई और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। तेज आंधी और बारिश के दौरान हुए वज्रपात से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। अहमदाबाद में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के बाइथल स्पर्धा में प्रेम किशोर महतो ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं दीपांशु सिंह और अतासी कुमार ने कांस्य पदक हासिल किए। ट्राइथल स्पर्धा में आरती कच्छप ने रजत और प्रेम किशोर महतो ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। झारखंड महिला प्रीमियर लीग में पलामू वॉरियर्स ने छोटा नागपुर ब्लास्टर्स को 3 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए छोटा नागपुर ब्लास्टर्स ने कप्तान शशि माथुर के 35 रनों की मदद से 145 रन बनाए। जवाब में पलामू वॉरियर्स ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवरों में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस, झामुमो और राजद ने तेज की रणनीतिक बैठकें। 6 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची दौरा प्रस्तावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की श्रम एवं नियोजन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के दिए निर्देश। पलामू के राजहरा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। अपलाइन पर परिचालन पूरी तरह ठप, कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग बदले। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून बंगाल की खाड़ी पहुंचा, 15 जून तक झारखंड में दस्तक देने की उम्मीद। पाकुड़ में आंधी बारिश से भारी तबाही। और 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, स्वर्ण समेत 5 पदक जीतकर बढ़ाया राज्य का मान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने दुमका परिसदन में दुमका और जामताड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति के विकास और कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित

0: जनजाति आयोग के सदस्य के नाते आशा लकड़ा को जामताड़ा के लोगों से यह शिकायत मिली थी कि उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। लोगों ने जमीन खाली कराने की मांग की थी।
1: जामताड़ा के लोगों से हम एक विश्वास के साथ जनजाति समुदाय आयोग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उनको विश्वास है कि आयोग न्याय देगी, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि आयोग का नोटिस आने के बाद भी जामताड़ा का डीसी और एसपी उपस्थित नहीं हुए। ये बहुत विडंबना है। आयोग उन पर समन करेगी और दिल्ली बुलाएगी और जामताड़ा का जनजाति समुदाय को न्याय देने का काम करेगी, क्योंकि जामताड़ा में जिस जगह पर जो आदिवासी समुदाय का जहर थान है, पूजा स्थल है, उस जगह पर आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग अपना कब्रस्थान बना रहे हैं और उस कब्रस्थान में काम चल रहा है। इसको रोकने का प्रयास करने के लिए भी पिछले बार हमने कहा था, थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, लेकिन पुनः फिर से वहाँ व्यक्ति दफनाया जा रहा है।
0: दुमका जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। युवा विभिन्न ट्रेड में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर हुनरमंद बन रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। योजना के कार्यान्वयन से जुड़े कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के संचालक ब्रजेश भारती बताते हैं कि
2: बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 120 दिनों का प्रत्येक दिन 3 घंटे का प्रशिक्षण होता है और इसमें बच्चों को हम लोग असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसको करने के बाद बच्चों के पास स्किल इंडिया का तो सर्टिफिकेट होगा ही और कंप्यूटर का ज्ञान लेने के बाद वो किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।
0: दुमका जिले में आदिवासी समाज की उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवतियां जनजातीय समाज की महिलाओं के जीवन स्तर और उनकी आर्थिक दशा में बदलाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की महत्वपूर्ण कड़ी बन रही हैं। कंप्यूटर में उच्च शिक्षा प्राप्त सोनाली सोरेन कहती हैं कि
3: यहाँ पे जितनी भी आदिवासी महिला है यहाँ पे गाँव सुदूर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये लोग बहुत ही संकोची और सीधे भोलापन के निशान ये लोग निशानी होते हैं और ये लोग तुरंत से कुछ भी आगे नहीं जाना चाहते हैं। और मेरा ये मोटिव है कि मैं इन लोगों को आगे लेकर जाऊं और हमारे जनजातीय कौशल केंद्र के द्वारा जितनी भी ट्रेनिंग कराया जा रहा है वो लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले।
0: दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकी नाथ धाम श्रावणी मेला महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मेले में आने वाले कांवरियों को सेवा सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
4: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल आकाशवाणी रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हो चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम में श्रोताओं, हम एक ही रंग को सजाएंगे। आप सभी को पता है कि आज है हमारी सिने सितारा और नूतन का जन्मदिन, तो आइए सुनते हैं उनके फिल्म के कुछ चुनिंदा नगमों को।

0: इसी के साथ एक रंग कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम उजाले की ओर। वार्ता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य, वार्ताकार हैं प्रोफेसर सुमित मिश्रा।
1: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य एवं क्रियाकलाप। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसे संक्षेप में PMAYG भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर एवं कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जो कि पहले की इंदिरा आवास योजना का ही एक परिष्कृत रूप है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। दूसरा उद्देश्य है इस योजना के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और विकलांग लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, उन्हें बेहतर आवास सुविधाएं प्रदान करना, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सके। इस योजना का अगला उद्देश्य है सभी के लिए स्वच्छता। इस योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानों में शौचालय की अनिवार्यता को ध्यान में रखा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा मिले। इस योजना के लक्ष्य। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य 2022 तक सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान प्रदान करना था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना के तहत 2.95 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना की रूपरेखा। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60-40 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लिए यह अनुपात 90-10 का है। लाभार्थियों का चयन। लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसके तहत सबसे गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। वित्तीय सहायता। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में भिन्न हो सकती है, लेकिन औसतन 1.2 लाख रुपए से लेकर, यानी कि 1,20,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होती है। इसके अलावा निर्माण कार्य के दौरान मजदूरी की लागत को भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि MGNREGA के तहत कवर किया जाता है। लाभार्थियों को मैदानिक क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित कठिन क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना वाले जिलों में 1,30,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGA या वित्त पोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के तहत मिलाकर शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इसके अलावा MGNREGA के साथ अपने घर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को मौजूदा दरों पर 90-95 व्यक्ति दिनों के

कुशल मजदूरी रोजगार की सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना परिवारों को अन्य प्रासंगिक योजनाओं के साथ पानी, LPG और बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं। तकनीकी सहायता, लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने में तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके तहत लाभार्थियों को भवन निर्माण की तकनीक, सामग्री की गुणवत्ता और निर्माण के मानकों के बारे में जानकारी दी जाती है। जागरूकता कार्यक्रम, योजना के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाभार्थियों को योजना की विशेषताओं, आवेदन प्रक्रिया और लाभों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके लिए पंचायत स्तर पर कार्यशालाओं, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। निगरानी और मूल्यांकन, योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके तहत केंद्र और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है, जो योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करती है। इको फ्रेंडली मकानों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इको फ्रेंडली और टिकाऊ मकानों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है। इसके तहत स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल करके मकानों का निर्माण किया जाता है। विशेष समूहों के लिए प्रावधान, योजना के तहत विकलांग, वृद्ध, महिला मुखिया वाले परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे इन समूहों को प्राथमिकता दी जा सके। योजना की सफलताएं और चुनौतियां, पहले नज़र डालते हैं योजना की सफलताओं पर। वृहद पैमाने पर मकानों का निर्माण, योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को पक्का मकान मिला है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। रोजगार सृजन, योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार का सृजन हुआ है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। यह योजना न केवल मकान प्रदान करती है, बल्कि ग्रामीण समुदायों में सामाजिक और आर्थिक उत्थान का साधन भी बनी है। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक सुरक्षा, पहला पक्का मकान ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। इससे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है और उन्हें सुरक्षित वातावरण मिला है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, योजना के तहत कई मकान महिलाओं के नाम पर बनाए गए हैं, जिससे उनकी समाज में स्थिति मजबूत हुई है और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। तीसरा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पक्के मकानों के साथ शौचालय, स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई है और लोगों का जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। चौथा, शिक्षा का प्रोत्साहन, सुरक्षित और स्थिर घर बच्चों के बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं। इससे बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ी है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आर्थिक प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, रोजगार के अवसर, मकानों के निर्माण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इससे स्थानीय व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। दूसरा, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास, योजना के तहत निर्माण सामग्री की मांग बढ़ने से स्थानीय व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। तीसरा, ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास, मकानों के साथ साथ योजना के तहत अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली और जल आपूर्ति की व्यवस्था भी की जाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास होता है। प्रमुख चुनौतियां और समाधान, पहले चुनौतियों पर नज़र डालते हैं। पहली चुनौती, प्रशासनिक और वित्तीय समस्याएं, योजना के सफल क्रियान्वयन में प्रशासनिक और वित्तीय अड़चनों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय संसाधनों की कमी और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण योजना की प्रगति में बाधा आती है। दूसरा, तकनीकी समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी सहायता की कमी होती है, इससे मकानों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होते हैं।

जिससे योजना की प्रगति धीमी हो जाती है। चौथा, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण भी योजना के क्रियान्वयन में कठिनाइयां आती। समाधान। पहला, वित्तीय संसाधनों का संवर्धन। सरकार को योजना के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना चाहिए ताकि योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके। दूसरा, तकनीकी सहायता पर विस्तार। निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी सहायता का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे मकानों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तीसरा समाधान, आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाई जानी चाहिए ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। चौथा समाधान, जागरूकता और प्रशिक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर किया जा सके। योजना की उपलब्धियाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की विभिन्न उपलब्धियाँ हैं जिन्होंने इसे ग्रामीण भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बनाया है। पहली उपलब्धि, करोड़ों मकानों का निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवंटित 2,95,00,000 मकानों के कुल अनिवार्य लक्ष्य में से पात्र लाभार्थियों के लिए 2,94,00,000 से अधिक मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1 फरवरी 2000 वित्त पोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के तहत मिलाकर शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इसके अलावा मनरेगा के साथ अपने घर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को मौजूदा दरों पर 90-95 व्यक्ति दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना परिवारों को अन्य प्रासंगिक योजनाओं के साथ पानी, LPG और बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं। तकनीकी सहायता। लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने में तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके तहत लाभार्थियों को भवन निर्माण की तकनीक, सामग्री की गुणवत्ता और निर्माण के मानकों के बारे में जानकारी दी जाती है। जागरूकता कार्यक्रम। योजना के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें लाभार्थियों को योजना की विशेषताओं, आवेदन प्रक्रिया और लाभों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके लिए पंचायत स्तर पर कार्यशालाओं, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। निगरानी और मूल्यांकन। योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके तहत केंद्र और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है जो योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करती है। इको फ्रेंडली मकानों का निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इको फ्रेंडली और टिकाऊ मकानों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है। इसके तहत स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल करके मकानों का निर्माण किया जाता है। विशेष समूहों के लिए प्रावधान। योजना के तहत विकलांग, वृद्ध, महिला मुखिया वाले परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे इन समूहों को प्राथमिकता दी जा सके। योजना की सफलताएं और चुनौतियां। पहले नज़र डालते हैं योजना की सफलताओं पर। वृहद पैमाने पर मकानों का निर्माण। योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को पक्का मकान मिला है जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। रोजगार सृजन। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार का सृजन हुआ है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। यह योजना न केवल मकान प्रदान करती है बल्कि ग्रामीण समुदायों में सामाजिक और आर्थिक उत्थान का साधन भी बनी है। सामाजिक प्रभाव। सामाजिक सुरक्षा। पहला पक्का मकान ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। इससे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है और उन्हें सुरक्षित वातावरण मिला है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। योजना के तहत कई मकान महिलाओं के नाम पर बनाए गए हैं

जिससे उनकी समाज में स्थिति मजबूत हुई है और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। तीसरा, स्वास्थ्य और स्वच्छता। पक्के मकानों के साथ शौचालय, स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई है और लोगों का जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। चौथा, शिक्षा का प्रोत्साहन। सुरक्षित और स्थिर घर बच्चों के बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं। इससे बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ी है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आर्थिक प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, रोजगार के अवसर। मकानों के निर्माण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इससे स्थानीय व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। दूसरा, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास। योजना के तहत निर्माण सामग्री की मांग बढ़ने से स्थानीय व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। तीसरा, ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास। मकानों के साथ साथ योजना के तहत अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली और जल आपूर्ति की व्यवस्था भी की जाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास होता है। प्रमुख चुनौतियां और समाधान। पहले चुनौतियों पर नज़र डालते हैं। पहली चुनौती, प्रशासनिक और वित्तीय समस्याएं। योजना के सफल क्रियान्वयन में प्रशासनिक और वित्तीय अड़चनों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय संसाधनों की कमी और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण योजना की प्रगति में बाधा आती है। दूसरा, तकनीकी समस्याएं। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी सहायता की कमी होती है, इससे मकानों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होते हैं, जिससे योजना की प्रगति धीमी हो जाती है। चौथा, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण भी योजना के क्रियान्वयन में कठिनाइयां आती। समाधान। पहला, वित्तीय संसाधनों का संवर्धन। सरकार को योजना के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना चाहिए, ताकि योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके। दूसरा, तकनीकी सहायता पर विस्तार। निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी सहायता का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे मकानों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तीसरा समाधान, आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाई जानी चाहिए, ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। चौथा समाधान, जागरूकता और प्रशिक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर किया जा सके। योजना की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की विभिन्न उपलब्धियां हैं, जिन्होंने इसे ग्रामीण भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बनाया है। पहली उपलब्धि, करोड़ों मकानों का निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवंटित 2,95,00,000 मकानों के कुल अनिवार्य लक्ष्य में से पात्र लाभार्थियों के लिए 2,94,00,000 से अधिक मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1 फरवरी 2024 तक 2,55,00,000 से अधिक घर पहले ही पूरे हो चुके हैं। झारखंड राज्य की स्थिति पर अगर नज़र डालें तो झारखंड राज्य का आवंटित लक्ष्य 15,92,171 मकान थे और राज्य द्वारा मंजूर आवास 15,92,168 मकानों का हुआ था, जिसमें से 1 फरवरी 2024 तक 15,58,228 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। ये सभी आंकड़े प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट से लिए गए हैं। दूसरा, ग्रामीण बुनियादी क्षेत्रों में सुधार। दूसरी उपलब्धि के अंतर्गत मकानों के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार हुआ है, जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। समाज के हर वर्ग को लाभ, ये तीसरी उपलब्धि है। इस योजना ने समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया है, विशेषकर महिलाएं, विकलांग, अनुसूचित

जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय। चौथी उपलब्धि, रोजगार सृजन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से साधन भी बनी है। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक सुरक्षा। पहला पक्का मकान ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। इससे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है और उन्हें सुरक्षित वातावरण मिला है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। योजना के तहत कई मकान महिलाओं के नाम पर बनाए गए हैं, जिससे उनकी समाज में स्थिति मजबूत हुई है और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। तीसरा, स्वास्थ्य और स्वच्छता। पक्के मकानों के साथ शौचालय, स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई है और लोगों का जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। चौथा, शिक्षा का प्रोत्साहन। सुरक्षित और स्थिर घर बच्चों के बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं। इससे बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ी है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आर्थिक प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, रोजगार के अवसर। मकानों के निर्माण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इससे स्थानीय व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। दूसरा, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास। योजना के तहत निर्माण सामग्री की मांग बढ़ने से स्थानीय व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। तीसरा, ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास। मकानों के साथ साथ योजना के तहत अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली और जल आपूर्ति की व्यवस्था भी की जाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास होता है। प्रमुख चुनौतियां और समाधान। पहले चुनौतियों पर नज़र डालते हैं। पहली चुनौती, प्रशासनिक और वित्तीय समस्याएं। योजना के सफल क्रियान्वयन में प्रशासनिक और वित्तीय अड़चनों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय संसाधनों की कमी और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण योजना की प्रगति में बाधा आती है। दूसरा, तकनीकी समस्याएं। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी सहायता की कमी होती है, इससे मकानों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होते हैं, जिससे योजना की प्रगति धीमी हो जाती है। चौथा, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण भी योजना के क्रियान्वयन में कठिनाइयां आती। समाधान। पहला, वित्तीय संसाधनों का संवर्धन। सरकार को योजना के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना चाहिए, ताकि योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके। दूसरा, तकनीकी सहायता पर विस्तार। निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी सहायता का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे मकानों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तीसरा समाधान, आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाई जानी चाहिए, ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। चौथा समाधान, जागरूकता और प्रशिक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर किया जा सके। योजना की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की विभिन्न उपलब्धियां हैं, जिन्होंने इसे ग्रामीण भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बनाया है। पहली उपलब्धि, करोड़ों मकानों का निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित 2,95,00,000 मकानों के कुल अनिवार्य लक्ष्य में से पात्र लाभार्थियों के लिए 2,94,00,000 से अधिक मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 फरवरी 2024 तक 2,55,00,000 से अधिक घर पहले ही पूरे हो चुके हैं। झारखंड राज्य की स्थिति पर अगर नज़र डालें तो झारखंड राज्य का आवंटित लक्ष्य 15,92,171 मकान थे और राज्य द्वारा मंजूर आवास 15,92,168 मकानों का हुआ था, जिसमें से 1 फरवरी 2024 तक
15,58,000

0: 228 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। ये सभी आंकड़े प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट से लिए गए हैं। दूसरा, ग्रामीण बुनियादी क्षेत्रों में सुधार। दूसरी उपलब्धि के अंतर्गत मकानों के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार हुआ है, जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। समाज के हर वर्ग को लाभ, ये तीसरी उपलब्धि है। इस योजना ने समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया है, विशेषकर महिलाएं, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय। चौथी उपलब्धि, रोजगार सृजन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। योजना के भविष्य की दिशा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि सरकार इस योजना का और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इससे भविष्य की योजनाओं में मुख्यतः वित्तीय आवंटन में वृद्धि, तकनीकी सुधार, निरंतर समीक्षा और मूल्यांकन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग के साथ साथ सामुदायिक सहभागिता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अंततः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेघर परिवारों के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराकर उनकी जीवन गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया है तथा सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया है। इस योजना की सफलता का श्रेय इसके सुचारू क्रियान्वयन और सरकार की दृढ़ता को जाता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार के प्रयासों और सुधारात्मक कदमों के माध्यम से इन चुनौतियों को पार किया जा सकता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उजाले की ओर। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम की पहली पेशकश फिल्म सड़क के गाने को सुनते हैं, कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण के संगीत।

श्रोताओं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रात्रि 8:10 पर रांची आकाशवाणी रांची केंद्र से केंद्र सरकार के 12 साल पर कार्यक्रम।

मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों

0: पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशन है, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशन को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
0: जी,
1: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता खास नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नजर से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
0: जी,
1: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
0: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
2: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 3540 रुपए के बीच में आ गया। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
0: जी।
2: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
0: जी।
2: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आए।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
1: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
0: जी,
1: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
0: जी।
1: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है।

0: ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए, तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए। ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहां तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7% less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सब के लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वयोवंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी।
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खासतौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे, पूरे के पूरे टीका

0: में हमारा अब हर बच्चा, हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जा करके यूएन आईटी प्लेटफॉर्म है, जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूँ, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूँ, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे दो बड़ी बीमारियां हैं,
1: जी
0: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है, वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं, उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है।
1: जी
0: तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके, तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही
2: मैंने
1: है?
2: आपके सवाल में दो हिस्से हैं।
1: जी
2: पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा।
1: जी
2: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं
1: जी
2: जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं।
1: हम
2: तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे, बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शियस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा था, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर 3 साल में, 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, इसमें 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई, आंख का इलाज, ENT, कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस, 4 पैकेजेस की बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है, लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाए। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे
1: जी,
2: एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। ये इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतनी संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान।

0: सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री और पीएचसी वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेली मेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, टीबी कंट्रोल, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रहे हैं, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएम से जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब के जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है।
1: बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जिसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: जो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में, इस पिछले 12-13 साल में एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में, ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पर ध्यान दे करके उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य आईडी जैसी पहले वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है।
0: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप है उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ease of living, ease of accessing health, वो अचीव होगी। इसी फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशन में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी है कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है, लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
2: We have just seen last 2 days some of the recent data. One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now, this is remarkable because this is, जिसको कहते हैं बिल्कुल फंसी हुई चीज थी, जिसको ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था, और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है, तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं, और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है, और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं, और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है, कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो बढ़कर के लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है, और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं, उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें, जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारे पर।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
0: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया, एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमी का सिस्टम है, उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया है, वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है, और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें कि आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।
0: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें

0: हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयाँ खरीदते हैं
1: जी।
0: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयाँ तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है। बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं, ये सब जगह सब प्रदेशों में सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयाँ मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है, और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our...
4: अभी आप सुन रहे थे रांची केंद्र से, आकाशवाणी रांची केंद्र से सरकार के 12 साल। आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा हिंदी समाचार रात्रि 8:45 पर, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:10 में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार

0: विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।

0: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे, सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं।

0: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense

0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said, India and UK are well positioned to build a new future-oriented and mutually beneficial partnership. In his remarks at the meeting with UK Foreign Secretary Geert Cooper in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said the meeting will be an opportunity to discuss the India-UK Vision 2035 under all the five pillars of growth, technology and innovation, defence and security, climate and clean energy, as well as education. On to sports. In Indonesia Open Badminton, Indian pair of M.R. Arjun and Hariharan Amsakarunan has advanced to the men's doubles quarterfinals in Jakarta. The Indian duo defeated the Malaysian pair of Aaron Tai and Kang Kai Shing in a hard-fought match today. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to number 1 in the women's 57kg category, while Asian champions Priya Ghangas in 60kgs and Vishwanath Suresh in 50kgs surged into the top 3 of their respective categories. In men's section, Sachin Sehwag and Narinder Berwal broke into the top 5 following a sustained run of international success. The southwest monsoon has arrived in Kerala today. The India Meteorological Department or IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Kerala and Karnataka and heavy rainfall over Tamil Nadu during the next 7 days. Heavy to very heavy rainfall is also likely over Mahe, Puducherry and Karaikal tomorrow. Meanwhile, Delhi NCR today witnessed heavy rainfall, bringing relief from warm and humid conditions. IMD also predicted very light and light rainfall accompanied by thunderstorms and lightning tonight. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked CMs of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter top 3. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जुस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वजराए आला को हिदायत दी है कि वो नई नस्लों के लिए AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉक चेन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। भारत ने इथेनॉल और पेट्रोल मिलाकर बने ईंधन से चलने वाली पहली फ्लेक्स फ्यूल मुसाफिर गाड़ी का आगाज किया है। जुनूब मगरबी मॉनसून केरलम पहुंच गया है। IMD ने आइंदा 7 दिनों में केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आलमी बॉक्सिंग दर्जाबंदी में भारत की जैस्मिन लेम्बोरिया आलमी नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं, जबकि प्रिया घंगास और विश्वनाथ सुरेश टॉप 3 में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ बातचीत की। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल और ऑटोमोबाइल के अलावा दीगर शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। बातचीत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि दोनों फरीकों के दरमियान आज के तबादले ख्याल में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में तशराकत पर तवज्जो मरकूज की गई। इन दिनों वेनेजुएला के तवानाई के शोबे में बुनियादी तब्दीली रुनुमा हो रही है। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर भी तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने बाहमी शराकत दारी को मजीद मजबूत करने और आलमी जुनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के अपने अहद का इरादा किया।

0: एक मुसव्वदा जारी किया है जिसमें उसने वाजह कर दिया है कि कोई भी अदालती फैसला मुकम्मल तौर पर एआई पर मबनी तज्जियात या एल्गोरिदम पर मबनी फैसले साजी पर मबनी नहीं हो सकता। इस सिलसिले में अवाम से इस माह की 20 तारीख तक उनके मशवरे तलब किए गए हैं। ये मुसव्वदा एआई के तआवुन से अमल में आने वाले कई मामलात की इजाजत देता है, जैसे केस का मैनेजमेंट, समाअत की तारीख, वजूहात की फहरिस्तों की तैयारी, कानूनी तहकीक, दस्तावेजात की खुलासा साजी, तर्जुमा और रस्मुल खत की मुंतकली। अलबत्ता इसमें यह भी कहा गया है कि अदालती निज़ाम से मुताल्लिक तमाम मामलात इंसानी अदालती कंट्रोल में ही रहेंगे। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और सड़क आमोदरफ्त और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मारुति सुजुकी की जानिब से तैयार भारत की पहली फ्लेक्स ईंधन से चलने वाली मुसाफिर गाड़ी का इफ्तिताह किया। फ्लेक्स ईंधन से चलने वाली गाड़ियां इथेनॉल और पेट्रोल मिलाकर बने ईंधन से E20 से लेकर E100 की रेंज तक चल सकती हैं। इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मुसाफिर गाड़ी के जुमरे में फ्लेक्स ईंधन टेक्नोलॉजी की शमूलियत महज किसी प्रोडक्ट का इफ्तिताह नहीं है, बल्कि ये मुल्क में तवानाई की काया पलट के सिलसिले में एक नए बाब का आगाज है। जनाब पुरी ने कहा कि फ्लेक्स ईंधन टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर इख्तियार करके इथेनॉल पर मबनी नकलो हरकत के असरात को खातिर खा हद तक बढ़ाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने इस इफ्तिताह को एक यादगार और पेश बीनी पर मबनी हसूलियाबी करार दिया। वजीर मौसूफ ने इस बात का जिक्र किया कि यह संगे मील वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साफ पायदार और खुद कफील नकलो हरकत के तस्वुर से कतई मेल खाता है।
1: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने एक करारदाद पास की है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई करने से रोकने को कहा गया है। यह करारदाद जंग को मुस्तरद करने के कामयाब मुजाहरे में चार रिपब्लिकन अराकीन के डेमोक्रेट्स के साथ शामिल होने के बाद 208 के मुकाबले 215 वोटों से कामयाब रही। ट्रंप के जंग से मुतालिक इख्तियारात को लगाम लगाने की गरज से ऐवान के जरिए यह चौथी कोशिश है, जिसके लिए बकौल तनकीद निगारों के कांग्रेस की मंजूरी का फुकदान है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने चेहरे की शनाख्त के जरिए तस्दीक का एक निज़ाम वजा किया है ताकि इम्तिहान के अमल की सालमियत को बेहतर बनाया जा सके और असल की जगह फर्जी फर्द के जरिए इम्तिहान देने की रोकथाम की जा सके। कमीशन ने हाल ही में मुनक़िदा सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इब्तदाई इम्तिहान 2026 के दौरान कामयाबी के साथ चेहरे की शनाख्त के जरिए तस्दीक के अमल को नाफिज किया। चेहरे की तस्दीक का प्रोटोकॉल इस बात को यकीनी बनाता है कि दरखास्त फॉर्म पुर करने के वक्त उम्मीदवार का जो फोटो अपलोड किया गया था वो उम्मीदवार वही है जो इम्तिहान देने के लिए एडमिट कार्ड के साथ इम्तिहान देने पहुंचा है। एक भारतीय निजात दिल के इमराज के माहिर सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ग्याना से भारत में तवील फासले की रोबोटिक टेली सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम देकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ये टेली सर्जरी ग्याना में जॉर्ज टाउन पब्लिक अस्पताल और इंदौर में IRCAD इंडिया के दरमियान रिमोट तरीके से अंजाम दी गई है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता आज साकेत के मैक्स अस्पताल गईं और कल मालवीय नगर में आग लगने के बड़े वाकये में जख्मी लोगों की खैरियत मालूम की। उन्होंने जख्मी अफराद और उनके कुंबे के लोगों से भी बातचीत और उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से भी उनके जारी इलाज के बारे में मालूमात हासिल की और अहदेदारान को सभी जरूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी। आग लगने के इस बड़े वाकये में हलाक होने वालों के कुंबों को 10-10 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया गया है। शदीद तौर पर जख्मी लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। جنوب مغربی مانسون آج کیرلم پہنچ گیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 7 دن کے دوران کیرلم اور کرناٹک میں زیادہ اور بہت زیادہ بارش اور تمل ناڈو میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے. کل ماہے پڈوچیری اور کرائیکل میں بہت اور بہت زیادہ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران انڈمان نکوبار جزائر, آندھر پردیش, کونکن, گوا, لکشدیپ, مدھیہ مہاراشٹر, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال, سکم, تلنگانہ, اتراکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے. ادھر دلی قومی راجدھانی خطے میں آج تیز بارش ہوئی جس کے سبب گرمی اور حبس کی صورتحال سے راحت ملی. محکمہ موسمیات نے آج رات ہلکی اور بہت ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے جس میں بجلی کی گرج چمک بھی شامل ہے. جکارتا میں ہوئے انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن میں ایم آر ارجن اور ہری ہرن امسا کرونن کی بھارتی جوڑی مردوں کے ڈبلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. بھارتی جوڑی نے آج ایک سخت مقابلے میں ملیشیا کی جوڑی آر انتائی اور کانگ کھائی شنگ کو 16-21, 21-15 اور 21-19 سے شکست دی ہے, جبکہ سنگل زمرے میں پی وی سندھو اور آیوش شیٹی کے اپنے اپنے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں شکست کے بعد بھارت کی مہم ختم ہو گئی ہے. بھارت نے مکے بازی کی حالیہ عالمی درجہ بندی میں اپنی مضبوط پوزیشن برقرار رکھی ہے. خواتین کے 57 کلوگرام کے زمرے میں جیسمین لیمبوریا عالمی نمبر 1 پر پہنچ گئی ہیں, جبکہ ایشیائی چیمپئنز پریا گھنگا 60 کلوگرام اور وشوناتھ سریش 50 کلوگرام کے اپنے اپنے زمرے میں ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے زمرے میں میناکشی نے 48 کلوگرام کے زمرے میں عالمی نمبر 1 کا اپنا مقام برقرار رکھا ہے, جبکہ مردوں کے زمرے میں سچن سیواچ اور نریندر بیروال بین الاقوامی پیمانے پر مسلسل کامیابی حاصل کرنے کے بعد ٹاپ 5 میں پہنچ گئے ہیں. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور وینزویلا نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. نیز توانائی, تجارت اور صحت دیکھ بھال کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی, مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں. عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: آپ ہمارے کارکرم سن رہے ہیں ویوت بھارتی سے. آج کے فنکار, یہ کارکرم ہوگا بس تھوڑی ہی دیر بعد.

0: विविक भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

नूतन समर्थ बहल, जी हां नूतन। इनका जन्म शोभना समर्थ और कुमार सेन समर्थ के घर सन 1936 के 4 जून को हुआ। चार भाई बहनों में नूतन सबसे बड़ी थी। पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने कवि और निर्देशक थे तो माता शोभना समर्थ अपने जमाने की मानी हुई अभिनेत्री थी। पौराणिक फिल्मों में उनके द्वारा अभिनीत सीता के किरदार को इतना सराहा गया था कि शोभना समर्थ और सीता ये जैसे एक समीकरण ही बन गया था। आज हम बात कर रहे हैं इनकी सुपुत्री नूतन की। नूतन को अभिनय कला, संस्कृति के संस्कार धरोहर ही में मिले थे, लिहाजा उनकी माताजी ने 1950 में नूतन को ब्रेक देने के इरादे से फिल्म हमारी बेटी का निर्माण किया। तब नूतन की उम्र महज 14 साल की थी। उल्लेखनीय बात यह है कि नूतन इस छोटी सी उम्र में मिस इंडिया खिताब की विजेता रही थी। 1953 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म लैला मजनू में। सरदार मलिक साहब का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय बन पड़ा था इस फिल्म का।

नूतन एक संवेदनशील अभिनेत्री थी। उनके चेहरे पर उभरने वाली भावभंगिमाएं उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी को जैसे कॉम्प्लीमेंट करती थी। यही उनके खूबसूरत अदाकारी की खूबी थी। किसी भी चरित्र की गहराई में घुसकर उस चरित्र को जीवंत करने के लिए अधरों का कंपन, उनके भाल पर उभरती रेखाएं, आंखों की सूक्ष्म हलचल, इन बातों से वो पात्र को बिल्कुल जीवंत बना देती थी। यही वजह है कि सन 1955 में अमिया चक्रवर्ती द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म सीमा के लिए उनका चुनाव हुआ। इस फिल्म में उनकी भूमिका को इतना सराहा गया कि इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।

दोस्तों, फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 5 बार जीतने वाली अपने जमाने की वो पहली अभिनेत्री थी। बात सन 1959 की है। सामाजिक विषमता की विभिषिका को बिंब बनाकर फिल्मों के साथ साथ सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले सुलझे हुए निर्देशक बिमल रॉय फिल्म सुजाता का निर्माण कर रहे थे। नारी प्रधान और सामाजिक विषमता के विषय वाली ये फिल्म और इसका सुजाता का किरदार बड़ा ही जटिल था। इस फिल्म के रोल के लिए नूतन का चुनाव हुआ और नूतन ने भी अपनी सशक्त अदाकारी से इस फिल्म के इस किरदार में जैसे जान फूंक दी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

नूतन अपनी अभिनय क्षमता के कारण जटिल से जटिल भूमिकाओं को साकार करने में महारत रखती थीं। फिल्म सुजाता के बाद जो बहुचर्चित उनकी फिल्म आई वो थी बंदनी। सन 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। बिमल दा ने इस फिल्म का विषय भी बड़ा ही हटके चुना था, स्त्री का मनोविज्ञान और उसकी पेचीदगी को दर्शाने का मार्मिक चित्रण था इस फिल्म में। जैसे कि फिल्म के नाम से ही जाहिर होता है, ये फिल्म नारी प्रधान फिल्म थी। नूतन ने अपने तरल अभिनय से विषय वस्तु की जटिलताओं को समझते हुए बड़ी सहजता से उन्हें अभिनीत किया था। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया।

1959 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पेइंग गेस्ट में उन्होंने अदाकारी के कुछ रोमानी अंदाज पेश किए। इनके हीरो थे एवरग्रीन अदाकार देवानंद।

0: था?
1: कुछ ऐसी ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी अनाड़ी, जो आई थी सन 1959 में। इस फिल्म में नूतन के हीरो थे अपने जमाने के ग्रेट शोमैन राज कपूर।

1958 में एक फिल्म आई थी सोने की चिड़िया। इस म्यूजिकल फिल्म में भी नूतन ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। दोस्तों, दीवानंद साहब के साथ उनकी एक और चर्चित फिल्म आई थी 1960 में, जिसका नाम था तेरे घर के सामने।

इसी दौरान यानी सन 1959 के आसपास नूतन ने नेवल कमांडेंट रजनीश बहल से शादी कर ली और वो नूतन समर्थ से नूतन समर्थ बहल बन गई। इसी साल आई थी फिल्म छबीली। इस फिल्म में उन्होंने जितने गाने उन पर फिल्माए गए थे स्वयं ही गाए थे। इस फिल्म का निर्माण किया था उनकी माताजी शोभना समर्थ ने।

60 से 70 के दशक में उनकी कई फिल्में आईं। बहुत कम फिल्में हैं जो नहीं चली। लगभग हर फिल्म का संगीत हिट था, चाहे 1952 की फिल्म शीशम हो या 1954 की फिल्म शबाब हो, 1956 की बारिश हो या 1957 की फिल्म दिल्ली का ठग हो, 1958 की फिल्म आखिरी दांव हो या 1964 की फिल्म खानदान हो, 1965 की फिल्म रिश्ते नाते हो या हो 1968 की फिल्म सरस्वती चंद्र।

जहां तक फिल्म फेयर के चौथे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का सवाल है, वो उन्हें मिला था फिल्म मिलन के लिए जो रिलीज हुई थी 1967 में। प्रसाद प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

1978 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में उनके सशक्त अभिनय के लिए भी उन्हें मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इस समय उनकी उम्र थी 42 साल।

0: दोस्तों, अभिनेत्री नूतन ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं तो कई की, साथ ही साथ चरित्र भूमिकाएं भी की हैं। इनमें जो यादगार हैं वो हैं 1986 में आई फिल्म जो कि दिलीप कुमार के साथ थी, फिल्म कर्मा।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार, इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने?
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू।

1985 में फिल्म मेरी जंग, जिसमें उन्होंने अभिनेता अनिल कपूर की माता का रोल किया था। दोस्तों, नूतन ने कुल 70 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी पहली फिल्म थी 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी, और आखिरी फिल्म थी 1994 में आई फिल्म इंसानियत, जो उनके स्वर्गवास के पश्चात रिलीज हुई थी। दोस्तों, उनके बेटे मोहनीश बहल एक सफल अभिनेता हैं। नूतन की छोटी बहन अपने जमाने की जानी मानी मारूफ अदाकारा रही हैं तनुजा। इन्हीं की बेटी है काजोल भी, जो हिंदी फिल्मों में एक कामयाब अदाकारा हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने फिल्मों में नूतन के अभिनय को सराहते हुए सन 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। हिंदुस्तानी फिल्मों में अदाकारी के शिखर को छूने वाली शोभना कुमार सेन समर्थ की ये छबीली बेटी अपने बेटे मोहनीश बहल को खानदान की अदाकारी की ये यादगार धरोहर सौंपकर 54 वर्ष की छोटी सी आयु में 21 फरवरी 1991 में हम लोग की दुनिया छोड़ परलोक सिधार गई।

0: तो ये था आज के फनकार ये कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने की जाने मानी अभिनेत्री नूतन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा, आज के फनकार। हम आकाशवाणी के डाल्टेनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आज का खास कार्यक्रम है पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम एवं अभिनेत्री नूतन पर विशेष कार्यक्रम, क्योंकि आज है 4 जून, आज है दोनों का जन्मदिन। वाचन सैकत चट्टोपाध्याय, प्रस्तुति श्री संजीव कुमार लाल।
1: ये दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का आज के इस कार्यक्रम में। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र FM के 103 MHz पर, और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी सैक चैटर्जी। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करते हुए हम बात करेंगे SP बालासुब्रमण्यम का। जी हाँ, क्योंकि आज है 4 जून, और 4 जून 1946 को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम का जन्मदिन है। उन्हें प्यार से लोग SPB या बालू के नाम से भी पुकारते थे, और वो सिर्फ हिंदी सिनेमा के ही पार्श्व गायक नहीं थे, बल्कि उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी काम किया, और कुल 16 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाए। आइए दोस्तों, आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म से उस गीत को, जिसे SP बालासुब्रमण्यम के साथ आवाज दिया है लता मंगेशकर ने, गीत को लिखा है देव कोहली, जबकि म्यूजिक दिया है राम।

दोस्तों, एसपी बालासुब्रमण्यम का जन्म ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रांत के नेल्लोर में हुआ था। एक मजबूत संगीत पृष्ठभूमि वाले तेलुगु परिवार में उनका जन्म हुआ था। शुरुआत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बावजूद संगीत के प्रति उनके जुनून ने उन्हें पार्श्व गायन में एक सफल करियर की ओर प्रेरित किया। इसकी शुरुआत 1966 में तेलुगु फिल्म से हुई और उसके बाद उन्होंने अपने करियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में अपने प्रदर्शन के लिए कई बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के पुरस्कार जीते। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म से एक और गीत को, जिसे फिर से एक बार गाया है लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम ने। संगीत है राम लक्ष्मण का और गीत को लिखा है देव कोहली।

एक दूजे के लिए से एक गीत, जिसे फिर से एक बार एसपी बालप सुब्रमण्यम के साथ आवाज मिलाया है लता मंगेशकर ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दोस्तों, एसपी बालासुब्रमण्यम से जुड़ी एक और बात बताते चले कि एसपी बालासुब्रमण्यम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना के आईटी मंत्री डॉक्टर डी श्रीधर बाबू ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ 15 दिसंबर 2025 को हैदराबाद के रविंद्र भारती में किया था। आइए दोस्तों, अब इस कार्यक्रम में फिर से एक बार सुनते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर के गाए वंश फिल्म के उस गीत को, जिसे लिखा था समीर और म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद।

0: ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों आज आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए कुछ गीत, क्योंकि आज है 4 जून और जैसे कि मैंने बताया था आज एसपी बाला सुब्रमण्यम का जन्मदिन है। दोस्तों इसी के साथ ही आपको बताते चले कि आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक और मशहूर कलाकार का जन्मदिन है और उनका नाम है सदाबहार अभिनेत्री नूतन। जी हाँ दोस्तों, नूतन समर्थ बहल उनका नाम था। उनका नूतन का जन्म नाम समर्थ था, जिनका जन्म 4 जून 1936 में हुई थी। तो दोस्तों नूतन को याद करते हुए हम आज सुनेंगे नूतन पर फिल्माए गए कुछ शानदार फिल्म गीतों को। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली नूतन अक्सर अपरंपरागत मानी जाने वाली संघर्षरत महिलाओं की भूमिकाओं में अपने स्वाभाविक अभिनय के लिए जानी जाती थी। 4 दशकों के अपने करियर में उन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जो शहरी प्रेम कहानियों से लेकर सामाजिक यथार्थवादी नाटकों तक विभिन्न शैलियों की थी। दोस्तों नूतन को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उस समय का रिकॉर्ड 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। 1974 में नूतन को भारत के 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: सुनो कहां चले?
2: जीवन पथ पे अकेला जा रहा था, किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी।
0: आइए दोस्तों सुनते हैं नूतन पर फिल्म आए गए 1970 में आई फिल्म यादगार की उस गीत को, जिसे नूतन के साथ सह कलाकार थे मनोज कुमार, प्राण, प्रेम चोपड़ा। जिस गीत को हम सुनाने जा रहे हैं उसे आवाज से सजाया है लता मंगेशकर, गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर और धुन बनाए हैं कल्याण जी, आनंद जी।
3: जिस पथ पे चला

0: दोस्तों, फिल्म निर्माता कुमार सेन समर्थ और फिल्म अभिनेत्री शोभना समर्थ की बेटी नूतन का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में 1950 में अपनी मां के द्वारा निर्देशित फिल्म हमारी बेटी से अपनी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने नगीना और हम दोनों, जो 1951 में आई थी, इस फिल्मों में अभिनय किया। 1955 में आई फिल्म सीमा में उनकी भूमिका के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।
1: नहीं नहीं बीबी जी, मुझे माफ कर दीजिए, पुलिस के हवाले में कीजिए, मैं पैसे दे दूंगी।
2: पैसे? डकैती छोकरी, अब तू इसके पैसे देगी? जानती है इसकी कीमत क्या है?
1: जो आप कहे, मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए।
2: तेरी तनख्वाह क्या 100 सैकड़े है? इसके दाम पूरे करने के लिए तुझे महीनों काम करना पड़ेगा।
1: हाँ हाँ, मैं करूंगी, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले न कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बीबी जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ।
0: उन्होंने 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के अंत तक मुख्य भूमिकाएं निभाना जारी रखा और सुजाता, बंदिनी, मिलन, मैं तुलसी तेरे आंगन की में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इस अवधि की उनकी कुछ अन्य फिल्मों में अनाड़ी, छलिया, तेरे घर के सामने, खानदान, सरस्वती चंद्र, अनुराग और सौदागर जैसी फिल्में भी शामिल है। आइए दोस्तों, फिर से एक बार सुनते हैं नूतन पर फिल्माए गए दिल ने फिर याद किया है फिल्म से उस गीत को, जिसमें नूतन के साथ पर्दे पर दिखे थे धर्मेंद्र। गीत को आवाज दिया है रफी, लिखा है J.S. रावल और म्यूजिक है सोनिक ओमी का।

0: दोस्तों 1980 के दशक में नूतन ने चरित्र भूमिकाएं निभाना शुरू किया और अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले तक काम करती रही। उन्होंने 1981 में साजन की सहेली, 1985 में मेरी जंग और 1986 में नाम जैसी फिल्मों में अधिकतर माँ की भूमिकाएं निभाई। मेरी जंग में उनके अभिनय के लिए उन्हें उस समय सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का 6ठा और अपने जीवन का अंतिम फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।
1: आप ही मिलने आए हैं मुझसे?
2: क्या
1: गुप्ता जी ने भेजा है आपको?
2: जी, उन्होंने भेजा मुझको। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे पूछ लूं कि आपको यहां कोई तकलीफ तो नहीं है, ये लोग आपका ख्याल रखते हैं?
1: हाँ हाँ, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बच्चे घर में अकेले होंगे यही परेशानी रहती है। कई बार सोचा कि घर चली जाऊँ, लेकिन हमारे वो बड़े डॉक्टर साहब हैं ना, बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। वो कहते हैं कुछ दिन इधर ही रुक जाओ, कभी भी केस की तारीख पड़ सकती है। केस इसी शहर में आ गया है ना, तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन यहीं रुक जाती हूँ।
0: तो आइए दोस्तों सुनते हैं 1985 में आई फिल्म मेरी जंग के उस गीत को जिसे लता मंगेशकर के साथ आवाज दिया है नितिन मुकेश, गीत को लिखा है आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कैंसर से 21 फरवरी 1991 में हो गया था। दोस्तों, उनकी शादी नौसेना के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर रहे रजनीश बहल से 1959 में हुई थी और उनका एकमात्र पुत्र मोहनीश बहल भी एक अभिनेता है। आइए दोस्तों सुनते हैं नूतन के जिंदगी की एक सदाबहार फिल्म अनाड़ी, जिसमें वो राज कपूर के साथ दिखे थे, उस फिल्म के एक गीत को जिसमें लता मंगेशकर के साथ आवाज दिया है मुकेश चंद्र माथुर, गीत लिखा है हसरत जयपुरी और म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन।

दोस्तों, हम सुन रहे हैं नूतन के बारे में कुछ अनजानी, अनकही, अनसुनी बातों को, क्योंकि आज है नूतन का जन्मदिन। दोस्तों, नूतन की पहली बड़ी सफलता फिल्म सीमा से आई थी, जो 1955 में आई थी। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इस सफलता के बाद उन्होंने एक रोमांटिक कॉमेडी की थी, पेइंग गेस्ट, उसमें देवानंद साहब साथ थे। उसके बाद 1950 के दशक के अंत तक वो एक स्थापित स्टार बन चुकी थी। 1959 में उन्होंने दो हिट फिल्मों अनाड़ी और बिमल राय की सुजाता, जिसमें वो सुनील दत्त के साथ दिखे थे, में अभिनय किया था। इसके लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 1960 और 1970 के दशक में उनकी कई और सफल फिल्में आई, जिनमें छलिया, सरस्वती चंद्र, देवी और मैं तुलसी तेरी आंगन की शामिल है। 1960 में उन्होंने मनमोहन देसाई की फिल्म छलिया में एक बार फिर राज कपूर के साथ अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर के लिए नामांकन मिला। आइए दोस्तों, अब नूतन की एक फिल्म जो राज कपूर के साथ 1959 में आई थी, अनाड़ी, उस फिल्म के एक गीत को सुनते हैं। गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर, गीत को लिखा है शैलेंद्र, और जबकि म्यूजिक बनाया है शंकर जयकिशन।

दोस्तों, नूतन का जन्म तो बताए आपको कि 4 जून 1936 में हुई थी, जबकि उनकी मृत्यु स्तन कैंसर से 21 फरवरी 1991 में हो गया था। दोस्तों, उनकी शादी नौसेना के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर रहे रजनीश बहल से 1959 में हुई थी और उनका एकमात्र पुत्र मोहनीश बहल भी एक अभिनेता है। आइए दोस्तों, सुनते हैं नूतन के जिंदगी की एक सदाबहार फिल्म अनाड़ी, जिसमें वो राज कपूर के साथ दिखे थे, उस फिल्म के एक गीत को, जिसमें लता मंगेशकर के साथ आवाज दिया है मुकेश चंद्र माथुर, गीत लिखा है हसरत जयपुरी और म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन।

दोस्तों, हम सुन रहे हैं नूतन के बारे में कुछ अनजानी, अनकही, अनसुनी बातों को, क्योंकि आज है नूतन का जन्मदिन। दोस्तों, नूतन की पहली बड़ी सफलता फिल्म सीमा से आई थी, जो 1955 में आई थी। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इस सफलता के बाद उन्होंने एक रोमांटिक कॉमेडी की थी, पेइंग गेस्ट, उसमें देवानंद साहब साथ थे। उसके बाद 1950 के दशक के अंत तक वो एक स्थापित स्टार बन चुकी थी। 1959 में उन्होंने दो हिट फिल्मों अनाड़ी और बिमल राय की सुजाता

जिसमें वो सुनील दत्त के साथ दिखे थे में अभिनय किया था। इसके लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 1960 और 1970 के दशक में उनकी कई और सफल फिल्में आई, जिनमें छलिया, सरस्वती चंद्र, देवी और मैं तुलसी तेरी आंगन की शामिल है। 1960 में उन्होंने मनमोहन देसाई की फिल्म छलिया में एक बार फिर राज कपूर के साथ अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर के लिए नामांकन मिला। आइए दोस्तों, अब नूतन की एक फिल्म जो राज कपूर के साथ 1959 में आई थी, अनाड़ी, उस फिल्म के एक गीत को सुनते हैं। गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर, गीत को लिखा है शैलेंद्र, और जबकि म्यूजिक बनाया है शंकर जयकिशन।

दोस्तों, ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूँ आप लोगों का रेडियो साथी साइकल चटर्जी। दोस्तों, इस विशेष कार्यक्रम में आपने सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम के कुछ गाए गीत और सदाबहार अभिनेत्री नूतन पर फिल्माए गए कुछ फिल्म गीत, क्योंकि आज का दिन यानी कि 4 जून का दिन सदाबहार अभिनेत्री नूतन और सदाबहार पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का जन्मदिन है। इन दोनों कलाकारों को आकाशवाणी डाल्टनगंज की ओर से हैप्पी

दोस्तों, आज आप सुन रहे थे रजनीगंधा कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम एवं अभिनेत्री नूतन पर विशेष कार्यक्रम। वाचन सैकत चट्टोपाध्याय के थे, प्रस्तुति श्री संजीव कुमार लाल के थे। आज के इस खूबसूरत सफर से आप दीजिए हमें इजाज़त। कुछ ही पलों में श्रोताओं आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रात्रि के 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव

0: स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council NEC, Mr. Shah in a social media post said, "Today NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agri-wood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the EK Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said yoga unites mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world. He expressed confidence that the maiden World Yoga Championship will give Yogasan a global sports identity and open up a wide range of opportunities for the youth. Mr. Modi highlighted that every major sport brings among and along its own comprehensive ecosystem. He stated that Yogasan sports expand globally, it will create significant new possibilities and career paths for athletes. The Ministry of Women and Child Development has invited women students, scholars, social activists and teachers for its internship program during August-September term. The program is open to women students, scholars, social activists and teachers who are enrolled in or associated with any university, academic or non-academic institution. The Ministry of Women and Child Development informed that women candidates in the age group of 21 to 40 years from non-tier 1 cities and rural areas of India are eligible to apply. It added that applicants are to be submitted online through the internship program portal wcd.intern.nic.in. The Bharatiya Janata Party announced that the party Manipur President Adhikari Mayum Sharda Devi will be party candidate for the upcoming Rajya Sabha election of Manipur. The party announced today that the party's prominent woman leader of Manipur will contest the lone Rajya Sabha seat of Manipur, which voting will be held on 18th June. It may be mentioned that the term of the current Rajya Sabha MP of Manipur, Lishimba Sanaja Uba, who represents the Bharatiya Janata Party, ends on 21st of June. In the latest world boxing rankings, Jasmine Lamboria climbed to world number one in the women's 57 kg category, while Asian Championships Priya Gangas in 60 kg and Vishwanath Suresh in 50 kg. And that's the end of the news.
3: श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:11 हो चुके हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 हम पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

में रात्रि के 10:11 हो 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 हम पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय।